0: कहा विलास के लिए, लीला के लिए। कहा लीला के लिए नहीं, लीला तो की, विलास तो किया, लेकिन किसके लिए किया ये सब? तो क्या कहा? इसके लिए श्रुति संकेत करती, विनोदाय चैतन्य मेकम विभज्य शिव। विनोदाय, नोद सब जानते हो, नोद माने आनंद, नोदाय आनंद के लिए। कैसे आनंद के लिए? तो आनंद स्वरूप ही है, फिर आनंद के लिए का? कहा विनोदाय, विशेषेण नोदाय, माने उस आनंद की विशेष रूप से अभिव्यक्ति हो। तो उस आनंद जो उनके पास है, उसे और अभिव्यक्त करने के लिए, विशेष रूप से अभिव्यक्त करने के लिए भगवान ने क्या किया? कहा चैतन्यम एकम, वह चैतन्य एक ही है, वहां कोई दूसरा चेतन नहीं, वही चेतन रूप है। एक शब्द का तो प्रयोग कर देते हैं समझने के लिए, उसमें एक शब्द का भी प्रयोग बनता नहीं। तो वही चैतन्य जो है वो क्या हुआ? विभज्य, उसने क्या कर लिया? अपने में ही विभाजन कर लिया है? तो किस लिए? कहा विनोदाय, विशेष रूप से अपने आनंद की अभिव्यक्ति करने के लिए, कि संकेत किया। तो अब इस चीज से क्या अर्थ निकला? यहां पर जो कहा कि यस्मान जातम जगत सर्वम, जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ, और कहने लगे जिसमें ही स्थिर रहा, और फिर जिसमें ही लीन हो गया। लेकिन लोक की लीला में ऐसा नहीं होता, हम जो आभूषण धारण करते वो हमारे में लीन नहीं होते, हम उन्हें धारण तो करते हैं, लेकिन यहां एक विलक्षणता बतला दी, उसी से हुए, उसी में स्थिरता और उसी में विलय था। और किस लिए? तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य भी बतला दिया। अब और विचार करो, इसके लिए जीव को दे दिया कि तुम भूलो नहीं, लेकिन भूल हो जाती है, भ्रम आ जाता है, हैं? क्या? तो संकेत किया स्वप्न अवस्था का। अब स्वप्न अवस्था को आप थोड़ा विचार करें, स्वप्न अवस्था क्या है?
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

मन की प्रवृत्ति कहाँ होती है ये आपको बतलाया। मन कहाँ लगता है? जहाँ आनंद की अभिव्यक्ति होती है, रस मिलता है नहीं बस वाला। तो कहाँ होता है? तो तीन जगह बतलाया है, अग्निर्जत्र अभिमिथ्यते, वायुर्जत्र अभिरुध्यते, सोमो जत्र तत्र। तत्र माने वहां। क्या हुआ? मन संजायते। तो मन संजायते का अर्थ होता है

नान्यत्र दूसरे जगह में नहीं है। कहाँ होता है? शुद्ध अंतकरण है, जहां अंतकरण शुद्ध होता है ना, शुद्ध अंतकरण में, अशुद्ध अंतकरण में नहीं। जैसे तुम्हारा मुख का प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, तो दर्पण को कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता का दो है, या तो मन दर्पण के सामने है कपड़ा पड़ा हुआ आवरण, या मिट्टी का धूलिकणों का अनिवार्य। तो मिट्टी जम जाए फिर भी मुख नहीं दिखेगा, और यदि आवरण हो फिर भी नहीं दिखेगा। तो दोनों आवरण भी हटाना चाहिए और दर्पण को शुद्ध भी करना, तब जाकर देखेगा। ऐसे हमारे अंतकरण में अविद्या का आवरण और कर्मों का संस्कार रूपी, मलिनता पड़ा है। तो कर्मों के मलिनता को हटाने के लिए कर्मशास्त्र है, आवरण को हटाने के लिए ज्ञान शास्त्र है। अविद्या का आवरण हटेगा और क्या होगा? अंतकरण शुद्ध। कर्मों का संस्कार राग द्वेष आदि जो पड़ा हुआ है ना अंतकरण में, जैसे देखो आप स्वच्छ वस्त्र पहने हो, स्वच्छ वस्त्र पहन करके बैठने जाओगे किसी जगह में, तो पहले आप क्या देखोगे? जगह स्वच्छ आएगी नहीं। यदि मिट्टी होगा, कीचड़ होगा, कोयला होगा, गंदगी होगा, तो बैठोगे क्यों? मैं तो आप जैसे स्वच्छ जगह को ढूंढते हो, ऐसे ही स्वच्छ अंतकरण को ढूंढता है कौन? परमात्मा। अंतकरण शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, आवरण रहित होगा, राग द्वेष से रहित होगा, काम क्रोध से रहित होगा, ऐसे शुद्ध अंतकरण में ही मन जो है लगेगा। ये कल के प्रसंग में बतलाया था। प्राणायाम विशुद्ध आत्मा, प्राणायाम विशुद्ध आत्मा जस्मात् पश्यति तत् परम तस्मान्नाता परम किंचित प्राणायामादि श्रुति। देखो प्राणायाम विशुद्ध आत्मा, प्राणायाम के द्वारा आपने अंतकरण को शुद्ध कर लिया, तो प्राणायाम का मतलब होता है क्या? पूरक रेशक कुंभक। रेशक माने बाहर निकल लेने का, और पूरक माने भीतर करने का। तो बीच में कुंभक आता है, कुंभक एक कुंभक बाहर होता है, एक कुंभक भीतर होता है। तो बाहर कुंभ करने वाला का नाम बाह्य कुंभक, और अंतर करने वाला को अंतर कुंभक। तो पूरा कैसा कुंभक, ये अभ्यास करते करते करते करते कहते अंतकरण शुद्ध होता है। इसीलिए कहते हैं ना आन पान शान, प्राणों का आना जाना और रुकना। तो बहुत से आदमी कहते हैं प्राणायाम ही करो सब कुछ हो जाएगा। प्राणायाम को प्राणायाम करते रहोगे तो तुम्हारा मन वहां लग जाएगा, याद रखना। कैसे लगेगा? तो तुम ध्यान दोगे कितना बार तुम प्राणायाम कर रहे हो, बाहर जाते हुए भीतर आते हुए इस पर ध्यान रखो। इस पर ध्यान रखोगे तो तुम्हारा मन कभी बाहर नहीं जाएगा, याद रखना। प्राणायाम करते हो ना पैर पूरक रेशक कुंभक, ये और आन पान शान, ये तीनों करते रहो तो देखो तुम्हारा चित्त जो है ना धीरे धीरे धीरे धीरे शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। शांत अंतकरण में परमात्मा की प्रतिबिंब पड़ता है, चंचल अंतकरण में नहीं। बोले चंचल अंतकरण में क्यों नहीं पड़ेगा? तो परमात्मा व्यापक है, सब जगह में है, तो सारे अंत

0: जीवन शांत हो चाहे अशांत हो, चंचल हो चाहे विक्षिप्त हो, शुद्ध से अशुद्ध हो, वहां तो आत्मा है ही है। पहले बोला हाय तो सही, वो आत्मा का साक्षात्कार तुमको नहीं होगा। जैसे आकाश में सूर्य है, हाँ नीचे जल है, तो आकाश में जब सूर्य है उसका प्रतिबिंब तुम्हारे जल में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? परंतु जल में पड़ता हुआ जो जल यदि चंचल हो, मलिन हो, मिट्टी वाला हो तो देखेगा? आकाश में सूर्य है तो जल में प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखता है? इसीलिए कि दिखता नहीं, क्या उसमें मलिनता है अथवा जल हिल रहा है नहीं बात? तो उसमें जल में प्रतिबिंब देखने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? जल को शुद्ध करना पड़ेगा और जल को स्थिर करना पड़ेगा। जब जल स्थिर हो जाएगा, जब जल शांत हो जाएगा, तब देखेगा, तब देखेगा। और जल जब फिर अभी मान लो जल शांत है, शुद्ध है, शांत है, प्रतिबिंब देखता है, यदि एक पत्थर फेंक दो तो जल में फिर देखेगा? नहीं देखेगा। क्यों? चंचल हो गया, विक्षिप्त हो गया। और फिर देखना होगा तो शांत करना। ऐसी अंतकरण रूपी जो तालाब है, वासना रूपी जल है, वो वासना रूपी जल में अनिवार्य वो आत्मा रूपी सूर्य का प्रतिबिंब देखने में नहीं आता है। तो आत्मा रूपी सूर्य है कि नहीं? भीतर होता हुआ भी वो दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता है? वासना ने अंतकरण को विक्षिप्त बना दिया, वासना हिल गया। क्यों वासना हिला? किसने हिलाया जल को? किसने हिलाया? तुमने पत्थर मारा कि नहीं? तो इच्छा रूपी पत्थर जब गिर जाता है तो वासना रूपी जल हिल जाता है, तो आत्मा रूपी सूर्य का दर्शन नहीं होता। यदि आत्मा रूपी सूर्य का दर्शन करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? अंतकरण को शांत करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। तो योगी लोग कहते हैं प्राणायाम के द्वारा अंतकरण को शुद्ध करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान करो, धारणा करो, इसे सिद्ध शांत हो जाएगा। शांत अंतकरण में परमात्मा का दर्शन होगा। तो यही बात बता रहा है, देखो प्राणायाम विशुद्ध आत्मा, प्राणायाम के द्वारा क्या करोगे? आत्मा को शुद्ध करो। तो विशुद्ध आत्मा ने शुद्ध अंतकरण या आत्मा को विशुद्ध करो, ऐसा नहीं। आत्मा यदि अशुद्ध हो जाएगा तो उस अशुद्धता को कौन दूर करेगा? यहां वो आत्मा शब्द से अंतकरण लेना याद रखना, नहीं तो आत्मा अशुद्ध हो गया तो आत्मा की अशुद्धता दूर कैसे करोगे? आत्मा नित्य शुद्ध है, शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया परिवर्तितों से, ये कथा आती नहीं सुनना? मदालसा नाम के माता ने अपने बेटा को उपदेश दिया है नहीं बात? मदालसा नाम का एक वो थे माता थे, उसका छह बेटा थे है नहीं बात? छह बेटा में से एक बेटा ऐसा है, पांच बेटा तो सन्यासी हो गया, एक बेटा घर में रह गया, आसक्त हो गया, घर में रह गया। तो घर में रह गया तो माने का बेटा जब तेरे ऊपर विपत्ति आ जाएगी है नहीं बात, तब ये ताबीज तेरे के हाथ में बांध दे रहा हूं, इसको खुल करके देखना, तेरा और छह भाई है।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. சிவாய நம. சைவம் டாட் ஆர்கின் அன்பான நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவகீர்த்தனைகள். பாடல் முத்தையா பாகவத இயற்றிய ஆண்டவன் தரிசனமே. ராகம் ஜோன்புரி. பாடியவர் ஸ்மிருதி ஸ்ரீதர். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஸ்.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: शिवाय नमः सांब शिवाय नमः हरवोम तत्सत्
1: ओम नमः शिवाय.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: हमारे यहां तो मछली ने मनुष्य को पैदा किया है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कल यदि विज्ञान आपको मछली से मनुष्य को पैदा करके दिखा देवे तो इसको आश्चर्य नहीं मानना, ये तो माया यम सर्वसंभव। मकरध्वज पैदा

हो गए मछली से, पैदा हो गए कि नहीं बोलो, हनुमान का बेटा। अब यह संभव है कि ब्रह्मचारी से बच्चे पैदा हो सकते हैं? हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, फिर भी बच्चा पैदा हो गया, मकर ध्वज पैदा हो गया, ये कोई असंभव नहीं। श्रृंगी ऋषि पैदा हो गए, असंभव नहीं। सुखदेव पैदा हो गए पक्षी के अंडे से, ये असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मायायाम सर्वसंभव, अघटित घटना पटी ऐसी माया। वेदांत ने एक माया तत्व को स्वीकार किया है, और ये माया ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जहां प्रयोग करना चाहो कर लो, जो करना चाहो कर लो। ये ऐसा मल्टीपर्पज थियरी है माया थियरी। ईश्वर को सिद्ध करना चाहो तो इसी से सिद्ध करो, ईश्वर की सत्ता को निषेध करना हो तो इसी से निषेध कर दो, जीव को सिद्ध करना हो तो इसी से करो, जीव के स्वरूप ही निषेध करना हो तो इसी से करो। एक ही चीज माया ब्रह्म को नहीं बना सकती है, ब्रह्म के बाहर और सबको बना सकती है ना। माया ब्रह्म को, परमात्मा को, सत्ता को, प्रकाश को, ज्ञान को, चैतन्य को, सुख को, आनंद को नहीं बना सकती है। ये जीवों को जहां भी सुख और आनंद की प्रतीति प्राप्ति होती है वह माया का बनाया हुआ नहीं है, ये तो ब्रह्म का ही आनंद आभास के रूप में यहां तक आया है। आनंद ब्रह्म माया नहीं बना सकती है, सुख माया का निर्माण नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप है। अद्वैत ये माया नहीं बना सकती है, अद्वैत ये ब्रह्म का स्वरूप है। सत्ता माया नहीं दे सकती है, क्योंकि सत्ता माया की अपनी ही सत्ता नहीं है, तो फिर दूसरों को क्या सत्ता देगी? माया के अपने खुद सत्ता नहीं है, दूसरे के सत्ता में माया आश्रित है, तो फिर वो खुद माया दूसरों को क्या सत्ता देगी? माया खुद अपने आप प्रकाशित नहीं हो सकती है, तो फिर दूसरों को क्या प्रकाश दे सकती है माया? तो प्रकाश देने का काम भी आत्मा यानी ब्रह्म का है, सत्ता देने का काम भी उसी ब्रह्म का है, आनंद प्रदान करने का काम भी उसी ब्रह्म का है, चैतन्यता प्रदान करने का काम भी उसी ब्रह्म का है। माया किसी को चैतन्य नहीं बना सकती है, क्योंकि माया में खुद चेतनता नहीं है, तो वह अन्य को क्या चेतनता प्रदान करेगी? तो ये सारी भाव तो ब्रह्म के हैं, लेकिन ब्रह्म के इन सारे भाव को माया क्या करती है? पहले तो अपने में ग्रहण करती है, माया के ब्रह्म के सत्ता को अपने में लेकर वो खुद सत्तावान होती है, खुद सत्ता नहीं है, ब्रह्म की सत्ता को लेकर सत्तावान होती है। इसी तरह ब्रह्म खुद वो चैतन्य नहीं है, माया के चैतन्य को लेकर वह चैतन्य जैसे प्रतीत होती है, जैसे आपका शरीर खुद चैतन्य नहीं है, लेकिन आत्मा की चेतना को लेकर आपका यह शरीर चैतन्य जैसा प्रतीत होता है। आपको लग तो रहा है कि शरीर चैतन्य है, लेकिन खुद शरीर चैतन्य नहीं है। इसको चैतन्य बनने के लिए परमात्मा से चेतना लेना पड़ा। आत्मा चेतना की, आत्मा की चेतना को लेकर यह अस्तित्व में आया, तो आ शरीर है बना, इसके अपने अस्तित्व नहीं है। उसके चेतना को लिया तो ये भी चैतन्य जैसे प्रतीत होने लगा, उसकी आनंद को लिया इसने तो फिर ये भी शरीर प्राप्त है, शरीर में आनंद आ रहा है। अरे कहीं खुजली हो तो खुजाओ तो आनंद आता है, आनंद नहीं आता तो क्यों खुजाता व्यक्ति? तो शरीर को खुजाने से आनंद आता है, तो मूर्ति को खुजा दो तो नाचने लग जाएगा है? तो आनंद कहीं शरीर से आया है, तो आत्मा की आनंद को शरीर ग्रहण कर रहा है और वो शरीर को फिर विवर्त कर रहा है। तो भ्रांति ये होती है कि शरीर से आनंद आ रहा है। तो ये माया खुद अपने आप में कुछ नहीं, फिर भी उस ब्रह्म की सत्ता को लेकर कुछ प्रतीत होना ही माया का स्वरूप है।
इसी से सारे जगत की उत्पत्ति ये है विवर्तवाद। दृष्टांत दिया कैसे, तो बोले बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम्। पहले के सारे दार्शनिकों का विकल्प को खंडन करते हुए कहा सर्वे विकल्पा प्रागासिन बीजे अंकुर इवात्मनि इच्छा ज्ञान क्रिया रूपा मायया ते विजिंबिता। माया के माध्यम से उस अनिच्छा इच्छा रहित चैतन्य ब्रह्म में माया के संप्रकर से इच्छा प्रकट हो जाता है और ज्ञान स्वरूप परमात्मा में माया के संपर्क से ज्ञानी प्रतीत होता है। वह ज्ञानी नहीं है, वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी नहीं है। जैसे अब हम ज्ञानी हैं तो हम साधनों से ज्ञानी हैं, करणों से ज्ञानी हैं, मन मन की वृत्तियां, इंद्रियां इंद्रियों के प्राप्त होने वाले साधन इन्फॉर्मेशन उन सबको प्राप्त करके इन साधनों से हम ज्ञानी हैं। यदि इन साधन न हो तो हमारी ज्ञानीपना हमको सिद्ध नहीं हो सकता और को सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में इन साधनों का अभाव होने पर सुषुप्ति अवस्था में जिस तरह अभी हम यहां ज्ञानी बनकर बैठे हैं इस तरह की अवस्था सुषुप्ति में हमारी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? ज्ञान के साधन नहीं रहते इसलिए हम वहां इस तरह के ज्ञानी नहीं होते, लेकिन ज्ञान स्वरूप हम रहते हैं क्योंकि सुषुप्ति को प्रकाशित करने वाले ज्ञान स्वरूप रहते हैं। तो इसीलिए तो दो प्रकार के ज्ञान वेदांत मानता है, एक स्वरूपभूत ज्ञान जो साधन निरपेक्ष है, जो कि ब्रह्म में है, जो कि समाधि में प्राप्त होता है, जो कि सुषुप्ति में प्राप्त होता है, वो साधन निरपेक्ष ज्ञान वो अपना स्वरूप है। इस समय साधन के द्वारा प्राप्त हुआ हुआ जो ज्ञान है वह ज्ञान वह साधन से प्राप्त हुआ हुआ होने के कारण ये ज्ञान अपराविद्या के अंतर्गत होने के कारण ये ज्ञान स्वरूपतः ज्ञान नित्य है, लेकिन विशेष ज्ञान अनित्य है। सामान्य ज्ञान नित्य है, विशेष ज्ञान अनित्य है। यदि विशेष ज्ञान भी नित्य होता तो पिछले जन्म में भी आप थे, आपको भी बहुत से विशेष ज्ञान हुई थी, वह विशेष ज्ञान अभी भी यथावत होना चाहिए था। वह विशेष ज्ञान तो विस्मृति के कोटि में चले जाते हैं, और क्योंकि जिन निमित्तों से वो विशेष ज्ञान हुआ उनके अभाव में वह ज्ञान भी बाधित हो जाता है। तो विशेष ज्ञान वह आगंतुक है, आगमा अपायी है। सामान्य ज्ञान नित्य है, वेदांत की प्रक्रिया है ये सब। इच्छा ज्ञान क्रिया रूपा मायया। ईश्वर यदि अनंत इच्छा वाला, इच्छा शक्ति वाला, ईश्वर यदि अनंत ज्ञान वाला यानी ज्ञान शक्ति वाला, ईश्वर यदि अनंत क्रिया वाला यानी क्रिया शक्ति वाला, वह ईश्वर और वही जगत को उत्पन्न करता है ये माना गया है। तो ईश्वर में अनंत इच्छा शक्ति, अनंत ज्ञान शक्ति, अनंत क्रिया शक्ति यह माया से प्राप्त हुआ है। शक्ति शब्द ही माया का वाचक है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तो उसमें जो संकल्प करना ये क्षमता भी माया से प्राप्त हुआ। चैतन्य में संकल्प करने की क्षमता माया से प्राप्त हुआ है। चैतन्य में कर्म करने की क्षमता माया से प्राप्त हुआ है। निष्क्रिय चैतन्य में कर्म करने की क्षमता माया से प्राप्त हुआ है। निष्क्रिय चैतन्य में इच्छा करने की क्षमता, संकल्प करने की क्षमता माया से प्राप्त हुआ है। ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप परमात्मा में सर्वज्ञता की क्षमता माया से प्राप्त हुआ। देख लो ये बात ध्यान देना, ज्ञान स्वरूप ईश्वर में परमात्मा में सर्वज्ञता की क्षमता माया से प्राप्त हुआ है, क्योंकि सर्व का कारण है माया
और उस माया को उपाधि ग्रहण करने के कारण वह सर्वज्ञ हो गया। तो ज्ञान स्वरूप और सर्वज्ञ ये अलग अलग चीजें देख लो। ज्ञान स्वरूप निरुपाधिक है ब्रह्म का, सर्वज्ञ सोपाधिक है, क्योंकि सर्व होगा तभी ना सर्वज्ञ होगा। सर्व होगा किसके कारण से? माया के कारण से। एक से अनेक होगा तो उस किसके कारण से? माया के कारण से। एक से अनेक हुआ उस माया के कारण से, तो एक से अनेक को जानना भी उसी माया के कारण से ही होगा। अन्यथा माया न हो तो वो एक के एक रहेगा, सर्वज्ञ नहीं होगा, ज्ञान स्वरूप रहेगा। माया न हो तो एक का एक रहेगा, अनेक नहीं होगा। अनेक होने के लिए माया चाहिए, सर्वज्ञ होने के लिए, अनेकज्ञ होने के लिए भी माया चाहिए। विजृंभिता, विजृंभण का अर्थ होता है प्रकट होना, निकलना। जैसे गर्मी के समय में मिट्टी धूल धूल, कहीं मिट्टी मिट्टी है, धुलई धूल है किसी मैदान में, और वहां खोजने जाओ तो कहीं कोई घास का नाम निशान नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक जब बारिश होती है तो उसी धूल में से अनेक वनस्पति, अनेक घास पौधे, घास निकल आते, प्रगट आते, वही विजृंभिता। ये जगत बीज माया सबलित, ईश्वर में पहले संस्कार के रूप में माया के माध्यम से हैं और वही इच्छा के द्वारा प्रगट हो जाता है। दृष्टांत दिया, बीजस्यांत इवांकुरो जगत इदम, ईश्वर से माया उपहित चैतन्य, ईश्वर से ये सारा का सारा जगत वृक्ष के बीज से वृक्ष की तरह अपने आप प्रकट हो गया। अब कोई प्रश्न ये न करे कि वृक्ष बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और उसी वृक्ष से फिर पुनः बीज उत्पन्न होता है, फिर उस बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, फिर उसी वृक्ष से पुनर्बीज उत्पन्न होता है, तब ये बीज और वृक्ष, वृक्ष और बीज, ये किसका कौन कारण है और किसका कौन कार्य है ये निश्चय नहीं हो पाएगा। तो क्या इसी तरह ये अनादि अनंत तक इसी तरह कार्य कारण का निश्चय हुए बिना ही ये बीज वृक्ष, वृक्ष बीज, वृक्ष बीज, इसी तरह ईश्वर और जगत, जगत और ईश्वर, तो इसका मतलब तो जगत को भी बनने के लिए ईश्वर चाहिए, तो ईश्वर को बनने के लिए जगत चाहिए। बीज वृक्ष का दृष्टांत तो यही कह रहा है, ईश्वर को बनने के लिए जगत की अपेक्षा, जगत को बनने के लिए ईश्वर की अपेक्षा, बीज को बनने के लिए वृक्ष की अपेक्षा, वृक्ष को बनने के लिए बीज की अपेक्षा। तुम्हारा दृष्टांत तो ईश्वर और जगत के भी कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा, जैसे बीज और वृक्ष में कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता, इसी तरह ईश्वर और जगत के बीच में भी कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा। तो ये दृष्टांत कैसे कह रहे हो? ये एक अंश में दृष्टांत दिया है, ये दृष्टांत इस अंश में कि अव्यक्त ये सो नाम रूपात्मक जगत पहले इस रूप में नहीं था, ईश्वर से इस रूप में प्रकट हो गया, इतने अंश के लिए बीज वृक्ष का दृष्टांत है, उसको आगे बढ़ाना उचित नहीं है। बोले कार्य कारण भाव का कैसे सिद्धि करोगे? तो कहते हैं माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम, ये तो सामान्य व्यवहार में ही कार्य कारण का भाव सिद्ध होता है। कई बार इन साधनों के कार्य कारण के बिना भी कार्य उत्पत्ति देखने में आता है, जैसे स्वप्न वेदांत में प्रसिद्ध है, वेदांत में स्वप्न प्रसिद्ध है। स्वप्न में कहां कार्य कारण भाव है, कहां उपादान कारण है, कहां सहकारी कारण है? ईश्वर को कर्ता मानने के लिए, जैसे हमको कोई कर्ता मानना हो तो किसी वस्तु को बनाने के लिए तो हम अकेले नहीं कर्ता बन सकते हैं, साधन होगा तभी हम कर्ता बन पाएंगे। कोई कहे कि तुम रोटी बनाओ तो हम आटा न हो, गैस तवा न हो तो हम रोटी का निर्माता नहीं बन पाएंगे, नहीं बन सकते हैं। ईश्वर
इन साधनों के बिना कैसे निर्माण सृष्टिकर्ता बन गया? कुमाल को घड़ा बनाना हो तो मिट्टी, डंडा, चक्र आदि साधनों की अपेक्षा रखता है, तभी वह घड़े का कर्ता बन सकता है। इसी तरह अप्रसिद्ध ईश्वर साधन के बिना कैसे कर्ता बनेगा, ये बात कहते हैं। तो स्वप्न में तुम रोटी बना सकते हो बिना आटे के, सकते हो कि नहीं? स्वप्न में बिना आम का रस बना सकते हो कि नहीं? स्वप्न में आम लेकर जाते हो? स्वप्न में जाते समय में एक टोकरी आम नहीं ले जाते, और रस खाने की इच्छा हो गई तो बना लेते हो बिना आम का, तो वहां रस का निर्माता कर्ता बन गए कि नहीं? रोटी का निर्माता कर्ता बन गए कि नहीं? इसी तरह अब कोई प्रश्न ये कर सकता है, उसी को कहा मायावी व विजृंभ यद्यपि महा। मायावी इवा दृष्टांत दिया, पहला दृष्ट जैसे कोई जादूगर, मायावी यानी जादूगर कोई वस्तु को दिखाता है, बनाकर आपके सामने दिखा देता है और आपको स्पष्ट लगता है कि यह वस्तु बिल्कुल सही है, तो वह कोई पूरे साधन उपादान कारण सहकारी कारण आदि लेकर जादूगर कार्य को उत्पन्न नहीं करता। जैसे जादूगर सड़क के किनारे खड़ा होता है और ताली बजाता है, जोर जोर से आवाज करता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी पकड़ लेता है जमीन में से, हाथ में दिखाता है, क्या देख रहे हो? कहते मिट्टी है, सबको मिट्टी दिखाई पड़ती है। फिर उसके बाद मुट्ठी बंद करता है, फिर ताली पीटता है, ऐसे छोड़ देता है, तो फिर नोट हजार हजार के नोट निकल आते हैं। अब क्या हजार के नोट बनाना इतना आसान है? सामान्यतया हजार का नोट बनाना हो तो गवर्नर का साइन चाहिए, चाहिए कि नहीं? और उस जादूगर के नोट को आपके हाथ में आप देखेंगे तो गवर्नर का साइन भी हुआ है वहां, हाँ सब दिखता है, अशोक का निशान चाहिए, वहां छाप चाहिए, उसी प्रकार के कागज चाहिए, प्रिंटिंग मशीन चाहिए, वहां कहां है प्रिंटिंग मशीन, कहां है सिक्योरिटी, कुछ नहीं। फटाफट खड़ साहब के देखते थे सड़क में हजार हजार के नोट बना के दिखा देता है, लेकिन कोई उसको अरेस्ट करने नहीं जाते है, जाते और पाकिस्तान जब इंडिया में डुप्लीकेट नोट लेके आते हैं तो उसको फिर पकड़ लेते हैं। जादूगर वो डुप्लीकेट नोट ला दिखा देता है तो उसको नहीं पकड़ते है? वो सब कैसे संभव हुआ? तो बोले जादू का प्रभाव है, जैसे वहां जादू के प्रभाव है, उससे साधन सामग्री उपकरण आदि के बिना भी कार्य उत्पत्ति की प्रतीति होती है। इसी प्रकार से ईश्वर अकेले उपादान कारण ग्रहण किए बिना, सहकारी कारणों को ग्रहण किए बिना अकेले ईश्वर जगत उत्पन्न करके दिखा देता है। कैसे? तो मायावी इवा, मायावी की तरह, जादूगर की तरह। अब कोई प्रश्न ये करे, जादूगर अपने जादू के प्रभाव से कोई भी वस्तु यदि निर्माण करता है, उत्पन्न करता है, तो वह प्रतीति का विषय बनता है, नाम रूप प्रतीति का विषय बनता है, परंतु व्यवहार का विषय नहीं बनता। वही जादूगर हजार हजार के नोट दिखाने के बाद फिर आपके सामने एक रुपया के लिए हाथ फैलाता है, है? फैलाता है कि नहीं? क्यों फैला रहा है? उसको भी पता है कि मैं जो नोट दिखा रहा हूं एक जादू और भ्रांति के भ्रम के प्रभाव से दिखा रहा हूं, वो दिखने वाले नोट व्यावहारिक नहीं है। प्रतीति का विषय है, व्यवहार का विषय नहीं हो सकता। इसी तरह यदि ईश्वर से मायावी की तरह ये जगत उत्पन्न हुआ हुआ है तो ये भी केवल प्रतीति का विषय होना चाहिए था, समग्र व्यवहार का विषय नहीं होना चाहिए था, जबकि लौकिक व्यवहार का विषय बन रहा है, शास्त्रीय व्यवहार का विषय बन रहा है।
दोनों व्यवहार का विषय बन रहा है, लौकिक व्यवहार का विषय भी बन रहा है यह जगत, शास्त्रीय व्यवहार का विषय भी बन रहा है। तो फिर जादूगर की तरह ये कैसे हम मानेंगे? इसका उत्तर तुरंत व्यावहारिक जगत माया से, केवल माया से बना हो तो ये जगत जादूगर की तरह बना हो तो ये जगत व्यावहारिक सत्ता वाला नहीं होना चाहिए। जैसे केवल स्वप्न से बना हुआ स्वाप्निक जगत प्रतीति का विषय बनता है, व्यवहार का विषय नहीं बनता। समझ रहे ना? हमारे एक महात्मा थे, वो बार बार कहते थे स्वप्न की लड़की और जागृत के लड़के का हस्तमिलाप हो सकता है कि नहीं है? ऐसा कहते थे महात्मा, स्वप्न की लड़की का और जागृत के लड़के के साथ हस्तमिलाप होगा कि नहीं। कोई भी वस्तु की जो एकता है, मिलन है, समानता है, उसके लिए समान सत्ता होनी चाहिए, असमान सत्ता में एकता नहीं है। सपना का लड़का और सपने की लड़की का हस्तमिलाप हो सकता है कि नहीं? सपना का लड़का सपने की लड़की के साथ हस्तमिलाप हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की सत्ता एक है। लड़के की सत्ता भी प्रातिभाषिक सत्ता है, स्वाप्निक सत्ता है, लड़की की सत्ता भी प्रातिभाषिक सत्ता है, स्वाप्निक सत्ता है, तो दोनों का हस्तमिलाप हो जाएगा। और जागृत का लड़की, जागृत की लड़की और जागृत का लड़का का हस्तमिलाप होता है कि नहीं? होता है। आप लोगों का हुआ कि नहीं है? आप लोगों का हुआ कि नहीं? नहीं हुआ कहने वाला है कोई? या हमारा नहीं हुआ ये और क्या, हम तो है, ये हमारा नहीं हुआ है। जागृत का लड़का और जागृत की लड़की का हस्तमिलाप होगा कि नहीं? कैसे होगा? क्योंकि उसकी दूसरी सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है। व्यावहारिक सत्ता में व्यावहारिक लड़का, व्यावहारिक लड़की का हस्तमिलाप होगा, लेकिन स्वप्न की लड़की और जागृत के लड़का दोनों का हस्तमिलाप नहीं होगा। क्यों? दोनों की सत्ता अलग अलग है। दोनों की सत्ता अलग अलग होने के कारण एकता नहीं है। तो ये व्यावहारिक कैसे होगा महाराज? तो उस अव्यवहारिकता के दोष को निवारण करने के लिए शंकराचार्य जी ने तुरंत दूसरा उदाहरण दिया, महायोगी व महायोगी, योग साधना से परिपक्व हुए हुए महान सिद्ध योगी, योग सिद्धि के माध्यम से बिना उपादान कारण के और बिना सहकारी कारण के ग्रहण किए भी वह कार्य को उत्पन्न कर देता है, और उन योगियों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ जो कार्य है वह पूरा का पूरा व्यावहारिक होता है। इसी तरह अब योगी में जो शक्ति आई है वो तो ईश्वर से है, ईश्वर के शक्ति का एक अंश प्राप्त करके उस योगी में वो क्षमता आई है। उपादान कारण और सहकारी कारण के बिना भी कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता योगी में कहां से आया? तो बोले ईश्वर से, उसके एक छींट, एक चिंगारी लेकर वो शक्ति आ गए। तो वो परमात्मा तो योगेश्वर है, योगियों का भी ईश्वर है। फिर उसके बारे में तुम ये कैसे शंका कर रहे हो कि परमात्मा उपादान कारण सहकारी कारण के बिना जगत को कैसे उत्पन्न कर सकता है? ये कल्पना तुम कैसे कर रहे हो? एक योगी उपादान कारण और सहकारण का ग्रहण किए बिना अकेले कार्य को उत्पन्न करता है, और योगी जो सृष्टि करता है वह सृष्टि पूरा का पूरा व्यावहारिक होता है। एक दो दृष्टांत हैं उन योगियों की सृष्टि कैसे होती है और वह व्यावहारिक होती है, ये दृष्टांत सहित इसके विवेचन हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Appudi Adigal, presented by Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhaktos, abhi hum sunenge aur ek Dakshin Bharatiya sant ya Nayanmar ki kahani, jinka naam Appudi Adigal hai. तिरुवायूर के निकट तिंगलूर में अपुतियर नामक द्विज श्रेष्ठ या ब्राह्मण रहते थे। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ऐसी धारणा के फलस्वरूप उन्होंने जनसेवा के लिए मठ, धर्मशालाएं, पीने के पानी के जगह आदि का निर्माण किया। किरणावर परिषद, जो कि और एक दक्षिण भारतीय संत हैं, उनका नाम सुनकर अपुतियर ने उनके बारे में जाना और जैसे ही उन्होंने जाना, उन्होंने किरणावर परिषद को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया। गुरु के प्रति असीम भक्ति के कारण उन्होंने अपने घर के गाय बछड़ों, अपने द्वारा निर्मित मठों, मंदिरों और धर्मशालाओं आदि का नाम भी तिरुनावकरसर के नाम पर ही रखा था। संयोगवश एक बार संत तिरुनावकरसर तीर्थ यात्रा करते हुए इनके यहाँ पर आ पहुंचे। जब यह ज्ञात हुआ कि आगत अतिथि ही उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, तो अपुतेयर के हर्ष का सीमा न रहा। गुरुदेव के योग्य सत्कार और अतिथिय का विशेष प्रबंध किया। संत तिरुनावकरसर के लिए भोजन तैयार हो रहा था। अपुतेयर का ज्येष्ठ पुत्र भोजन परोसने के लिए केले के पत्ते काटने के लिए गया था। बालक पत्ता काट ही रहा था, एक भयंकर सांप ने उसे डस लिया, तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। पति पत्नी ने इस शोक सूचना को गुरुदेव से इसलिए छिपाया कि उनके अतिथियों में कहीं बाधा न पड़े। पुत्र के मृत शरीर को एक चटाई में लपेट कर घर के पिछवाड़े पर रख लिया और गुरु के भोजन के लिए एकजुट होकर तैयारियां करने लगे। उन्होंने गुरु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। संत तिरुनावकरसर ने भोजन के लिए बैठते ही उनके पुत्र को बुलाने के लिए कहा। शोक में डूबे अपुतेयरिगल और उनकी पत्नी को सारी घटनाएं बतानी पड़ी। तिरुनावकरसर ने उनकी त्याग भावना और धर्मनिष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसी क्षण बालक को शिव मंदिर ले जाकर भगवान से भाव विभोर होकर स्तुति करने लगे। मृत बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ मानो नींद से जागा हो। उस युग में यातायात की सुविधाएं बहुत कम थी। दूर चोल देश के ब्राह्मण अपुतेयर ने तिरुनावकरसर की भक्ति और त्याग भावना का वर्णन सुनकर उन्हें अपना गुरु धारण कर लिया था। तिरुनावकरसर कृषक कुल में पैदा हुए थे, फिर भी उनको ईश्वर तुल्य मानना और उनके लिए सर्वस्व न्योछावर करने की भावना इस बात को सिद्ध करती है कि भक्ति मार्ग में जाति भेद का कोई स्थान नहीं। भक्ति की चरम सीमा में पहुंचकर भक्त के लिए समस्त चरचेतन में आराध्य देव के ही दर्शन होते हैं। इसी आधार पर अपुतेयर को सब कुछ तिरुनावकरसर स्वरूप ही दिखाई देता था। विशाल क्यारियों में युक्त वन प्रदेश को तैयार करना, तालाब खुदवाना, धर्मशालाएं और प्याऊ बनवाना आदि अनेक सेवा कार्य करते हुए अपुतेयर के मन में उनके साथ अपना नाम जोड़ने का भाव जरा भी नहीं आया। वे निष्काम भाव से इन सब कार्यों को अपने मानसिक गुरु तिरुनावकरसर के नाम से ही चलाते थे। वर्तमान समाज में नाम मात्र के लिए पुण्य कार्य करने वाले लोग अपने नाम को बड़े अक्षरों में खुदवा कर अथवा अन्य प्रकार के प्रचार करवा कर आदि का आश्रय लेकर प्रसिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अपुतेयरिगल की निस्वार्थ सेवा हमारे लिए उदाहरण स्वरूप है। अपने अतिथि के स्वरूप में आए गुरु के भोजन में व्यग्न न पड़ जाए, इसलिए अपने मृत बालक के शव को छिपाकर उस मानसिक यंत्रणा और पीड़ा को सहन किया जो असहनीय है। उधर गुरु ने भी ज्ञान नेत्र से सब जान लिया और शिव की आराधना करके उनकी कृपा से बालक को पुनः जीवित कर दिया। भक्ति के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करने वाली यह प्राचीन कथा हमारे लिए आज भी मार्ग प्रदर्शन करने में सक्षम है।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स।
4: In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: दंतित्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलम् अन्यैस्तु किं कर्मभिः। वसनम् चर्म। अब कपड़ा तो पहनते हो, चमड़ी का, हाथी का चमड़ा, बाघ का चमड़ा। अब आप बड़े खुश होकर, प्रसन्न होकर अपने कपड़ा निकालकर दोगे तो उससे मेरा क्या होगा भाई? उससे मेरा क्या होगा? आपके कपड़े मेरे किस काम के? बोलो। व्यक्ति वही तो होता है, प्रसन्न होता है तो अपने कपड़े दे देता है। हमारे एक भक्त थे, अभी भी हैं बेचारे, बहुत वृद्ध हो गए। इलाहाबाद कुंभ मेले में गए, जनवरी का महीना, बड़ी ठंडी, मकर संक्रांति को पहला स्नान, 14 जनवरी, 13 जनवरी। सुबह सुबह गंगा जी नहाने गए, नहाने के आते समय में बड़ी ठंडी लगी थी, तो वो स्वेटर पहना था, मोजे पहने थे, उसके बाद टोपी लगाया था, गलबंदी बांधा था, तो वहां देखा उस गंगा के किनारे कुछ यात्री ऐसे ही ठंडियों में सिकुड़ रहे थे, कांप रहे थे। उनको देखा, बड़ी दया आ गई उनको, तो बढ़िया शॉल था उनके ऊपर, पहाड़ से उतारा और उसको दे दिया। दूसरा देखे तो वो भी कांप रहा था, तो टोपी निकाला उसको दे दिया। तीसरा देखते वो कांप रहा है, गलबंदी निकाली उसको दे दिया। चौथा देखा वो कांप रहा है, स्वेटर निकाली उसको दे दिया। और तो सभी लोग घाट में ठंडी में सिकुड़ रहे हैं, उनको दया आ गई बिचारे को। और कैंप में आते आते तो खाली एक कच्छा और बनिया। क्या हुआ? बोले अब क्या करें, घाट नहाने गया, सब दुखी हैं, कांप रहे हैं बिचारे ऐसे ठंडी में। वो भी मांगता है, वो भी मांगता है, वो भी मांगता है, सब दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि कैंप में और सेट थे, आए फिर फटाफट पहन ली। अब ऐसा व्यक्ति बाहर निकलेगा तो लुटाएगा ही। तो हे शिवा, आप भी इसी तरह दयालु हो जाओ और अपने जो कपड़े उतार उतार के देने लग जाओ। आपको दिगंबर होने में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपके कपड़ा में प्राप्त करके मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? बोलो। और कदाचित आपके कपड़े मैं पहनूं और जाऊं और तुरंत बारिश हुआ और भीज गया तो वो कपड़ा किस काम का भाई? वो कपड़े को तो भीजा हुआ शिवजी का दिया हुआ कपड़ा यदि भीज गया तो कुत्तों को गिद्धों को कागों को काम आ जाए, है ना? हमारा किस काम का भाई? क्यों चमड़े में पानी पड़ते ही तो सड़ जाएगा, सड़ेगा तो काग गिद्धे तो खा ले, हमारे तो काम का नहीं महाराज। असनम गरलम पणी कलापो वसनम चर्मच वाहनम महोक्ष। अब आपके जो सवारी करने का जो वाहन है वो तो बैल है, वाहन मोक्ष। कहते हैं कि कोई व्यक्ति गांव में था तो गांव में वो साइकिल रखा करता था और साइकिल से आता जाता था। और धीरे धीरे काम करने के लिए वो बंबई आ गया और ये सोचकर कि बंबई में भी साइकिल काम आ जाएगा तो वही साइकिल चढ़ के इधर से उधर उधर से उधर घुमा करता था। भगवान की बड़ी कृपा हुई, खूब संपत्ति कमा लिया, अब तो गाड़ी रखने लगा, एक नहीं दो नहीं तीन बहुत गाड़ियां हो गई, बड़ा बंगला हो गया। लेकिन वो साइकिल कोने में रखी हुई थी उसकी, और गाड़ी रखी तो ड्राइवर रखा था। एक समय की बात है कि वो ड्राइवर कहीं दूर रहता था झोपड़ी में, और जाता था और चलाता था, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यातायात हड़ताल हो गया, है ना? परसों हो गया था टैक्सी ऑटो तो आ नहीं पाया, दो दिन तक ड्राइवर आ नहीं पाया, तो सेठ को कहीं जाना था जा नहीं पाया। क्या हुआ? बोले महाराज हम कैसे आए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यातायात सार्वजनिक यातायात हड़ताल हो गया, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो हम कैसे आते, पैदल आना संभव था नहीं। बोले साइकिल में आता। बोले महाराज हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है। अरे तुरंत उस सेठ को याद आ गया, भाई अरे वो गैरेज में मेरी पुरानी साइकिल पड़ी हुई है, ले जा। समझे कि नहीं? क्या नया ये? होंडा सिटी देगा वो सेठ? अभी अभी खरीद के लाया था, वो देगा क्या उस ड्राइवर को? वो गैरेज में पड़ी है पुरानी मेरी साइकिल, वो ले जा मरम्मत वगैरह कर लेना। अब कभी कभी हड़ताल हो आना मुश्किल हो तो वही साइकिल से आना। बड़े खुश होकर कृपा करके दे दिए। किसने? सेठ ने। उस ड्राइवर का तो कल्याण ही हो गया, समझे कि नहीं? ले गया, मरम्मत कर ली, अब किस दिन हड़ताल वगैरह हो गया तो साइकिल चला आ गए, उसका तो कल्याण हो गया महाराज। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं महाराज आप प्रसन्न होकर अपना वाहन दोगे उससे मेरा क्या होगा भाई, और मुसीबत, उसको घास खिलाना पड़ेगा रोज प्रतिदिन, हैं? उसके गोबर कौन उठाएगा, उसको घास कौन खिलाएगा, कहां से खिलाएंगे भाई? क्या सुंदर भाव है इस श्लोक में। असनम गरलम फणी कलापो वसनम चर्मच वाहनम मोक्ष। मोक्ष माने बैल, बूढ़ा बैल। मैमने स्तोत्र में भी आता है ना, मोक्ष कटवांगम परसुरजिनम भस्म फणिन कपालम चेती यत तव भरत तंत्रोपकरणम। पुष्पदंताचार्य जी ने तो वहां सात साधन गिनाए, शंकराचार्य जी ने तो केवल चार साधन गिना दिया है। मम दास्यसि किम किमस्ति शंभो, हे शंभो आपके पास मुझे देने के लिए क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। हां एक चीज है बस, यदि आप प्रसन्न होकर देना चाहो तो मुझे वही चाहिए। क्या बेटा? मम दास्यसि किम किमस्ति शंभो तव पादांभुज भक्तिमेव देहि। तव पाद अंबुज, आपके चरण कमल की भक्ति दे देना बस, उससे मेरा कल्याण होगा, बाकी और वस्तु से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। और आपकी भक्ति में कर रहा हूं, आपके सान्निध्य में मैं आश्रय में रहकर आपकी सेवा कर रहा हूं, तो कोई बहुत वस्तु प्राप्त करूंगा इस आशा से भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ एक वस्तु है, आप कृपा करके आपके चरण कमल की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा महाराज। तो भगवान से यही एक वस्तु जीवात्मा को अभिष्ट है, इसके अलावा और कुछ भी अभिष्ट नहीं है, और सब अनिष्ट कारक हैं, अभिष्ट तो उनके चरण की भक्ति ही श्रेष्ठ है, इसका आशय ही है। 88वां श्लोक भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, यदा कृतांबो निदिशे तु बंध करस्थलाध कृत पर्वताधिप भवानिते लंघित पद्म संभवस् तदा शिवार्चास तब भावनक्षम हो। हे शिवा तब अर्चा, आपके पूजा करने की क्षमता मुझ में नहीं है, आपकी पूजा करने की क्षमता मुझ में नहीं है, क्योंकि आपके पूजा करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिसमें वो सामर्थ्यता है वही आपकी अर्चना कर सकता है, आपकी सेवा आपकी पूजा कर सकता है। जिसमें वो सामर्थ्यता नहीं है तो आपकी क्या पूजा करेगा? हमने सुना है महाराज, भगवान राम ने आपकी खूब अर्चना की है, पूजा की है, वह सामर्थ्यशाली थे इसीलिए आपकी पूजा करने में समर्थ हुए। यदा कृतांबो निधि सेतु बंधन, उनमें वो सामर्थ्य था थी, अंबो निधि, अंबो अप जल, अप भवती थी अंबा, निधि माने समुद्र, अंबो निधि सागर सेतु समुद्र। भगवान ने जब राम ने सेतु बंधन कर सके वो पुरुषार्थ उन्होंने दिखाया, उनमें वो सेतु बंधन करने की सामर्थ्यता थी, तभी उन्होंने आपकी पूजा कर सके, रामेश्वर की पूजा किया है ना। यदा कृता कृता, यदा कृता अंबो निधि सेतु वंदन कृत। तब राम ने पूजा की, तब आपका नाम रामेश्वर हुआ। उनमें वो सामर्थ्यता थी। दूसरा उदाहरण दिया शंकराचार्य जी ने, करस्थलाध कृत पर्वताधिप, पर्वत अधिप पर्वतों का राजा हिमालय, दोनों अर्थ लग सकता है। और रावण में भी वह सामर्थ्यता थी। वो साधारण व्यक्ति नहीं था रावण। उसने पूरा का पूरा हिमालय को हाथ में उठा लिया था। वो सामर्थ्यता उसमें थी, तभी तो आपने दस दस मस्तक को काटकर आपके चरणों में अर्पण कर दिया। उसमें आपकी पूजा करने की क्षमता योग्यता है, क्योंकि उसमें पर्वत को उठाने की क्षमता है। दूसरा अर्थ है कर तल अध, तलाधकृत पर्वताधिप, अगस्त ऋषि ने पर्वत को झुका दिया था। पुराण का प्रसंग आप लोगों को पता है ना, देवी भागवत का प्रसंग है। विंध्याचल देवी, विंध्यवासिनी विंध्याचल, देवी भागवत में जब विंध्याचल विंध्यवासिनी का प्रसंग आता है तो उस समय विंध्य पर्वत का प्रसंग आता है। कहते हैं कि ये विंध्य पर्वत बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, ऊपर उठे जा रहा था, उठे जा रहा था, कि उसके चलते सूर्य को एक दिशा से दूसरे दिशा जाना व्यवधान हो गया था। जा ही नहीं पा रहे थे, रुक गए। इतना बढ़ गया कि सूर्य की गति रुक गई। सारे देवता हैरान हो गए कि अब करें क्या, और किसी का वो न माने पर्वत, क्योंकि झुकना जानता नहीं है वो, बढ़ना जानता है झुकना नहीं जानता। आजकल के हमारे बच्चे जैसे हैं, अकड़ने जानते हैं झुकना नहीं जानते। बात बात पर अकड़ते हैं, झुकना नहीं जानते वो, और झुकना न जानने के कारण ही पारिवारिक कला है, विनम्रता है ही नहीं, झुकना जानते नहीं। मां के सामने झुकना नहीं जानता, बाप के सामने झुकना नहीं जानता, भाई के सामने झुकना नहीं जानता। झुकने को तो सिखाया ही नहीं ना किसी ने, हैं? किसी ने भी नहीं सिखाया। बढ़ना जानता है, अकड़ना जानता है। कहता है मैं क्यों झुकू, बाप से ज्यादा मैं पढ़ा हूं तो मैं क्यों झुकू, कह देता है आज का बेटा। कहता है कि नहीं बोलो, और सचमुच बाप से ज्यादा पढ़ा हुआ ही है। बोलो, दादा के सामने क्यों झुकेगा? दादा अंगूठा छाप है और हम मास्टर डिग्री है, मां के सामने क्यों झुकेगा? मां अंगूठा छाप है। दादी के सामने क्यों झुकेगा? दादी अंगूठा छाप है। ज्यादा से ज्यादा उसका बाप एसएल इंटर किया होगा, उसकी मां इंटरमीडिएट की होगी, बीए एमए की होगी, हम तो डॉक्टर पीएचडी है। एक महात्मा थे, पीएचडी माने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन का कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी। क्या अकड़ दिखाता, फिर भी नगर पालिका कर्मचारी कम अकड़ दिखाता है तुम्हारे सामने। कचरा लेने के जब आता है तो क्या करता है दरवाजे में खड़े होकर, नगर पालिका कर्मचारी झुकना नहीं जानते। बढ़ रहे हैं, समृद्धि हो रही है। दादा के साथ पुरानी साइकिल थी, बाप के साथ एक गाड़ी थी, बेटे के पास आज तीन तीन गाड़ी है। लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं, महाराज आपका मोबाइल देखा ना, जब मैं अपना मोबाइल दिखाता हूं ना, ये क्या है महाराज? बोले मोबाइल है। कितनी की है पता है? आज के जमाने में भी मेरे पास मोबाइल 1000 का सेट है, खाली 1000 की है। आज कहां कहां पहुंच गया दुनिया। एक वक्त ने मुझे अमेरिका में एप्पल का आईफोन दिया, आई फोर लेके आए, अब चलाने ही नहीं आता है, उसका फंक्शन ही पता नहीं क्या है वो है? दे दिया, मेरा चेला चला रहा है, अब मैं मुझे चलाना नहीं आता तो करे क्या। कहते हैं कि विंध्याचल बढ़ता ही गया, परिणाम हो गया सूर्य के रास्ते में आ गया, और सूर्य एक दिशा से दूसरी दिशा जा नहीं पाए थे, देवताओं को परेशान हुआ, अब क्या करें, किसी का नहीं मानता है। कहते हैं कि शायद हमारा ना माने तो ना माने, गुरु का तो मानता होगा ना, वो अपने गुरु का तो मानेगा। सब लोग जाकर उस विंध्याचल विंध्या पर्वत के गुरु के पास पहुंचे। विंध्य पर्वत के गुरु थे अगस्त ऋषि। जाकर सब कहा कि आपका चेला ऐसा अकड़ हो गया है, इतना बढ़ गया, झुकता ही नहीं है, और सूर्य उधर नहीं जा पा रहे, तो आप कुछ करिए, उसको समझाइए। बोले और कुछ कहेंगे तो वो शायद मेरे सामने भी अकड़ दिखावे, इसलिए कहने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ उपाय करना चाहिए। तो अगस्त ऋषि खड़ाऊं पहनकर चले गए, पैदल ही खड़ाऊं पहनकर गए। गए तो सामने खड़ा था कौन, चेला विंध्याचल खड़ा था। गुरु को देखा तो बोले गुरुदेव क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या काम है? बोले बेटा हमको आज दक्षिण की तरफ जाना है, जरूरी काम है, वहां जाने के लिए आए हैं, और तू इस तरह खड़ा है कि हम कैसे जाए, मुझे रास्ता नहीं देगा। बोले आपको तो देना पड़ेगा महाराज, आपको देंगे। तब मैं बूढ़ा हो गया हूं, चढ़ाई करके तो जा नहीं सकता हूं, तो उसके लिए झुकना पड़ेगा। बोले ठीक है, प्रणाम भी हो जाएगा, रास्ता भी आपको मिल जाएगा, झुक जाते हैं। वो झुक गया, लेट गया। अल आप जाइए। बोले बेटा मुझे फिर आना है, जब तक मैं ना हूं इसी तरह लेटे रहियो। तो अगस्त ऋषि तो गए, गुरुओं में भी बदमाशी होती है बेचारा है। देखो अब विंध्य पर्वत को कैसे धोखा दिया उन्होंने। बोले जो आज्ञा गुरुदेव, जरा जल्दी आइयो। हां बेटा आएंगे। तो सो गया, लेट गया वो। और अगस्त ऋषि चले गए दक्षिण, आज तक लौट कर नहीं आए और विंध्य पर्वत आज तक सोया का सोया ही है। उसी पर्वत के ऊपर विंध्यवासिनी निवास करती है। विंध्याचल निवासिनी, तो अष्टभुजा भी वहीं पर है, विंध्याचल भी वहीं।

0: भी असमर्थ हुए। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र में आता है ना, वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनिन्द्र देवार्चित शेखराय। वशिष्ठ ऋषि ने कुंभोद्भव ऋषि, वशिष्ठ कुंभोद्भव, कुंभोद्भव ऋषि का ही दूसरा नाम है अगस्त ऋषि। अंगद ऋषि कहो चाहे कुंभद ऋषि कहो, एक ही चीज है, कुंभोद्भव गौतम ऋषि है। इन सब ने भगवान शिव की कृत शेखर आया, वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतम आर्य मुनिन्द्र देवार्चित शेखर आया, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यदा कृतांबो निधिषेदुबंध करस्थलाध कृत पर्वताधिप भवानी ते लंगित पद्म संभव। पद्म संभव लंगित, ब्रह्मा जी के मर्यादा को भी अतिक्रमण करके भगवान विष्णु पद्म संभव लंगिता यानी जीत लिया। किसको? भगवान विष्णु ने पद्म संभव वर्मा को जीता। किसके आधार पर? कल व्याख्या हो गई है, सत्य के आधार पर। क्योंकि विष्णु ने सत्य बोला, ब्रह्मा ने झूठ का आश्रय लिया, झूठ का आश्रय लेने के कारण ब्रह्मा छोटे हो गए और श्राप के भागी हो गए, दंड के भागी हो गए। और सत्य का आश्रय लेने के कारण ही विष्णु ब्रह्मा से बड़े हो गए। तो ब्रह्मा के लेवल का लंघन किया भगवान विष्णु ने, किसके आधार पर? सत्य के आधार पर। इसीलिए भगवान विष्णु ने शिव की अर्चना कर सके विष्णु। कैसे? हरिष्ते साहस्रम कमल बलिमादाय पदयोर, तब अपने नेत्र रूपी कमल को अर्पण करके भी भगवान शिव की अर्चना कर सके। इसीलिए संसार में विष्णु की प्रतिष्ठा बढ़ गई और विष्णु ने शिव की पूजा की। ब्रह्मा ने शिव की पूजा की कहीं इतिहास नहीं है, क्योंकि वह सामर्थ्यता थी। तदा शिवार्चास्तव भावनक्षम हो, हे शिव आपकी अर्चना करने में तब क्षमता, और मैं न तो सेतु बंधन करने में समर्थ हूं, न पर्वत को झुकाने में समर्थ हूं, न तो ब्रह्मा को भी जीतने की सामर्थ्यता है मुझ में, फिर मैं आपकी अर्चना कैसे कर सकता हूं महाराज। बस इतना ही है कि मेरे पास जो एक मन है वो आपको अर्पण कर सकता हूं। चलो आगे फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिवागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो।

0: 24/7 spiritual channels from shivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: जानने के लिए उद्धृत होते हैं, मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वेद भी आपको बिना जाने वापिस आ गए हैं। ऐसे शरण रूप प्रिय ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अभी परमात्मा के लिए परमात्मा को नमस्कार वाचक अब जो भी कुछ भक्ति जो है, जो भी कुछ स्तुति है, मैं आपको जान रहा हूँ अकार उकार मकार से, मैं आपको निर्गुण निराकार से जान रहा हूँ, फिर भी नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रारब्ध वचात पाप और पुण्य जो है उसमें से तो मुझे अभी गुजरना ही है। एक बार सुन लिया कि मैं वो तत्वमसी, मैं वो परब्रह्म हूँ, तो हो नहीं जाते ये क्या है, मेडिकल में कोई स्टूडेंट एंटर होता है तो पहले ही दिन से उनसे क्या हम बोलते हैं, अरे डॉक्टर, वो घर में भी बच्चा आएगा तो क्या बोलते हैं, देखो डॉक्टर आ गए डॉक्टर। अभी वो तो अभी एडमिशन लिया है, बट ही और शी इज नोन एज अ डॉक्टर। ऐसे ही अभी तो जब श्रवण करने की शुरुआत की है, अभी तो गुरु से बोध, सिर्फ बौद्धिक बोध प्राप्त किया है तत्वमसी, पर अभी अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति कहाँ आई है, अहम ब्रह्मास्मि तो बाकी है। तब तक क्या करना है, तब तक मात्र परमात्मा का ही श्रवण, परमात्मा का ही शरण, परमात्मा का ही स्मरण और भक्ति करना है। तो कैसी भक्ति है, जैसी भगवान पुष्पदंत जी ने की है। फिर से कहा है, यहाँ अलग अलग नाम से परमात्मा को पुकारा गया है, मतलब एक ही है कि जो कुछ भी है, जो अनुभवात्मक है, जो भी कुछ नाम रूपात्मक है, वो सब आप ही है। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि, सर्वत्र परमात्मा दृष्टि से जिस दिन जिस क्षण हम भर जाएंगे, समझ लेना कि हम वो परमात्मा को जान गए हैं। इतना भी आपके लिए मत छोड़ना, हाँ भाई ये सब कुछ परमात्मा है, इतने कर्म जो है वो मैं परमात्मा प्रीत्यर्थ करूंगा, पर ये एक जो है कर्म वो मैं बाकी रखता हूँ, ये एक आसक्ति रह गई है, एक इच्छा बाकी रह गई है और इसको मैं बाजू पे रखता हूँ, मेरे जीवन के सब कर्म मैं परमात्मा के लिए छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं होगा। जब परमात्मा भी बोलेगा कि मैं सब भक्तों का कल्याण करूंगा, ये एक को बाकी रख गए परमात्मा के, परमात्मा को जानने के लिए हमने भी एक कर्म बाकी रखा, तो यहाँ ऑल और नन थियरी है, या पूरे उनके बन जाओ, पूरे उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो हाँ, या फिर कुछ भी नहीं करो। और एक बात ख्याल में रखना, अगर आत्म साक्षात्कार मुझे करना है, अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति मुझे लानी है, ऐसी इच्छा आपको है, आपके जगत कारण को जानना है, आपके मूल को जानना है, स्रोत को जानना है, ऐसी इच्छा है, तो एक बात आज दिमाग में बराबर रख के जाइए, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, ये वाक्य दिमाग में से निकाल दीजिए, यह अहंकार निकाल दीजिए। यह अहंकार मैंने कहा ना बहु रुपया है, इनफैक्ट आपके बिना जो चीज आप समझते हैं ना कि मेरे बिना ये हो ही नहीं सकेगा, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके बिना, आप समझ लीजिए। मैं और मैं आपसे ही कह रही हूं, और किसी ये बाहर कोई है तो भी मैं नहीं कहूंगी, इसीलिए हमने रूम बंद कर दिया है, एसी लगा दिया, इसीलिए ये मात्र अधिकार ही ये सुन सकता है, और ये व्यासपीठ से ही मैं कह सकती हूं ये हा? बराबर दिमाग में ये लगा देना, प्रिंट इट इन योर माइंड, ये नहीं समझेंगे तो चलेगा, हम बार बार आके ये बता सकेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे बिना ये नहीं हो सकेगा, ये बात आप निश्चित रूपेण परमात्मा को जानने के लिए चले हैं घर से तो निकाल देना, नहीं तो नहीं, नहीं तो कीजिए, कौन ना बोल रहा है तो बने हो सके उतनी आपकी जितनी जो व्यवहारिक जितना आपका जो कर्तव्य है, आपका निश्चित जो कर्तव्य है वो करके ऐसे लग के छूट जाइए। पर आप नहीं भी करेंगे, आप कर्तव्य भी नहीं करेंगे ना। देखिए ये वेदांत, ये शास्त्र इतनी हद तक जाता है, इतना भी एक्सक्यूज नहीं देता है, आप अपना कर्तव्य कर्म भी नहीं करेंगे ना, तो ही इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर। और ये प्राचीन भी नहीं अर्वाचीन समय में अभी इसी जमाने में हो गया है। हाँ, नरसिंह मेहता जी की बात आपको और हमको नहीं पता है क्या? और वो कुछ झूठ बोलेंगे? जो कृष्ण भगवान जिसको चाहते हैं वो क्या झूठ बोलेंगे? हाँ, उसकी लड़की की शादी कराने कौन आया था? हाँ, कौन से मेहता जी क्या नाम बन के आए थे? वो सेठ आए थे ना? हाँ, श्यामल शाह। हाँ, तो हमारे लिए परमात्मा कोई श्यामल शाह को नहीं भेजेगा, वो खुद नहीं आएगा, कोई सृष्टि को भेज के देगा, आपका प्रसंग बन जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ बन जाएगा आपके लिए। जो ठीक है वो परमात्मा आपको कर देगा। आप इतना ही करो, आप इच्छा निकाल दो कि ये करना है। उस पूरे के पूरे अभी मिल ही गया है ना ये परमात्मा, तो पूरे उसके ऊपर चढ़ जाओ। पूरे ही बी 100% डिपेंडेंट अपॉन हिम के अभी तेरा नाम लेता हूं, तुझे अभी जो करना है वो कर। हा? अब आपकी इच्छा भी क्यों रखते हो? क्योंकि सब हमारी इच्छा पूरी हुई है क्या? उसका मतलब क्या है? जो उसको इच्छा पूरी करनी थी वही उन्होंने की, और उसमें गलत भी नहीं किया, वही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा तब किया है। तब अच्छा नहीं लगता है, पर अब क्या लगता है कि जो हुआ वो ठीक किया? तो अरे, इतने साल का अनुभव है, 40-50-60 साल निकल गए हैं जीवन में से, और मुझे इतनी समझ में नहीं आई कि भाई सोचा तो मैंने इतना पर हुआ तो उसका ही, तो अभी उसको ही करना था ना। वॉट एवर इज बेस्ट फॉर मी। हाँ, नरसिंह मेहता ने जब कृष्ण परमात्मा, जब शिवजी प्रसन्न हो गए, भगवान शिवजी जिसकी हम बातें कर रहे हैं, वो शिवजी नरसिंह मेहता के ऊपर प्रसन्न हो गए, तो उनके वाक्य क्या थे? परमात्मा ने जब मांगने को कहा तो वो बोले, तमने जे वल्लभ होय जे दुर्लभ, आपो रे प्रभु जी दया रे आणी। आपको ओ वल्लभ, आपको आपके लिए भी जो चीज दुर्लभ है, अभी परमात्मा कैसे है समझ में आ गया ना कैसे है? वो सचराचर जगत के कारण को भी कुछ दुर्लभ हो सकता है, उसके पास सब कुछ भी है, तो भी आपको जो दुर्लभ है ये परमात्मा की कैसी कसौटी है, वक्त ही ले सकते हैं। आपको जो प्रिय है, दुर्लभ है, आपके लिए जो प्रेशियस है, वो मुझे आप दया करके दीजिए। हाँ, बिना दया नहीं, याचना है, नम्रता है यहां। तो वो शंकर भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण से प्रिय मुझे कुछ नहीं है, और फिर भी उनकी रासलीला से प्रिय तो मुझे कुछ भी नहीं है। और ये रासलीला का पूरा अर्थघटन जो है पूरा सांकेतिक है, सुंदर है। परमात्मा के सत्य चित आनंद के जो लक्षण है वो पूरे एक साथ सब सच्चित आनंद होता है, तब ये रासलीला होती है। उसका हार्द रासलीला का इतना ही है कि हर एक गोपी के साथ कृष्ण से, यानी क्या, हर हम सब कुछ कितने सारे बैठे हैं उसके अंदर अहम प्रत्यय से, प्रत्येगात्मा कौन है? प्रत्येगात्मा एकमात्र है, ये संकेत देने के लिए ये रासलीला है। यानी हे नरसिंह मेहता, आपके जो स्वरूप, जो अहम स्वरूप जो है, जो बाह्य सचराचर प्रत्येगात्मा से, सूत्रात्मा से, सबके भीतर अहम अहम अहम है, और सचराचर परमात्मा भी वही है, वो परमात्मा के दर्शन, वो परमात्मा का सत्य चित आनंद जो लक्षण है, हकीकत में जो आत्म साक्षात्कार जो है वही दान शिव परमात्मा नरसिंह मेहता जी को कर देते हैं। बहुत बड़ी व्याख्या है, व्याख्यान है, उनकी बातें करने के लिए भी बहुत समय का अभाव है, इसलिए वो भाव को अभी वहीं रहने देते हैं। तो कहना का क्या तात्पर्य है कि ऐसे ऐसे प्रसंगों को याद कीजिए, और इतना मैंने क्या याद रखने को बोला था, वो याद रखना क्या, आप खुद ही बोलिए। हाँ, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, ये अहंकार आप अभी इसी क्षण निकाल दीजिए, मुझे दे के जाइए, हम ये कलेक्ट कर लेते हैं और हाँ, दे के जाइए, कोई चिंता नहीं है। हाँ, ये दे के जाइए तो क्या होगा, आप फ्री हो जाएंगे, उसके लिए फ्री होना है। हाँ, बी फ्री फॉर हिम, तो ही परमात्मा थोड़ा खाली अपने लिए भी होगा। हाँ, इतने अपने आप को बिजी मत रखिए कि उसको हम याद भी नहीं कर सके। हाँ, तो यहाँ कहा है, परमात्मा आप मेरे खूब प्रिय हो, इसलिए मैं अभी बार बार अलग अलग प्रकार से आपको नमस्कार कर रहा हूं। तो यहाँ कहते हैं, हे निर्जन वन को ही प्रिय मानने वाले, परमात्मा आपके लिए प्रिय क्या है? तो बोले, निर्जन वन जो है वो प्रिय है, अरण्य, बृहदारण्य है ना, अरण्य में जाके उपनिषद पढ़ना है। अरण्य याने अरण्यम शरण्यम, अरण्य रण्य याने के रण, युद्ध जहां होता है जहां युद्ध नहीं होता, युद्ध कौन सा होता है? भाई मन की जो तामस वृत्तियां है उसका युद्ध मन की सत्व वृत्ति से होता रहता है। ये करूं या नहीं करूं, ये लोकलाज है, ये शर्म है, मेरी आदत है, मेरा व्यसन है, मेरा स्वभाव है, मेरे मित्र ने कहा, और मैं जो गुरु को मानती हूं वो गुरु भी यहां खींचते हैं, और वो मित्र का कहता है कि यहां जा, अब मैं क्या करूं। तो ये जो रण जो है वो अरण्य में नहीं होता। अरण्य यानी कि निर्जन जगह, निर्जन जगह यानी कि जहां जो जन दो जन होते हैं तो क्या होता है, वहां प्रपंच होता है, कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला, और बातें कैसी होती है, अन्य की बातें होती है। निर्जन यानी मेरे लिए कोई दूसरा ना हो, भले मैं लाख लोगों के साथ बैठी हूं तो भी वो सब में प्रत्येगात्मा रूप से वही परमात्मा का अलग अलग दर्शन। अरे आज ये परमात्मा ने ये लाल साड़ी पहन के आए तो ये परमात्मा आज ब्लू शर्ट पहन के आया, दोनों एक ही लगने चाहिए। जब ऐसा होगा तब आपको कोई भी फिक्र नहीं होगी। हाँ, टेक हिज दर्शन, ये सब उनके ही दर्शन है, खाली वृत्ति बदलनी है। तो फिर परमात्मा कैसे है, प्रिय दवद अविष्ठाय च नमः, सबके पास रहे हुए और सबसे दूर आपको है नमस्कार है। तद्दूरे तदंतिके, सबसे सबके पास रहे हुए याने यो वेद निहितम गुहायाम, अहम वृत्ति से तो आप सबके पास रहे हैं पर दूर है। क्यों दूर है? जब तक अज्ञान का आवरण नहीं जाता अहम वृत्ति से आप जाने नहीं जाते। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणुते तनुन स्वाम, किसके लिए परमात्मा अपने आप को विवृणुते, अपने आप को करते हैं, प्रकट करते हैं, यम एव एष वृणुते, जो मात्र उनको और उनको ही चाहता है उसी के लिए परमात्मा अपने आप को उपस्थित करते हैं। इसलिए कहा कि दूर रहने वाले आपको नमस्कार, हे काम का हरण करने वाले आपको नमस्कार, सबसे छोटे और सबसे बड़े आपको नमस्कार। अणो, ये देखिए एक एक उपनिषद वाक्य, ये उपनिषद का मानव की पुनस्मरण हो रहा है, मानव की रिविजन हो रहा है ऐसा लगता है। हाँ, अणो हो अणियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निहितम गुहायाम, ये कह दिया छांदोग्य बृहदारण्यक, ये सब उपनिषदों में ये बात आती है। ऐसे आप है और कैसे है, सबसे वृद्ध है, सबसे वृद्ध यानी अनादि कारण है, आपका कोई आदि नहीं है, आप ही सबसे है युद्ध, और आप ही सबसे युवान है, युवान है यानी कि आप अमरण धर्मा है, आत्मा जो है वो कभी भी मृत प्राय नहीं होता, अमृत है, इसीलिए आप सबसे युवान है, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। यानी कोई युवान की मुझे तलाश है, युवान देखना है तो भी मैं आपको ही देखता हूँ, वृद्ध देखना है मुझे पिता की जरूर है तो भी मैं आपको ही देखता हूँ, ये सब आप ही है, ऐसा समझ के सर्वस्वरूप कल्याण स्वरूप आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रहे हुए आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। आगे कहते हैं शिव के जो मुख्य चार स्वरूप है, बहल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः, भवाय हराय मृडाय और शिवाय, ये चार स्वरूप दिए हैं। ये क्या है, फंक्शनल डिफरेंसेस है। एक बहन है स्कूल में जाती है पढ़ाती है तो वो क्या है तब मैडम शिक्षक है, वो अपने भाई के घर जाते हैं तब बहन बन जाती है, अपने पिता के पास वो पुत्री, बस ऐसे ही ये जो ब्रह्म है जगत के कारण की उत्पत्ति स्थिति लय के जो कार्य करते हैं तब वो क्या कैसे जाने जाते हैं तो ईश्वर ईश्वर कह के ईश्वर नाम से वो जाने जाते हैं। तो यहाँ कहा है जगत की उत्पत्ति के लिए कार्य करना पड़ता है, कार्य यानी रजोगुण से ही कार्य होता है, सत्वगुण में कार्य नहीं होता है। तो जगत की उत्पत्ति के लिए दया करके आपने अपने आप में रजोगुण का प्रादुर्भाव किया, तो रजोगुण वाले वो जो भव है ब्रह्म स्वरूप है उसे बारंबार मैं नमस्कार कर रहा हूँ। देखिए हमारे भीतर जो रजोगुण का जो लेश आ गया है, जो स्वभाव आ गया है काम करने का, वो लेश वो संस्कार कहाँ से आए, हमारे कारण में से ही खींच के आए ना, तो रजोगुण कहाँ से आया, रजोगुण परमात्मा में से ही आया। अब रजोगुण परमात्मा में से आया तो ये रजोगुण से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो कुछ भी आप कर्म करें, जो कुछ भी आप दौड़ धूप करें, वो ध्येय गंतव्य क्या होना चाहिए, गंतव्य तो वही परमात्मा। ऐसी ही एक्टिविटी करो, ऐसी ही जगह पे जाओ। ऐसे तो क्या पूरा दिन हम मंदिर में दौड़ते रहे तो खाएंगे पिएंगे क्या? ऑफिस में क्या जाएंगे? ऑफिस में भी दौड़ो, दौड़ने की ना नहीं है, पर ये ऑफिस में जाके जो भी मैं वित्त, जो भी मैं धन, जो भी मैं सुखाकारी कमाऊंगा, वो सुख से, चैन से खा पी के, आराम करके, जो कुछ समय मेरा बाद में बचेगा उसको मैं परमात्मा के प्रीत्यर्थ, परमात्मा को जानने के लिए पुरुषार्थ में लगाऊंगा। ये सब कुछ करके एक 10 मिनट भी दिए कभी? और ये रजोगुण किसने दिया है? रजोगुण चाहिए वो परमात्मा की शक्ति, चाहिए उसकी स्फूर्ति। उसकी शक्ति और स्फूर्ति के बिना, उसके रजोगुण के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब सुखाकारी का अनुभव किया, सब कुछ किया, पर जो समय बच गया इन योर फ्री टाइम, हैव यू रिमेम्बर्ड हिम, आपके स्रोत को? और अगर आपके स्रोत को आपने नहीं जाना तो कहते हैं व्यर्थ नर अवतरी मातृ यौवन हरी रत्न चिंतामणि जन्म खोयो। हाँ, व्यर्थ नर रूप आपने अवतार लिया है ऐसा मान लेना। तो हे परमात्मा, आपके रजोगुण का उपयोग मैं आप ही के लिए करूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए। जगत के संहार करने वाले आप, आपको संहार के लिए तमस गुण चाहिए, तो हमने अपने तमस गुण का उपयोग कहाँ का किया? भाई, किसी ने मेरा बुरा सोचा तो उसका बुरा सोचने के लिए तमस गुण हमने उपयोग किया। किसी ने मेरा बुरा किया, बुरा करने के लिए ये तमस का दुरुपयोग। देखिए, परमात्मा में से जो चीज निकलती है ना, वो सबका सदुपयोग है, सबका उपयोग है, तमस का भी उपयोग है। तमस का उपयोग आपको अपने अज्ञान को मानने के लिए ही मात्र करना है और किसी के लिए नहीं। तमस यानी कायिक, वाचिक और मानसिक किसी की भी आप हत्या करते हैं। हत्या यानी किसी का बुरा सोचना भी हत्या है। तो भी क्या हो गया? ये तमस का ग्रॉसली मिसयूज हुआ है। प्रकर्षण अत्यंत ही उसका दुरुपयोग हुआ है और ये अलाउड नहीं है। तमस का उपयोग कहाँ करना है? मारने की जो वृत्ति आपको भीतर दी है ना, उसका उपयोग सिर्फ आपके अज्ञान को मारने के लिए किया है। आपकी जो तृष्णा है, जो खिंचाव है, जो लगाव है, वो लगाव को तोड़ने के लिए ये दिया है। इसको तोड़ के, एक बार तोड़ दिया, इसीलिए कहा है। इसी को दूसरे शब्द में भगवत गीता में क्या कहा है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये असंग शस्त्र है, छेदन करने के लिए तमस गुण चाहिए। हाँ, कोई सत्वगुणी आदमी को छेदन करने, करेला भी काटने को दोगे वो काट नहीं सकेगा, बोले कि मैं कैसे इसको काटूं, उसमें भी उसे ब्रह्म दिखने लगेगा, बहुत बुरी हालत होगी। इसीलिए भगवान ने तमस दिया है कि काटना तो पड़ेगा एक बार, तो क्या? तो बोले ये असंग रूपी शस्त्र से संसार वृक्ष को आप काट लीजिए। ऐसे आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ। मनुष्य के सुख के लिए अधिक सत्व गुण का आश्रय करके देखिए, तमस और रजस तो सब प्राणियों में और हम में एक ही है। आदमी जिसका प्राणी जो शेर है, वो दूसरे को जिस तरह मार सकता है, आदमी भी मारता है, देखते हैं ना हम। तो तमस और रजस में तो कोई फर्क नहीं किया, पर हे परमात्मा, ये मनुष्य शरीर की जब बात आई तब आप अति कृपालु होके सत्वगुण से भी मेरे अंदर भर गए। सत्वगुण प्राणियों में और पक्षियों में इतना नहीं है भरा हुआ जितना मुझ में है, तो ये हमारे ऊपर ऊपर की ज्यादा से ज्यादा कृपा की है। और ये ज्यादा कृपा जो है उसको मैं समझ पाऊं, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। ऐसे आपके सत्वगुण को मैं नमस्कार कर रहा हूं। और ये तीन गुण से आप अतीत है, तीन गुण के साक्षी आप है, वो साक्षी को भी मैं नमस्कार कर रहा हूं। कृश परिणति चेतः क्लेशवच्यम क्वचेदम। कहते हैं हे वरदान देने वाले ईश्वर, मेरे अल्प विषय वाले और क्लेश को वश हुए चित्त जो है वो कहां, और गुणों की जो संख्या है, गुणों की जो सीमा है, क्वचत अव गुण सीमो लंघिनी शश्व दद्दी ही, गुणों की सीमा को अतिशय पार कर जाने वाले आप की नित्य समृद्धि कहां। अब क्या कहते हैं कि हे परमात्मा, पहले तो एक बात समझ में आ जाए कि अगर उत्पत्ति स्थिति और लय ही ये परमात्मा में से हुआ है, तो वॉट एवर आई एम एंडोर्ड विथ, मेरे पास जो भी कुछ है वो किसका है? वो परमात्मा का है। तो अहंकार किस बात का? तो बात वहीं खत्म हो जाती है। इतना समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे जब मेरी मनमानी मेरी मर्जी से सामने वाला नहीं चलता है तो भी धीरे धीरे समझ में आता है कि कोई एक तत्व है जिसका चलता है, वो कौन है। वो जानने के लिए भी हम उद्रुत होंगे तो परमात्मा के पास चले जाएंगे। अब यहाँ कहा है कि इतने से भी पता नहीं लगा तो जब आपके पास जो भी कुछ कला है, धन है, धन याने सिर्फ पैसा नहीं, धन याने आपके पास जो कुछ भी जो भी कला आपके पास है जिससे आप धन उपार्जित करते हैं वो कला की जाती है, बोली जाती है। कोई नृत्य कला में एकदम ही निपुण है तो वो उसके लिए धन का कारण, तो कोई रूपवान है, कोई धनवान है, कोई कलावान है, कोई नृत्यकार है, कोई गान करता है। ये सब जो भी कुछ हमारे भीतर कोई विशिष्ट कलाएं आई है उस वो धन ही है। और यहाँ पुष्पदंत जी कहते हैं कि हे परमात्मा, ये स्तोत्र की रचना जो मैंने की और निश्चित बड़ी ही विशिष्ट रचना है, निश्चित सुंदर है, निश्चित भाषा उत्कृष्ट है। तो ये उत्कृष्ट भाषा से जो मैंने आपकी स्तुति की वो स्तुति का अहंकार मुझ में न आ जाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये शब्द जो है वो भी आपके ही है। ये रचना करने की जो विद्या जो है, रचना करने का जो गुण मेरे भीतर है, ये जो धन मेरे भीतर है वो भी आपका ही है, क्योंकि मेरे धन के आगे, मेरे ये विशिष्ट कला के आगे, आपकी समृद्धि के आगे मेरी ये विशिष्ट कला कोई भी मायना नहीं रखती। मैं ही अब समझ गया हूँ कि आप मेरे सत्ता और स्फूर्ति है, आप मेरे स्रोत है। तो ये क्या, ये अहंकार का पूरा विसर्जन यहाँ बताया है। देखिए एकदम जीरो लेवल पे अहंकार जाता है कि आपके पास मैं कहाँ, बस इतना। ये जो भाव है, ये जो बहुत ही छोटा भाव हम बोलते हैं ना, शुद्र भाव जो है, शुद्र भाव यानी कोई गिरा हुआ भाव नहीं, शुद्र भाव यानी एटलीस्ट परमात्मा के पास तो बहुत ही छोटे हो जाना आपके कल्याण के लिए। तो कहते हैं इस प्रकार भयान्वित हुए मुझे बलात्कारे, यानी मुझे ये स्तुति करने की भी हिम्मत देने वाले आप ही है। देखिए परमात्मा जब हमारा अच्छा करने की सोचता है ना, तब जबरदस्ती हमें इस साधना में घसीटते हैं परमात्मा। जब भी हमारे ऊपर कृपा उन्हें करनी है तो कोई भी प्रकार से वो कृपा करते हैं। आपको अच्छा लगे या न लगे प्रवचन में आना पड़ता है, अच्छा लगे या न लगे ये पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है। कई बार आपको होता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई अर्थ इसका नहीं है, पर इसका अर्थ है। ये परमात्मा की ही अपने प्रति जबरदस्ती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने हमारे कर्म को शुद्ध करना है। नाम उनका लिया, नाम लेके वाणी पवित्र हो गई और हमारे कर्म जो है, हमारे विचार जो है, हमारे संस्कार जो है वो अपने आप पवित्र हो जाते हैं। तो श्री पुष्पदंत जी कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती से आपने ये स्तुति में प्रवर्तमान करके अतिशय भक्ति से आपके चरणों में बहुत ही जबरदस्ती से यानी फोर्सफुली ये जो पुष्प की माला जो है, पुष्प की माला यानी स्तोत्र रूपी पुष्प की माला जो है वो आपने अपनी मर्जी से अर्पित की गई है, किया गई है। आप ट्रेन में जाते हैं, कभी सफर में जाते हैं, कार में जाते हैं, आपके साथ छोटे बच्चे भी होते हैं, कोई नदी आती है, नदी के ऊपर से जब आप जाते हैं तो आप बच्चे को क्या करते हैं, वो बच्चा अपने खेल में लगा है, अपने वीडियो गेम्स खेलता है, अपनी डॉल के साथ खेलती है बेटी। तो जब कुछ ऐसा आ जाता है, मंदिर आ जाता है, नदी आ जाती है, समुद्र आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, कई आपका खिलौना ले लो, अभी ये जो ले, ये लो पैसा, गाड़ी खड़ी रखते हैं या ट्रेन में से क्या करते हैं, जल्दी विंडो के पास जाके वो बच्चे के हाथ से क्या करते हैं, हम वो पैसा वहां अर्पण करते हैं। मंदिर में जाते हैं तो बच्चों के पास हम फूल देते हैं, चढ़ाते हैं टोकरी, छोटे बच्चों के पास देते हैं। क्यों? जबरदस्ती उसके पास ये कर्म करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो संस्कार इसमें हम डाल रहे हैं वही उसको काम आने वाले हैं और कोई संस्कार का मतलब नहीं है इसके जीवन में। तो जबरदस्ती हमारे बुजुर्ग हमारे पास ये काम कराते हैं। ऐसे ही मुझे आपने ये आपका ही पुत्र, आपका ही छोटा बच्चा समझ के, ये जो यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि मैं ये जो स्तोत्र की रचना कर सका वो आप ही की कृपा है। और आपने ही क्या किया कि मेरा ये जो कर्म जो है निंदनीय कर्म है वो निंदित न हो जाए और स्तुति के रूप में। देखिए कर्म कैसा था, ये परमात्मा ने घुमा फिरा कैसे दिया पूरा कर्म, और ये कब घुमा फिरा देते हैं वो पता नहीं लगता, वो कोई मुहूर्त नहीं देते कि इस टाइम में तुझे मैं घुमाऊंगा, नहीं। ये निंदनीय कर्म करने दिया, करने के बाद जैसे ही अप्रशंसा की बारी आई तो परमात्मा ने क्या किया, वही निंदनीय कर्म कौन सा था, तो भाई शिव के निर्माल्य का उल्लंघन किया। शिव के निर्माल्य का उल्लंघन यानी समझ लेना कि जिसने शिव को प्राप्त कर लिया है वो गुरुजनों के शब्दों का उल्लंघन, उनकी आज्ञा का उल्लंघन, उनके ज्ञान का उल्लंघन, उनके बोध का उल्लंघन, उनके बार बार कहने से भी न सुधरने का उल्लंघन, ये कर लिया। और जैसे कर लिया, उल्लंघन तो गुरु का ही किया है ना, तो वो गुरु उद्धरण कर देंगे। कैसे, तो बोले कि मेरा जो निंदनीय कर्म था उसे प्रशंसा में आपने ही घुमा फिरा लिया है, ये स्तुति की वो मैंने की ऐसा नहीं है, ये स्तुति कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे ही आपकी स्तुति हुई है और आपने ये कर्म मुझसे करवाया है। जैसे वो बालक जो है वो अभी इतना वो उसने कमाया ही नहीं है कि किसी को दान दे, फिर माता पिता क्या करते हैं कि उसके हाथ में पैसा रखते हैं, फूल रखते हैं और बोलते हैं कि अब आप मंदिर में जाइए, आप पूजा कीजिए, उसके पास जबरदस्ती करवाते हैं। बालक ने तो ये उपार्जित नहीं किया है, तो भी जैसे माता पिता उससे अच्छा कर्म करवाते हैं ऐसे आपने आपकी शक्ति मुझे इस प्रकार दी है, वो मैं भूल नहीं रहा हूं। क्योंकि कहते हैं कि असित गिरी समम से आते महासागर रूप पात्र में नीलगिरी जितनी शाही अगर मैं डाल दूं और कल्प वृक्ष की जो डाल है, कल्प वृक्ष की डाल यानी कभी भी खत्म नहीं होने वाली, तो कल्प वृक्ष की जो डाल है उसे मैं उसकी मैं कलम बना लूं, पेन बना लूं, और फिर कागज कौन सा लूं, तो बोले पृथ्वी रूपी कागज लेकर अगर मेरी बात नहीं माँ सरस्वती भी विद्या देवी भी हाँ शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम मृगमदाम, ये जो है सरस्वती देवी भी आद्य देवी है, शब्दों की देवी है, ज्ञान की देवी है, वो भी अगर पृथ्वी रूपी कागज से आपकी जो प्रशंसा है, आपकी स्तुति है, आपके रूप का वर्णन करने में सक्षम नहीं है, वो कभी भी खत्म न होने वाली स्तुति है, तो ऐसे आपकी स्तुति मैं कैसे कर सकूंगा, मैं तो करने के लायक ही नहीं हूं, फिर भी आपने ये स्तुति मुझसे करवाई तो मैं आपकी आपको इसलिए मैं नमस्कार कर रहा हूं। असुरसुर मुनिंद्र ही आप उपसंहार जो श्लोक है, अर्चिते है सेन्दु मौले है ग्रथित गुण महिमनो निर्गुणस्येश्वरस्य, समस्त गंधर्वों के समुदाय में जो श्रेष्ठ गंधर्व है वो कौन है, तो बोले पुष्पदंत नामक श्रेष्ठ गंधर्व है। असुर सुर और मुनिंद्र से पूजे हुए और जिसकी गुण महिमा का वर्णन वेद शास्त्रों में किया है, ऐसे निर्गुण परमेश्वर श्री चंद्रशेखर शंकर भगवान के इस स्तोत्र को बहुत विशिष्ट शिखरिणी छंद की जो बात की और उसके साथ दूसरे भी बड़े बड़े छंद लेके बहुत ही अच्छी तरह गंधर्व जी ने, ये कैसा है प्रवचन होता है, कुछ भी अच्छा कार्य होता है तो हम क्या कहते हैं, हम जो आभार विधि करते हैं, तो यहाँ ये जो देव है, असुर है, मुनिंद्र है, ये सब क्या है और दूसरे गंधर्व है वो भी क्या है, वो आभार कहते हैं कि बड़े छंदों में उन्होंने इसकी रचना की। यानी क्या करते हैं कि ये जो रचना है ये पुष्पदंत जी तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसका फैलाव होना चाहिए और इसका फैलाव होने के लिए हम ये प्रसंग में आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि कोई औरों को भी सुनने की ये प्रेरणा मिले, क्योंकि उसके कान उनकी वाणी भी पवित्र होगी, उतने समय तक तो वो कुछ बुरा भला नहीं सोच सकेंगे। तो बोले ऐसे रचा है, ये स्तोत्र कैसा है, स्तोत्र पाठ और उसकी फलश्रुति देते हैं अहर हरन वद्यम करके, जो पुरुष शुद्ध चित्त से परम भक्ति से महादेव जी के इस पवित्र स्तोत्र का हमेशा पाठ करते हैं, वो शिवलोक में शिव जी के जैसे ये लोक में अतिशय धन और आयुष्य और पुत्रमान और कीर्तिमान होते हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि ये नरसिंह मेहता की बात आ गई पूरी कि धन पुत्रमान कीर्तिमान आयुष्यमान ये तो परछाई है। हाँ, ये जो है वो तो कहीं से भी आपको कैसे भी वो देने की जवाबदारी किसकी हो जाएगी, वो परमात्मा की हो जाएगी। और टेस्ट तो करो और कुछ नहीं तो हाँ देखो तो सरा होता है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो आपके लिए वो बराबर वो समय नहीं होगा। हम लोग कम मैं कई बार कहती हूँ कि देखिए प्रारब्ध में जो होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म और मोक्ष जो है उसके लिए पुरुषार्थ करना है। काम और अर्थ के तो प्रारब्ध वशात है ना, आपके नसीब में भोजन होगा तो रात को मिलेगा, आप जंगल में जाके बैठ जाइए। बोले चलो आपको टेस्ट करने के लिए भी बैठ गए, आप बैठ जाते हैं और कौन देने को आएगा अभी जंगल में खाना, नहीं आया खाना। और दूसरे दिन तो आप राह ही देख रहे थे कि ये प्रवचन में आकर बैठे तो बात कहूं कि आपके ऊपर विश्वास रख के ये प्रारब्ध की बात भाई गलत है।
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
4: Dear listeners of shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 30. Thank you.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: तो क्या कहोगे? उसका जैसा नाम रखा गया स्व उत्पन्न, स्व के अलावा वह कुछ भी, स्वपन का मतलब जैसे अपनापन कहते हो तो अपनापन का मतलब क्या, वैसे ही स्वपन माने अपनापन, अपने से भिन्न कुछ भी प्रतीत न होना, सब आत्मरूप प्रतीत होना, सब अपना ही प्रतीत होना, अपने से पृथक कोई पदार्थ हो ही न, तो उसे क्या कहते हो, स्वपन है, स्वप्न। तो अब जो है स्वप्न के अंतर्गत बाहर का आपसे भिन्न कौन सा पदार्थ है, आज दिन तक किसी भी व्यक्ति ने या वैज्ञानिक ने खोज करके दिया कि वहां स्वप्न के अंतर्गत स्व से भिन्न अमुक पदार्थ था? कल्पना तो करते हैं लेकिन वो कल्पना मात्र है, लेकिन उसकी सत्ता तो स्वसत्ताक कोई पदार्थ नहीं होता है, पदार्थ होता है लेकिन वो कल्पना रूप पदार्थ होता है ना, लेकिन स्वसत्ताक पदार्थ या स्वतंत्र सत्ता वाला कोई पदार्थ नहीं होता। तो अब स्वप्न के अंतर्गत स्व से भिन्न कुछ भी नहीं। अब वो स्वप्न आप देखते हो, वहां रथ भी है, घोड़े भी हैं, मार्ग भी है, गाड़ी आदि सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ है तो वो है कौन, यही तो विचार करना होगा, किससे उत्पन्न हुआ, यस्मात् जातम, यहां कह रहे जिससे उत्पन्न हुआ तो वो किससे उत्पन्न हुआ, वही गाड़ी यदि होगी तो गाड़ी के लिए क्या चाहिए, स्क्रू चाहिए, बोल्ट चाहिए, पहिए चाहिए, है ना, रबड़ भी चाहिए और क्या नाम स्टील भी चाहिए, ये सारे साधन चाहिए तभी गाड़ी गाड़ी हो सकती है, क्योंकि ये उसके उपादान कारण। अब ये उपादान के बगैर गाड़ी वहां कैसे हो सकती, लेकिन ये एक भी उपादान वहां नहीं है, लेकिन गाड़ी है और गाड़ी की प्रतीति भी हो रही, और प्रतीति नहीं हो रही, आप उस पर सवार भी हो और सवार ही नहीं हो, उस पर सवार होकर के हरिद्वार पहुंच गए, और हरिद्वार पहुंच करके हर की पेड़ी में जाके डुबकी भी लगा रहे हो, और कह रहे पानी बड़ा ठंडा है, ये सब कह रहे, और सारे साथी वहां पर इस प्रकार से विद्यमान हो। तो अब वहां विचार करो, ये सब आप जो देख रहे हो, ये जो अनुभव कर रहे हो, कहां पर हो रहा है? हाँ, बंबई के एक फ्लैट के एक कमरे में, उस कमरे में भी एक बेड पर है, और बेड पर भी क्या कहा, हमारा शरीर पड़ा हुआ, और शरीर में भी नहीं, शरीर के उस अंगुष्ठ मात्र हृदय में, और कहा अंगुष्ठ मात्र हृदय में नहीं, उस हृदय से संबंध रखने वाली वो अत्यंत है मासूम नाड़ी, जिसे सुषुम्ना भी कहते हो, उस नाड़ी में हम जिसे कहते मन, लेकिन मन किसी ने आज दिन तक प्रत्यक्ष किया, मन को कोई पकड़ पाया, अनुमान से तो कहते हो मन, अनुमान के द्वारा ही मन को जानते, लेकिन वास्तव में मन को भी कोई जानता, कहते तो हमारा मन, हमने मन से ऐसा सोचा, लेकिन ये कार्य से ही आप उस मन का पता लगा पाते हो, कार्य को छोड़ दो तो स्वतंत्र मन का कोई पता लगा पाता, तो अनुमान से कार्य को अनुमान को लेकर के आप मन को, तो इतना सूक्ष्म मन जिसका प्रत्यक्ष करने में आप समर्थ नहीं, और उस मन में तो उसकी कितनी सूक्ष्मता, लेकिन वहां पर कितनी स्थूलता देख ली, गाड़ी है 10-12 डिब्बे की तो होगी, इतनी बड़ी गाड़ी, और फिर जिस गाड़ी जिस मार्ग पर चलेगी वो मार्ग कितना लंबा है, 13-14 से जो भी किलोमीटर हो, अब जो है इतने किलोमीटर लंबा मार्ग, उस पर भी जो है पटरियां बिछी, और ये सब स्वप्न में देख रहे। और बड़ी विलक्षण बात ये है कि ये आंख भी जो देख रही है वहां सो ये आंख नहीं देख रही, यात्रा कर रहा तो ये शरीर नहीं कर रहा, ये भी विलक्षणता वहां दिखती, लेकिन ये सब हो रहा है। तो ये कहां से हो रहा? तो कहने लगे स्व में ही हो रहा, स्वप्न के अलावा। तो गाड़ी भी स्व किसी दृष्टि, सत्ता की दृष्टि, स्व की सत्ता है, लेकिन गाड़ी की वहां कोई सत्ता, लेकिन फिर भी गाड़ी की सत्ता न होते हुए भी और गाड़ी सत्तायमान दिखलाई दे रही, ये सब हो रहा। तो अब समझ लो इसको, सारे शास्त्रों में इस बात की चर्चा की गई, चाहे आप भागवत को उठा के देख लें, वहां भागवत में भी क्या कहा, सबसे पहले इसी बात को उठाया, जन्माद्यस्यतः। ब्रह्मसूत्र में भी है जन्माद्यस्यतः, और श्रुति में भी यही संकेत किया, येन जातान भूतान, उसी से, और उसी में स्थिति, और यहां भी वही बात कह रहे, अस्मात् जातम, जिससे उत्पन्न हुए। तो ये उत्पत्ति भी कैसी समझने की लायक है। भगवान शंकर के भी मंगलाचरण जहां नैया को किया तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया, आगे भले स्वीकार न कर पाए हों, आगे भले ही फिसल गए हों, लेकिन मार्ग पर चले। ऐसा नहीं है कि मार्ग ही नहीं वो बने, मार्ग ही बने, मार्ग पर चले, लेकिन मार्ग पर से फिसल गए, वो चीज अलग। फिर उन्होंने परमाणुओं को कह दिया कि परमाणुओं से सृष्टि, और आज वैज्ञानिक क्या कहते, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इनसे सृष्टि हुई, लेकिन वो भी परिवर्तित तो हो गए। कहने लगे नहीं, इसमें एक को हटा दो, दो से हुई। फिर कहने लगे दो से भी नहीं, शक्ति में कारण कौन है? तो उन्होंने कहा इसमें भी, इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कोई स्पंदनात्मिका शक्ति है, उसके द्वारा सृष्टि हुई। और वो स्पंदनात्मिका शक्ति क्या है? तो जिसकी चर्चा कर चुके, वायु के बगैर कहीं स्पंदन संभव नहीं। इसलिए हमारे यहां वेदों के अंदर उसको नाम क्या दिया, यजूह, यत धन जू, उसका नाम क्या है, प्राणवायु यजू। उस यजू को लेकर के ही सारी सृष्टि, वहां भी दो धर्म मान लिए, यत धन जू है, और दूसरी तरफ कहते हो ये प्रकाश कब होता है, कहा पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिल गए, धन और ऋण की बात कह देते। तो अब इनका मतलब क्या, एक की सत्ता तो है, एक की सत्ता है ही नहीं, लेकिन जिसकी सत्ता है और जिसकी सत्ता नहीं है, दोनों का अभेद हो गया, तादात्म हो गया, तो वहां कार्य हो गया, ये मानते हो। और वही यहां क्या है, वही यहां कह रहे हैं स्वप्न भी कब होता है, तो जागृत अवस्था में किसी को स्वप्न नहीं होता। स्वप्न कब होता, जब वहां पर जो वस्तु की सत्ता नहीं है वो तंद्रा जब आ जाती है और तंद्रा आपसे युक्त हो जाती है तो वहीं पर स्वप्न होने लगता। ऐसे ही जिसे माया का, जिसे अविद्या का, उसकी भी अपनी निजी सत्ता नहीं, सत्ता वाला तो दूसरा है, लेकिन जैसे ही वहां अविद्या का तादात्म होता है तो वहीं क्या हो जाती है, का सृष्टि हो जाती है। तो इसका कारण कौन हो गया, तो अविद्या उपहित जो आत्मा, अविद्या से या माया से कहें या ज्ञान से कहें, प्रकृति से कहें, भ्रांति से कहें, भूल से कहें, कल्पना से कहें, इससे उपहित आत्मा से ही क्या होता है, का ये सारी सृष्टि हो जाती है। और कैसे होती है, का स्वप्न की तरह से। और वास्तविकता क्या, जागृत के जो आप हो और कहते हो मैं अमुक हूं, क्या स्वप्न देखने वाला यही मैं होता है कि कोई दूसरा होता? यदि ये मैं होता, ध्यान देना, तो फिर इसको स्वप्न होता ही नहीं, तो स्वप्न का भी साक्षात्कार कर लेता, स्वप्न काल में भी कह देता कि झूठा है, लेकिन स्वप्न काल में कह पाता। तो स्वप्नाभिमानी पुरुष भी वहां इस जागृत अभिमानी पुरुष से पृथक ही हुआ। इसी प्रकार से यहां पर भी संकेत करते हैं कि यहां पर जिसे हमने ईश्वर नाम दिया वो ईश्वर भी क्या है, स्वप्नाभिमानी पुरुष की तरह से है। वो ईश्वर भी कैसे है, स्वप्नाभिमानी पुरुष की तरह। और जिसे हम ब्रह्म नाम देते हैं, ये भी नाम हमारे दिए हुए, वो ब्रह्म कैसे है, तो कहा वो है आत्मस्वरूप। और इस प्रकार से कहने लगे, ऐसे उस अविद्या से उपहित आत्मा से ही यह सारा जगत उत्पन्न हो गया। जैसे स्वप्न हमारे में और हमारे ही से उत्पन्न हुआ, हमारे में स्थिर रहा, हमारे में लीन हो जाता, अन्य संसार के पदार्थों में तो नहीं, लेकिन जैसे यहां पर घटित होता है, ठीक इसी प्रकार से यहां संकेत किया, यस्मान जातम जगत सर्वम, उसी में ये सारा का सारा उत्पन्न हुआ, उसी में स्थिर रहा, उसी में लीन होता है। ऐसा जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है का, उसको मैं नमस्कार करता हूं। अब थोड़ा सा और समझ, ये नमः नमस्कार करना क्या है, तो नैयायिकों ने एक लक्षण किया। नमस्कार का अर्थ जो है उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा, स्वस्वत्वोपकर्ष पूर्वकम पर स्वत्वोत्कर्षण रूप व्यापारः इति नमस्कारः। नमस्कार क्या है, जहां पर हमने अपने स्वत्व को तो अपकर्षित कर लिया, न्यून कर लिया, और सामने वाले के स्वत्व को हमने बढ़ा दिया, है ना, उसे सम्मान दिया, अर्थात उसके स्वत्व को हमने उत्कृष्ट किया और अपने स्वत्व को हमने न्यून किया। तो अपने स्वत्व को न्यून करना और दूसरे के स्वत्व को उत्कृष्ट मान लेना, इसी का नाम क्या है, नमस्कार। केवल नमः कह देना नमस्कार नहीं, नमस्कार का तात्पर्य है सामने वाले के उत्कर्ष को बढ़ा देना। और यहां पर क्या, यहां पर भी जब नमः करते हो तो यहां पर किसको उत्कृष्टता देनी, किसे उत्कृष्टता देनी, कहा जो वास्तव में उत्कृष्ट है, जो ऊर्ध्व है, वो जी इस सारे संसार का मूल है, और ऐसे उस उत्कृष्ट को ही उत्कृष्टता देना, यही है नमस्कार। हो तो क्या कहा, ज्ञान आत्मने, क्या उत्कृष्टता दे रहे, कहा वो ज्ञान स्वरूप है। और हम कैसे हैं, ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान हमारा स्वरूप भी नहीं हो पा रहा, हमारा ज्ञान वो क्या है, स्वरूप नहीं हो रहा, किंतु हम ज्ञान को गुण रूप से ग्रहण कर रहे हैं। कैसे कर रहे, स्वरूप है यद्यपि लेकिन हम स्वरूप रूप से उसे जान रहे नहीं, क्योंकि हम वृत्ति में उस ज्ञान को पकड़ रहे हैं, मन से पकड़ रहे हैं, बुद्धि से पकड़ रहे हैं, और तब हम समझते हैं कि ये ज्ञान, लेकिन है वो क्या, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। अब जो प्रकाश स्वरूप होगा, जो प्रकाश बुद्धि को भी बुद्धित्व देने वाला, मन को भी मनत्व देने वाला, वो क्या होगा, वो स्वरूपस्थ। तो ऐसे यहां पर संकेत किया, ऐसे ज्ञानात्मने नमः, वो क्या है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही उसका विग्रह, ज्ञान ही उसका स्वरूप है। जैसे सूर्य क्या है, तो प्रकाश स्वरूप, ऐसे ही यहां पर कहने लगे जो ज्ञान स्वरूप है, उसी ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि यह सारी की सारी सृष्टि, सारा का सारा जगत उसी से हुआ है, उसी में स्थिर है और उसी में लय को हो जाता है। और उसको जब हम नमस्कार करेंगे, आप जिसको नमस्कार करते हो तो वो आपको क्या देता, आशीर्वाद देता, प्रेम देता। वैसे तो ये कह दिया आयुर्विद्या ऐसो बलम है, आयु भी दे देता है, यश भी देता है, बल भी देता है और विद्या भी देता। और विद्या क्या करती, यदि विद्या मिल जाएगी तो विद्या क्या करेगी, विद्या अमृत मश्नुते, विद्या के द्वारा किसकी प्राप्ति होगी, कहा अमृतत्व की प्राप्ति हो। और ऐसा ही यशवान, तभी वो यशस्वी है, तभी वो बलवाला है, नहीं तो बलवाला कहेगा, है ना। तो इस प्रकार, और फिर आयु, आयु क्या, तभी उसकी सत्ता सिद्ध होगी, आयु से सत्ता विद्यमान था, तो उसे अपनी सत्ता की प्राप्ति हो जाती है, बल की प्राप्ति हो जाती है, और जो है यश की भी प्राप्ति हो जाती, वही यशस्वी होता है, है? और अमृतत्व को वह प्राप्त करता, फिर उसकी मृत्यु नहीं। तो ऐसे ज्ञानात्मने, ऐसा ज्ञान स्वरूप है, उसको जब नमस्कार करेंगे, उसे श्रेष्ठता देंगे, तो हमारे अंदर से अविद्या की वह निवृत्ति कर देगा। और अविद्या की निवृत्ति जब कर देगा तो हमारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने से क्या होगा, हम विद्यावान हो गए, स्वरूप का बोध होगा, और बोध होगा तो उस बोध में फिर वहां पर कहा अमृतत्व रूप है, वहां जन्म और मरण नहीं, तो जन्म मरण से भी हम रहित हो जाएंगे। ये सारा का सारा रूप वर्णन यहां करने के कारण, ऐसा उद्देश्य होने के कारण कहा यस्मान जातम जगत सर्वम यस्मिन्नेव प्रलीयते, जिससे यह सारा जगत उत्पन्न होता है और जिसमें ही वह सारा जगत प्रलीन हो जाता है, ऐसा जो है एदम धारयते, और वो जो है इसको धारण करने वाला भी वही है, ऐसे जो है उस ज्ञानात्मने तस्मै ज्ञानात्मने नमः, ऐसे उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। ये सब संकेत है। तो अब यहां पर थोड़ा सा और विचार करो, लोक में हम इसको कैसे समझें। एक बालक, जब बालक होता है तब उसमें अधिक चिंताएं होती नहीं है ना, चिंता मुक्त होता है और माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है अध्ययन आदि कर, और जब वो योग्य होकर के एक नागरिक बन जाता है तो फिर क्या होता, तब नागरिक बनने पर फिर उसको ये आता कि मैं भी कुछ हूं। अभी तक तो माता पिता के आश्रित था, ध्यान रखना, तब तक उसका अहम अभी इतना प्रस्फुटित नहीं हुआ था, लेकिन जब उसका अहम प्रस्फुटित हुआ कि मैं भी हूं और मैं समर्थ हूं, ये जैसे ही आता तो क्या कहता, अब मैं समर्थ हूं तो अब मेरे को चाहिए, वहीं से कामना आगे चलने लगती। तो क्या है, तो एक से मैं दो हो जाऊं, दो हो जाता, और दो हो गया तो दो चार साल दो ही रहे तो फिर क्या कहता, डॉक्टरों की शरण लेता कि अब जो है हम दो और हमारे दो, अधिक नहीं, चलो सौ वाली बात नहीं, तो इतना तो होता ही। और ये होता, और ये जब होता जाता है तो क्या संसार बढ़ता। अब ये सब उसने किस लिए किया था, उसने क्या दुख के लिए किया था, उसने किया था कि जीवन सुख से व्यतीत हो, सुख के लिए किया था, लेकिन हो क्या गया, जो उसने किया उसमें वहीं पर क्या आ गई, कामना आई, और वो कामना अविद्या को लेकर के आई, वो अहम भी उसका अविद्यात्मक हुआ, जिस कारण से वह जो है उस चीज को समझ नहीं पाया, और नहीं समझ पाया तो दुखद हो गई। यदि उसको भी वह लीला रूप समझ ले कि जैसे परमात्मा में अविद्याकृत ही इसको समझ ले तो कहने लगे वहां पर भी उसे सुख होगा। ये जगत प्रथु का जनक का उदाहरण देते हो तो उन्होंने इस चीज को समझा था, और कब समझा था, इसके समझने के लिए क्या चाहिए, तो पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए, और अधिकारीपना चाहिए। वो अधिकारीपना कब होगा, तो इसके लिए प्रार्थना पूर्व में कर चुके, सब देवताओं से प्रार्थना की, तो मन बुद्धि इंद्रियादियों को व्यवस्थित करने के लिए। अब ये जो है कैसे होगी, तो देखो अधिकारता जनक में कब आई, जनक की कथा सभी जानते हैं। जनक जो है उन्होंने निष्काम कर्म भी किया, प्रजा के हितार्थ कर्म किया, और उससे उन्हें क्या प्राप्त हुई, उसकी कामना तो की नहीं थी उन्होंने क्या पुत्री की कामना की थी, पुत्री की कामना नहीं थी, उद्देश्य उनका क्या था, जनहितार्थ, जन कल्याणार्थ। उन्होंने जो हल चलाया, जो हल चलाना रूप यज्ञ किया, वो किस लिए किया था, क्या सीता जी की प्राप्ति के लिए, कहा नहीं, उसकी कामना नहीं थी, कामना क्या थी, जनहितार्थ। और उसके द्वारा उन्हें अब जो है पुत्री की कामना नहीं थी लेकिन पुत्री की प्राप्ति हो गई, और उनको क्या कहा गया, भक्ति का प्रतीक कहा गया। तो अब जब हम निष्कामता हमारे जीवन में आती है, हम जनहितार्थ कार्य करते हैं, परमात्मितार्थ कार्य करते हैं, या यज्ञार्थ कार्य करते हैं, जिसे यज्ञार्थात कर्मणु अन्यत्र लोको एवं कर्म वंदना करके संकेत किया, तो यज्ञ रूप कर्म क्या है, तो जहां परमात्मा ने जो चक्र चलाया है उस चक्र का हम अनुवर्तन करें, तो उसी को क्या कहेंगे, और इसमें भी आगे कहेंगे आचार्याय प्रिधनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्योच्छेसी, इसका निषेध नहीं किया गया, और मातृदेवो हो पितृदेवो हो आचार्य देव, वहीं पर ये सारे कर्म की चर्चा की, और ये अलुक्षा कर्म ते कुर्वन, जो अलुक्ष कर्म है उन कर्मों को करो, ये संकेत वहां भी किया, इसी तरीके अंतर्गत भी आएगा। अब जो है यहां पर जब उन्होंने किया तो उन्हें भक्ति की प्राप्ति हुई, और भक्ति के माध्यम से क्या हुआ, उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ, आगे क्रिया बढ़ती गई, उनके अधिकारी बनते। लेकिन वही जनक जो अष्टावक्र गीता है उसको लेकर के प्रसंग आता कि जनक ने बहुत से ऋषियों से श्रवण किया, शास्त्रार्थ किया, और उन्होंने एक शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? कहा हम उसे अपना आचार्य स्वीकार करेंगे, उसे हम अपना गुरु स्वीकार करेंगे। कहा किसे? कहा जो मेरी शर्त पूरी कर देगा। कहा क्या शर्त है? तो क्या शर्त थी उनकी? कि घोड़े के रकाब में पैर रखने में जितना समय लगता उतने समय में मुझे जो ज्ञान करा देगा उसे मैं अपना आचार स्वीकार करूं। ये उनकी शर्त थी। सारे ऋषियों से शास्त्रार्थ होता रहा, सारे ऋषियों से प्रश्नोत्तर चलता रहा, लेकिन अभी तक आचार्य किसी को नहीं बनाया। फिर अष्टावक्र, जो भी कथा है लंबी नहीं करें, तो अब जो अष्टावक्र आए उनके सामने, तो अष्टावक्र के सामने भी उन्होंने अपनी शर्त रख दी। और जब अष्टावक्र के सामने चुनौती रख दी तो अष्टावक्र ने उस चुनौती को स्वीकार कर ली। अष्टावक्र ने कहा कि ठीक है जनक, आपकी शर्त मैं स्वीकार करता हूं, आपकी चुनौती मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक मेरी भी शर्त है, मैं आपकी शर्त को पूरा करूंगा और आप मेरी शर्त को पूरा करो। कहा ठीक है, आप बतलाओ सर। कहा ठीक, सजा लो घोड़ा। घोड़ा सजाया गया। कहा हो जाओ सवार। जनक सवार हो गए, बैठ गए घोड़े। कहा बतलाओ, कराओ ज्ञान। अष्टावक्र ने कहा

0: और सवार होकर के फिर कहने लगे, कहा कि अब कराओ। कहा नीचे उतर क्या, नीचे उतर आया। कहा ये बतलाइए कौन कह रहा है कि अब कराओ, क्योंकि मन तो मेरा है, तन तू मेरे को दे चुका, मन मेरे को दे चुका, कहने वाला फिर कौन बचा। और जैसे ही ये शब्द अष्टावक्र ने कहे, राजा जनक की समझ में आया, अधिकारी हो गए थे, पात्रता आ गई थी। और जैसे ही उनकी समझ में आया कि मन से जो कहा जाएगा तो मन तो हमारा है ही नहीं, तो अष्टावक्र की ये बात सुनकर के जनक वहीं समाधिष्ट हो गए, स्तब्ध हो गए। स्तब्ध जब हो गए, मारा डक्का, लेकिन नहीं, फिर मारा डक्का तो थोड़ी चेतना आई, राज कुछ बोले ही नहीं। तो उन्होंने कहा ले, मन मेरा लेकिन मैं तेरे को दे रहा हूं, तन मेरा मैं तेरे को दे रहा हूं, धन मेरा मैं तेरे को दे रहा हूं, अब बतला मेरे मन से बतला। तो कहने लगा कि महाराज अब कुछ कहते ही नहीं बनता है ना। और पूछा भी, जैसे भगवान ने पूछा अर्जुन से, पहले तो अर्जुन ने कह दिया नयोतिष्यामी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अंत में भगवान ने सारी चर्चा करने के बाद कहा कि अर्जुन तेरी प्रतिज्ञा थी युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा कर्ण खा के जीवन व्यतीत कर लूंगा, अब क्या, अब तू क्या चाहता। करिष्ये वचनम तब, कहा मतलब पहले तो निर्णय ये था, अब कहा तब क्या था वो बात अलग है, लेकिन अब तो तुम ही जब सब कुछ हो तो हम करने वाले हैं कौन, है ना। तो करिष्ये वचनम तब, है ना। और जनक ने क्या कहा, त्यागा दाने व्याय अस्मात अहम आसे यथा सुखम, अब कुछ ग्रहण करने को शेष नहीं है और कुछ त्यागने को भी शेष नहीं, तो हमने त्याग का भी त्याग कर दिया, इसलिए अब क्या है, अहम आसे, अब मैं बैठा हूं कहां, यथा सुखम, जो जैसा है उसी में बैठा हूं, जैसा सुख स्वरूप आनंद स्वरूप उसमें बैठ। ये जनक के शब्द, तो ये स्थिति आती है। तो कहने का मतलब, जब इस प्रकार से साधक इन मंगलाचरणों को जो है समझता है और ऋषियों के अभिप्राय को समझता है और उसके अनुसार अनुवर्तन करता है, प्रयास करता है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब उसके जीवन में मुमुक्षता आती है, जिज्ञासा, सच्ची जिज्ञासा आती है। अब जिज्ञासा कहना केवल प्रश्न उत्तर करने का नाम जिज्ञासा नहीं। देखो बड़ी छोटी सी बात, आप कभी पुराण उपन्यास आदि पढ़ते हो, है ना, तो सरसरी निगाह से पढ़ते जाते, कभी दो पन्ना भी पलट जाए तो कोई बात नहीं, चल जाता है, लेकिन कहीं रिटर्न का फॉर्म भरना हो तो क्या करते हो, एक एक शब्द को बड़ी गहरी दृष्टि से देखते हो। शब्द यदि समझ में नहीं आता है तो एक हंट चार्टर के पास जाते हो, वकील के पास जाते हो, उसके अर्थ को समझते हो और तब ठीक से भर करके तब आप जाते हो। तो ये क्या है, इतना ही अंतर। तो जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, और जब जिज्ञासा इतनी प्रबल होती है, जैसे रिटर्न के फार्म में हम दत्तचित्त हो जाते, ऐसे ही जब दत्तचित्तता हमारे जीवन में आ जाती, मैं क्या हूं, संसार क्या है, और इस प्रकार से आत्मानात्मा का जो विवेचन करने में हम चलते हैं, तब जो हमारे अंदर जिज्ञासा आती है वही मुमुक्षता होती, और वो मुमुक्षता आती ही तब है जब अधिकारीपना आ जाए। इसलिए आचार्य शंकर ने कहा दुर्लभम त्रयमेव हि तत्, है ना, ये तीन जो है बड़े दुर्लभ, देवानुग्रह हेतुकम, देव के अनुग्रह से होने वाले, इसलिए तो देवताओं के लिए शांति पाठ किया गया, देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संकेत किया। तो ये सारी चर्चा है, अब आगे चर्चा कल करेंगे।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shivam.org.
2: ஓம் சிவாய நம. shivam.org இன் அன்பார்ந்த நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவகீர்த்தனைகள். தலைப்பு பித்தம் தெளிய. பாடிப்பவர்கள் ஆலத்தூர் சகோதரர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நம.
3: தெளிய மருந்துகிறி நமங்குள்ளே தெளிய.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

क्षत्रस्य नाभिरसि क्षत्रस्य योनिरसि मा त्वा आहिज्ञेसीन्मामाहिज्ञेसीः निशासादधृतव्रातो वरुणः।

0: शिवाय नमः सांब शिवाय नमः हर ओम तत्सत्
1: ओम नमः शिवाय.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: हमारे यहां तो मछली ने मनुष्य को पैदा किया है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कल यदि विज्ञान आपको मछली से मनुष्य को पैदा करके दिखा देवे तो इसको आश्चर्य नहीं मानना, ये तो मायायम सर्वसंभव ना। मकरंद ध्वज पैदा हो गए मछली से, पैदा हो गए कि नहीं बोलो, हनुमान का बेटा। अब ये संभव है कि ब्रह्मचारी से बच्चे पैदा हो सकते हैं? हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, फिर भी बच्चा पैदा हो गया, मकरंद ध्वज पैदा हो गया, ये कोई असंभव नहीं। श्रृंगी ऋषि पैदा हो गए, असंभव नहीं। सुखदेव पैदा हो गए पक्षी के अंडे से, ये असंभव नहीं। क्यों? क्योंकि मायायाम सर्वसंभव, अघटित घटना पटी ऐसी माया। वेदांत ने एक माया तत्व को स्वीकार किया है और ये माया ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जहां प्रयोग करना चाहो कर लो, जो करना चाहो कर लो। ये ऐसा मल्टीपर्पज थियरी है माया थियरी। ईश्वर को सिद्ध करना चाहो तो इसी से सिद्ध करो, ईश्वर की सत्ता को निषेध करना हो तो इसी से निषेध कर दो, जीव को सिद्ध करना हो तो इसी से करो, जीव के स्वरूप ही निषेध करना हो तो इसी से करो। एक ही चीज माया ब्रह्म को नहीं बना सकती है, ब्रह्म के बाहर और सबको बना सकती है ना। माया ब्रह्म को, परमात्मा को, सत्ता को, प्रकाश को, ज्ञान को, चैतन्य को, सुख को, आनंद को नहीं बना सकती है। ये जीवों को जहां भी सुख और आनंद की प्रतीति प्राप्ति होती है वह माया का बनाया हुआ नहीं है, ये तो ब्रह्म का ही आनंद आभास के रूप में यहां तक आया है। आनंद ब्रह्म माया नहीं बना सकती है, सुख माया का निर्माण नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप है। अद्वैत ये माया नहीं बना सकती है, अद्वैत ये ब्रह्म का स्वरूप है। सत्ता माया नहीं दे सकती है, क्योंकि सत्ता माया की अपनी ही सत्ता नहीं है, तो फिर दूसरों को क्या सत्ता देगी? माया के अपने खुद सत्ता नहीं है, दूसरे के सत्ता में माया आश्रित है, तो फिर वो खुद माया दूसरों को क्या सत्ता देगी? माया खुद अपने आप प्रकाशित नहीं हो सकती है, तब फिर दूसरों को क्या प्रकाश दे सकती है माया? तो प्रकाश देने का काम भी आत्मा यानी ब्रह्म का है, सत्ता देने का काम भी उसी ब्रह्म का है, आनंद प्रदान करने का काम भी उसी

होती है। इसी तरह ब्रह्म खुद चैतन्य नहीं है, माया के चैतन्य को लेकर वह चैतन्य जैसे प्रतीत होती है, जैसे आपका शरीर खुद चैतन्य नहीं है लेकिन आत्मा की चेतना को लेकर आपका यह शरीर चैतन्य जैसा प्रतीत होता है। आपको लग तो रहा है कि शरीर चैतन्य है लेकिन खुद शरीर चैतन्य नहीं है। इसको चैतन्य बनने के लिए परमात्मा से चेतना लेना पड़ा। आत्मा चेतना की आत्मा की चेतना को लेकर यह अस्तित्व में आया तो आ शरीर है बना, इसके अपने अस्तित्व नहीं है। उसके चेतना को लिया तो ये भी चैतन्य जैसे प्रतीत होने लगा। उसकी आनंद को लिया इसने तो फिर ये भी शरीर प्राप्त है, शरीर में आनंद आ रहा है। अरे कहीं खुजली हो तो खुजाओ तो आनंद आता है, आनंद नहीं आता तो क्यों खुजाता व्यक्ति? तो शरीर को खुजाने से आनंद आता है तो मूर्ति को खुजा दो तो नाचने लग जाएगा है? तो आनंद कहीं शरीर से आया है तो आत्मा की आनंद को शरीर ग्रहण कर रहा है और वो शरीर को फिर विवर्त कर रहा है। तो भ्रांति ये होती है कि शरीर से आनंद आ रहा है। तो ये माया खुद अपने आप में कुछ नहीं, फिर भी उस ब्रह्म की सत्ता को लेकर कुछ प्रतीत होना ही माया का स्वरूप है। इसी से सारे जगत की उत्पत्ति ये है विवर्तवाद। दृष्टांत दिया कैसे? तो बोले बीजस्यांत रिवांकुरो जगदिदम्। पहले के सारे दार्शनिकों का विकल्प को खंडन करते हुए कहा सर्वे विकल्पा प्रागासिन बीजे अंकुर इवात्मनि इच्छा ज्ञान क्रिया रूपा मायया ते विजिंबिता। माया के माध्यम से उस अनिच्छा इच्छा रहित चैतन्य ब्रह्म में माया के संप्रकर से इच्छा प्रकट हो जाता है और ज्ञान स्वरूप परमात्मा में माया के संपर्क से ज्ञानी प्रतीत होता है। वह ज्ञानी नहीं है, वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी नहीं है। जैसे अब हम ज्ञानी हैं तो हम साधनों से ज्ञानी हैं, करणों से ज्ञानी हैं, मन मन की वृत्तियां, इंद्रियां इंद्रियों के प्राप्त होने वाले साधन इन्फॉर्मेशन उन सबको प्राप्त करके इन साधनों से हम ज्ञानी हैं। यदि इन साधन न हो तो हमारी ज्ञानीपना हमको सिद्ध नहीं हो सकता और को सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में इन साधनों का अभाव होने पर सुषुप्ति अवस्था में जिस तरह अभी हम यहां ज्ञानी बनकर बैठे हैं इस तरह की अवस्था सुषुप्ति में हमारी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? ज्ञान के साधन नहीं रहते इसलिए हम वहां इस तरह के ज्ञानी नहीं होते, लेकिन ज्ञान स्वरूप हम रहते हैं क्योंकि सुषुप्ति को प्रकाशित करने वाले ज्ञान स्वरूप रहते हैं। तो इसीलिए तो दो प्रकार के ज्ञान वेदांत मानता है, एक स्वरूपभूत ज्ञान जो साधन निरपेक्ष है, जो कि ब्रह्म में है, जो कि समाधि में प्राप्त होता है, जो कि सुषुप्ति में प्राप्त होता है, वो साधन निरपेक्ष ज्ञान वो अपना स्वरूप है। इस समय साधन के द्वारा प्राप्त हुआ हुआ जो ज्ञान है वह ज्ञान वह साधन से प्राप्त हुआ हुआ होने के कारण ये ज्ञान अपराविद्या के अंतर्गत होने के कारण ये ज्ञान स्वरूपतः ज्ञान नित्य है लेकिन विशेष ज्ञान अनित्य है। सामान्य ज्ञान नित्य है, विशेष ज्ञान अनित्य है। यदि विशेष ज्ञान भी नित्य होता तो पिछले जन्म में भी आप थे, आपको भी बहुत से विशेष ज्ञान हुई थी, वह विशेष ज्ञान अभी भी यथावत होना चाहिए था। वह विशेष ज्ञान तो विस्मृति के कोटि में चले जाते हैं और क्योंकि जिन निमित्तों से वो विशेष ज्ञान हुआ उनके अभाव में वह ज्ञान भी बाधित हो जाता है। तो विशेष ज्ञान वह आगंतुक है, आगमा अपायी है। सामान्य ज्ञान नित्य है, वेदांत की प्रक्रिया है ये सब। इच्छा ज्ञान क्रिया रूपा मायया, ईश्वर यदि

अनंत इच्छा वाला, इच्छा शक्ति वाला, ईश्वर यदि अनंत ज्ञान वाला यानी ज्ञान शक्ति वाला, ईश्वर यदि अनंत क्रिया वाला यानी क्रिया शक्ति वाला, वह ईश्वर और वही जगत को उत्पन्न करता है ये माना गया है। तो ईश्वर में अनंत इच्छा शक्ति, अनंत ज्ञान शक्ति, अनंत क्रिया शक्ति, यह माया से प्राप्त हुआ है। शक्ति शब्द ही माया का वाचक है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तो उसमें जो संकल्प करना ये क्षमता भी माया से प्राप्त हुआ। चैतन्य में संकल्प करने की क्षमता माया से प्राप्त हुआ है। चैतन्य में कर्म करने की क्षमता माया से प्राप्त हुआ है। निष्क्रिय चैतन्य में कर्म करने की क्षमता माया से प्राप्त हुआ है। निष्क्रिय चैतन्य में इच्छा करने की क्षमता, संकल्प करने की क्षमता माया से प्राप्त हुआ है। ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप परमात्मा में सर्वज्ञता की क्षमता माया से प्राप्त हुआ है। देख लो, ये बात ध्यान देना। ज्ञान स्वरूप ईश्वर में, परमात्मा में सर्वज्ञता की क्षमता माया से प्राप्त हुआ है, क्योंकि सर्व का कारण है माया, और उस माया को उपाधि ग्रहण करने के कारण वह सर्वज्ञ हो गया। तो ज्ञान स्वरूप और सर्वज्ञ ये अलग अलग चीजें, देख लो। ज्ञान स्वरूप निरुपाधिक है ब्रह्म का, सर्वज्ञ सोपाधिक है, क्योंकि सर्व होगा तभी ना सर्वज्ञ होगा। सर्व होगा किसके कारण से? माया के कारण से। एक से अनेक होगा तो उस किसके कारण से? माया के कारण से। एक से अनेक हुआ उस माया के कारण से, तो एक से अनेक को जानना भी उसी माया के कारण से ही होगा। अन्यथा माया न हो तो वो एक के एक रहेगा, सर्वज्ञ नहीं होगा, ज्ञान स्वरूप रहेगा। माया न हो तो एक का एक रहेगा, अनेक नहीं होगा। अनेक होने के लिए माया चाहिए, सर्वज्ञ होने के लिए, अनेकज्ञ होने के लिए भी माया चाहिए। विजृंभिता, विजृंभण का अर्थ होता है प्रकट होना, निकलना। जैसे गर्मी के समय में मिट्टी धूल धूल, कहीं मिट्टी मिट्टी है, धुलई धूल है किसी मैदान में, और वहां खोजने जाओ तो कहीं कोई घास का नाम निशान नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक जब बारिश होती है तो उसी धूल में से अनेक वनस्पति, अनेक घास पौधे, घास निकल आते, प्रगट आते, वही विजृंभित। ये जगत बीज माया सवलित, ईश्वर में पहले संस्कार के रूप में माया के माध्यम से है, और वही इच्छा के द्वारा प्रकट हो जाता है। दृष्टांत दिया, बीजस्यांत इवांकुरो जगत इदम्, ईश्वर से माया उपहित चैतन्य, ईश्वर से ये सारा का सारा जगत वृक्ष के बीज से वृक्ष की तरह अपने आप प्रकट हो गया। अब कोई प्रश्न ये न करे कि वृक्ष बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और उसी वृक्ष से फिर पुनर्बीज उत्पन्न होता है, फिर उस बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, फिर उसी वृक्ष से पुनर्बीज उत्पन्न होता है, तब ये बीज और वृक्ष, वृक्ष और बीज, ये किसका कौन कारण है और किसका कौन कार्य है यह निश्चय नहीं हो पाएगा। तो क्या इसी तरह ये अनादि अनंत तक इसी तरह कार्य कारण का निश्चय हुए बिना ही ये बीज वृक्ष, वृक्ष बीज, वृक्ष बीज, इसी तरह ईश्वर और जगत, जगत और ईश्वर, तो इसका मतलब तो जगत को भी बनने के लिए ईश्वर चाहिए, तो ईश्वर को बनने के लिए जगत चाहिए। बीज वृक्ष का दृष्टांत तो यही कह रहा है, ईश्वर को बनने के लिए जगत की अपेक्षा, जगत को बनने के लिए ईश्वर की अपेक्षा, बीज को बनने के लिए वृक्ष की अपेक्षा, वृक्ष को बनने के लिए बीज की अपेक्षा। तुम्हारा दृष्टांत तो ईश्वर और जगत के भी कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा। जैसे बीज और वृक्ष में कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता,
इसी तरह ईश्वर और जगत के बीच में भी कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा। तो ये दृष्टांत कैसे कह रहे हो? ये एक अंश में दृष्टांत दिया है। ये दृष्टांत इस अंश में कि अव्यक्त ये सो नाम रूपात्मक जगत पहले इस रूप में नहीं था, ईश्वर से इस रूप में प्रकट हो गया, इतने अंश के लिए बीज वृक्ष का दृष्टांत है, उसको आगे बढ़ाना उचित नहीं है। बोले कार्य कारण भाव का कैसे सिद्धि करोगे? तो कहते हैं माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। ये तो सामान्य व्यवहार में ही कार्य कारण का भाव सिद्ध होता है। कई बार इन साधनों के कार्य कारण के बिना भी कार्य उत्पत्ति देखने में आता है, जैसे स्वप्न वेदांत में प्रसिद्ध है। वेदांत में स्वप्न प्रसिद्ध है, स्वप्न में कहां कार्य कारण भाव है, कहां उपादान कारण है, कहां सहकारी कारण है। ईश्वर को कर्ता मानने के लिए, जैसे हमको कोई कर्ता मानना हो तो किसी वस्तु को बनाने के लिए तो हम अकेले नहीं कर्ता बन सकते हैं, साधन होगा तभी हम कर्ता बन पाएंगे। कोई कहे कि तुम रोटी बनाओ तो हम आटा न हो, गैस तवा न हो तो हम रोटी का निर्माता नहीं बन पाएंगे, नहीं बन सकते हैं। ईश्वर इन साधनों के बिना कैसे निर्माण सृष्टिकर्ता बन गया? कुमाल को घड़ा बनाना हो तो मिट्टी डंडा चक्र आदि साधनों की अपेक्षा रखता है, तभी वह घड़े का कर्ता बन सकता है। इसी तरह अप्रसिद्ध ईश्वर साधन के बिना कैसे कर्ता बनेगा, ये बात कहते हैं। तो स्वप्न में तुम रोटी बना सकते हो बिना आटे के, सकते हो कि नहीं? स्वप्न में बिना आम का रस बना सकते हो कि नहीं? स्वप्न में आम लेकर जाते हो? स्वप्न में जाते समय में एक टोकरी आम नहीं ले जाते, और रस खाने की इच्छा हो गई तो बना लेते हो बिना आम का, तो वहां रस का निर्माता कर्ता बन गए कि नहीं? रोटी का निर्माता कर्ता बन गए कि नहीं? इसी तरह अब कोई प्रश्न ये कर सकता है, उसी को कहा मायावीव विजृंभयत्यपि महा। मायावी इवा दृष्टांत दिया, पहला दृष्टांत, जैसे कोई जादूगर, मायावी यानी जादूगर, कोई वस्तु को दिखाता है, बनाकर आपके सामने दिखा देता है और आपको स्पष्ट लगता है कि यह वस्तु बिल्कुल सही है, तो वह कोई पूरे साधन उपादान कारण सहकारी कारण आदि लेकर जादूगर कार्य को उत्पन्न नहीं करता। जैसे जादूगर सड़क के किनारे खड़ा होता है और ताली बजाता है, जोर जोर से आवाज करता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी पकड़ लेता है जमीन में से, हाथ में दिखाता है, क्या देख रहे हो? कहते मिट्टी है, सबको मिट्टी दिखाई पड़ती है। फिर उसके बाद मुट्ठी बंद करता है, फिर ताली पीटता है, ऐसे छोड़ देता है, तो फिर नोट हजार हजार के नोट निकल आते। अब क्या हजार के नोट बनाना इतना आसान है? सामान्यतया हजार का नोट बनाना हो तो गवर्नर का साइन चाहिए, चाहिए कि नहीं? और उस जादूगर के नोट को आपके हाथ में आप देखेंगे तो गवर्नर का साइन भी हुआ है वहां, हाँ सब दिखता है, अशोक का निशान चाहिए, वहां छाप चाहिए, उसी प्रकार के कागज चाहिए, प्रिंटिंग मशीन चाहिए, वहां कहां है प्रिंटिंग मशीन, कहां है सिक्योरिटी, कुछ नहीं। फटाफट खड़ साहब के देखते थे सड़क में हजार हजार के नोट बना के दिखा देता है, लेकिन कोई उसको अरेस्ट करने नहीं जाते है, जाते और पाकिस्तान जब इंडिया में डुप्लीकेट नोट लेके आते हैं तो उसको फिर पकड़ लेते हैं। जादूगर वो डुप्लीकेट नोट ला दिखा देता है तो उसको नहीं पकड़ते है? वो सब कैसे संभव हुआ? तो बोले जादू का प्रभाव है। जैसे वहां जादू के प्रभाव है, उससे साधन सामग्री उपकरण आदि के बिना भी कार्य उत्पत्ति की प्रतीति होती है। इसी प्रकार से ईश्वर
अकेले उपादान कारण ग्रहण किए बिना, सहकारी कारणों को ग्रहण किए बिना अकेले ईश्वर जगत उत्पन्न करके दिखा देता है। कैसे? तो मायावी इवा, मायावी की तरह, जादूगर की तरह। अब कोई प्रश्न ये करे, जादूगर अपने जादू के प्रभाव से कोई भी वस्तु यदि निर्माण करता है, उत्पन्न करता है, तो वह प्रतीति का विषय बनता है, नाम रूप प्रतीति का विषय बनता है, परंतु व्यवहार का विषय नहीं बनता। वही जादूगर हजार हजार के नोट दिखाने के बाद फिर आपके सामने एक रुपया के लिए हाथ फैलाता है, है? फैलाता ही नहीं, क्यों फैला रहा है? उसको भी पता है कि मैं जो नोट दिखा रहा हूं एक जादू और भ्रांति के भ्रम के प्रभाव से दिखा रहा हूं, वो दिखने वाले नोट व्यावहारिक नहीं है। प्रतीति का विषय है, व्यवहार का विषय नहीं हो सकता। इसी तरह यदि ईश्वर से मायावी की तरह ये जगत उत्पन्न हुआ हुआ है, तो ये भी केवल प्रतीति का विषय होना चाहिए था, समग्र व्यवहार का विषय नहीं होना चाहिए था, जबकि लौकिक व्यवहार का विषय बन रहा है, शास्त्रीय व्यवहार का विषय बन रहा है, दोनों व्यवहार का विषय बन रहा है। लौकिक व्यवहार का विषय भी बन रहा है यह जगत, शास्त्रीय व्यवहार का विषय भी बन रहा है। तो फिर जादूगर की तरह ये कैसे हम मानेंगे? इसका उत्तर तुरंत, व्यावहारिक जगत माया से, केवल माया से बना हो तो ये जगत, जादूगर की तरह बना हो तो ये जगत व्यावहारिक सत्ता वाला नहीं होना चाहिए। जैसे केवल स्वप्न से बना हुआ स्वाप्निक जगत प्रतीति का विषय बनता है, व्यवहार का विषय नहीं बनता। समझ रहे ना? हमारे एक महात्मा थे, वो बार बार कहते थे, स्वप्न की लड़की और जागृत के लड़के का हस्तमिलाप हो सकता है कि नहीं? सब कहते थे महात्मा, स्वप्न की लड़की का और जागृत के लड़के के साथ हस्तमिलाप होगा कि नहीं? कोई भी वस्तु की जो एकता है, मिलन है, समानता है, उसके लिए समान सत्ता होनी चाहिए, असमान सत्ता में एकता नहीं है। स्वप्न का लड़का और स्वप्न की लड़की का हस्तमिलाप हो सकता है कि नहीं? स्वप्न का लड़का स्वप्न की लड़की के साथ हस्तमिलाप हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की सत्ता एक है। लड़के की सत्ता भी प्रातिभाषिक सत्ता है, स्वाप्निक सत्ता है, लड़की की सत्ता भी प्रातिभाषिक सत्ता है, स्वाप्निक सत्ता है, तो दोनों का हस्तमिलाप हो जाएगा। और जागृत का लड़की, जागृत की लड़की और जागृत का लड़का का हस्तमिलाप होता है कि नहीं? होता है। आप लोगों का हुआ कि नहीं? है? आप लोगों का हुआ कि नहीं? नहीं हुआ कहने वाला है कोई? या हमारा नहीं हुआ ये? और क्या, हम तो है, ये हमारा नहीं हुआ है। जागृत का लड़का और जागृत की लड़की का हस्तमिलाप होगा कि नहीं? कैसे होगा? क्योंकि उसकी दूसरी सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है। व्यावहारिक सत्ता में व्यावहारिक लड़का व्यावहारिक लड़की का हस्तमिलाप होगा, लेकिन स्वप्न की लड़की और जागृत के लड़का दोनों का हस्तमिलाप नहीं होगा। क्यों? दोनों की सत्ता अलग अलग है। दोनों की सत्ता अलग अलग होने के कारण एकता नहीं है। तो ये व्यावहारिक कैसे होगा महाराज? तो उस अव्यावहारिकता के दोष को निवारण करने के लिए शंकराचार्य जी ने तुरंत दूसरा उदाहरण दिया, महायोगी व महायोगी, योग साधना से परिपक्व हुए हुए महान सिद्ध योगी, योग सिद्धि के माध्यम से बिना उपादान कारण के और बिना सहकारी कारण के ग्रहण किए भी वह कार्य को उत्पन्न कर देता है, और उन योगियों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ जो कार्य है
वह पूरा का पूरा व्यावहारिक होता है। इसी तरह वो योगी में जो शक्ति आई है वो तो ईश्वर से है, ईश्वर की शक्ति का एक अंश प्राप्त करके उस योगी में वो क्षमता आई है। उपादान कारण और सहकारिक कारण के बिना भी कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता योगी में कहां से आया, तो बोले ईश्वर से, उसके एक छींट एक चिंगारी लेकर वो शक्ति आ गए। तो वो परमात्मा तो योगेश्वर है, योगियों का भी ईश्वर है, फिर उसके बारे में तुम ये कैसे शंका कर रहे हो कि परमात्मा उपादान कारण सहकारी कारण के बिना जगत को कैसे उत्पन्न कर सकता है, ये कल्पना तुम कैसे कर रहे हो। एक योगी उपादान कारण और सहकारण का ग्रहण किए बिना अकेले कार्य को उत्पन्न करता है, और योगी जो सृष्टि करता है वह सृष्टि पूरा का पूरा व्यावहारिक होता है। एक दो दृष्टांत हैं उन योगियों की सृष्टि कैसे होती है और वह व्यावहारिक होती है, ये दृष्टांत सहित इसके विवेचन हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: शांति
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Appudi Adigal, presented by Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek Dakshin Bharatiya sant ya Nayanmar ki kahani, jinka naam Appudi Adigal hai. Tiruvayur ke nikat Tingalur mein अपुतियल नामक द्विज श्रेष्ठ या ब्राह्मण रहते थे। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ऐसी धारणा के फलस्वरूप उन्होंने जनसेवा के लिए मठ, धर्मशालाएं, पीने के पानी के जगह आदि का निर्माण किया। तिरुनावु परिषद, जो कि और एक दक्षिण भारतीय संत हैं, उनका नाम सुनकर अपुतियल ने उनके बारे में जाना, और जैसे ही उन्होंने जाना, उन्होंने तिरुनावु परिषद को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया। गुरु के प्रति असीम भक्ति के कारण उन्होंने अपने घर के गाय बछड़ों, अपने द्वारा निर्मित मठों, मंदिरों और धर्मशालाओं आदि का नाम भी तिरुनावकरसर के नाम पर ही रखा था। संयोगवश एक बार संत तिरुनावकरसर तीर्थ यात्रा करते हुए इनके यहाँ पर आ पहुंचे। जब यह ज्ञात हुआ कि आगत अतिथि ही उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, तो अपुतेयर के हर्ष का सीमा न रहा। गुरुदेव के योग्य सत्कार और अतिथिय का विशेष प्रबंध किया। संत तिरुनावकरसर के लिए भोजन तैयार हो रहा था। अपुतेयर का ज्येष्ठ पुत्र भोजन परोसने के लिए केले के पत्ते काटने के लिए गया था। बालक पत्ता काट ही रहा था, एक भयंकर सांप ने उसे डस लिया। तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। पति पत्नी ने इस शोक सूचना को गुरुदेव से इसलिए छिपाया कि उनके अतिथियों में कहीं बाधा न पड़े। पुत्र के मृत शरीर को एक चटाई में लपेट कर घर के पिछवाड़े पर रख दिया और गुरु के भोजन के लिए एकजुट होकर तैयारियां करने लगे। उन्होंने गुरु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। संत तिरुनावकरसर ने भोजन के लिए बैठते ही उनके पुत्र को बुलाने के लिए कहा। शोक में डूबे अपुतियरिगल और उनकी पत्नी को सारी घटनाएं बतानी पड़ी। तिरुनावकरसर ने उनकी त्याग भावना और धर्मनिष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसी क्षण बालक को शिव मंदिर ले जाकर भगवान से भाव विभोर होकर स्तुति करने लगे। मृत बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ मानो नींद से जागा हो। उस युग में यातायात की सुविधाएं बहुत कम थी। दूर चोल देश के ब्राह्मण अपुतियल ने तिरुनावकरसर की भक्ति और त्याग भावना का वर्णन सुनकर उन्हें अपना गुरु धारण कर लिया था। तिरुनावकरसर कृषक कुल में पैदा हुए थे, फिर भी उनको ईश्वर तुल्य मानना और उनके लिए सर्वस्व न्योछावर करने की भावना इस बात को सिद्ध करती है कि भक्ति मार्ग में जाति भेद का कोई स्थान नहीं। भक्ति की चरम सीमा में पहुंचकर भक्त के लिए समस्त जड़ चेतन में आराध्य देव के ही दर्शन होते हैं। इसी आधार पर अपुतियल को सब कुछ तिरुनावकरसर स्वरूप ही दिखाई देता था। विशाल क्यारियों में युक्त वन प्रदेश को तैयार करना, तालाब खुदवाना, धर्मशालाएं और प्याऊ बनवाना आदि अनेक सेवा कार्य करते हुए अपुतियल के मन में उनके साथ अपना नाम जोड़ने का भाव जरा भी नहीं आया। वे निष्काम भाव से इन सब कार्यों को अपने मानसिक गुरु तिरुनावकरसर के नाम से ही चलाते थे। वर्तमान समाज में नाम मात्र के लिए पुण्य कार्य करने वाले लोग अपने नाम को बड़े अक्षरों में खुदवाकर अथवा अन्य प्रकार के प्रचार करवाकर आदि का आश्रय लेकर प्रसिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अपुतियल की निस्वार्थ सेवा हमारे लिए उदाहरण स्वरूप है। अपने अतिथि के स्वरूप में आए गुरु के भोजन में विघ्न न पड़ जाए, इसलिए अपने मृत बालक के शव को छिपाकर उस मानसिक यंत्रणा और पीड़ा को सहन किया जो असहनीय है। उधर गुरु ने भी ज्ञान नेत्र से सब जान लिया और शिव की आराधना करके उनकी कृपा से बालक को पुनः जीवित कर दिया। भक्ति के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करने वाली यह प्राचीन कथा हमारे लिए आज भी मार्ग प्रदर्शन करने में सक्षम है।
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: दंतित्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलम् अन्यैस्तु किं कर्मभिः। वसनम् चर्म, अब कपड़ा तो पहनते हो, चमड़ी का, हाथी का चमड़ा, बाघ का चमड़ा। अब आप बड़े खुश होकर, प्रसन्न होकर अपने कपड़ा निकालकर दोगे तो उससे मेरा क्या होगा भाई? उससे मेरा क्या होगा? आपके कपड़े मेरे किस काम के? बोलो। व्यक्ति वही तो होता है, प्रसन्न होता है तो अपने कपड़े दे देता है। हमारे एक भक्त थे, अभी भी हैं बेचारे, बहुत वृद्ध हो गए। इलाहाबाद कुंभ मेले में गए, जनवरी का महीना, बड़ी ठंडी, मकर संक्रांति को पहला स्नान, 14 जनवरी, 13 जनवरी। सुबह सुबह गंगा जी नहाने गए, नहाने के आते समय में बड़ी ठंडी लगी थी, तो वो स्वेटर पहना था, मोजे पहने थे, उसके बाद टोपी लगाया था, गलबंदी बांधा था। तो वहां देखा, उस गंगा के किनारे कुछ यात्री ऐसे ही ठंडियों में सिकुड़ रहे थे, कांप रहे थे। उनको देखा, बड़ी दया आ गई उनको, तो बढ़िया शॉल था उनके ऊपर, पहाड़ से उतारा और उसको दे दिया। दूसरा देखे तो वो भी कांप रहा था, तो टोपी निकाला, उसको दे दिया। तीसरा देखते वो कांप रहा है, गलबंदी खोली, उसको दे दिया। चौथा देखा वो कांप रहा है, स्वेटर निकाली, उसको दे दिया। तो सभी लोग घाट में ठंडी में सिकुड़ रहे हैं, उनको दया आ गई बिचारे को। और कैंप में आते आते तो खाली एक कच्छा और बनिया। क्या हुआ? बोले अब क्या करें, घाट नहाने गया, सब दुखी हैं, कांप रहे हैं बिचारे ऐसे ठंडी में। वो भी मांगता है, सब दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि कैंप में और सेट थे, आए फिर फटाफट पहन ली। अब ऐसा व्यक्ति बाहर निकलेगा तो लुटाएगा ही। तो हे शिवा, आप भी इसी तरह दयालु हो जाओ और अपने जो कपड़े उतार उतार के देने लग जाओ। आपको दिगंबर होने में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपके कपड़ा मैं प्राप्त करके मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? बोलो। और कदाचित आपके कपड़े मैं पहनूं और जाऊं और तुरंत बारिश हुआ और भीज गया तो वो कपड़ा किस काम का भाई? वो कपड़े को तो भीजा हुआ शिवजी का दिया हुआ कपड़ा यदि भीज गया तो कुत्तों को गिद्धों को कागों को काम आ जाए, है ना। हमारा किस काम का भाई? क्यों, चमड़े में पानी पड़ते ही तो सड़ जाएगा, सड़ेगा तो काग गिद्धे तो खा ले, हमारे तो काम का नहीं महाराज। असनम गरलम पणी कलापो वसनम चर्म च वाहनम महोक्ष। अब आपके जो सवारी करने का जो वाहन है वो तो बैल है, वाहन मोक्ष। कहते हैं कि कोई व्यक्ति गांव में था तो गांव में वो साइकिल रखा करता था और साइकिल से आता जाता था। और धीरे धीरे काम करने के लिए वो बंबई आ गया और ये सोचकर कि बंबई में भी साइकिल काम आ जाएगा तो वही साइकिल चढ़ के इधर से उधर उधर से उधर घुमा करता था। भगवान की बड़ी कृपा हुई, खूब संपत्ति कमा लिया, अब तो गाड़ी रखने लगा, एक नहीं दो नहीं तीन बहुत गाड़ियां हो गई, बड़ा बंगला हो गया। लेकिन वो साइकिल कोने में रखी हुई थी उसकी, और गाड़ी रखी तो ड्राइवर रखा था। एक समय की बात है कि वो ड्राइवर कहीं दूर रहता था झोपड़ी में, और जाता था और चलाता था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यातायात हड़ताल हो गया, है ना, परसों हो गया था टैक्सी ऑटो तो आ नहीं पाया, दो दिन तक ड्राइवर आ नहीं पाया। तो सेठ को कहीं जाना था, जा नहीं पाया। क्या हुआ? बोले महाराज हम कैसे आए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यातायात सार्वजनिक यातायात हड़ताल हो गया, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो हम कैसे आते, पैदल आना संभव था नहीं। बोले साइकिल में आता। बोले महाराज हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है। अरे तुरंत उस सेठ को याद आ गया, भाई अरे वो गैरेज में मेरी पुरानी साइकिल पड़ी हुई है, ले जा। समझे कि नहीं? क्या नया है? होंडा सिटी देगा वो सेठ? अभी अभी खरीद के लाया था, वो देगा क्या उस ड्राइवर को? वो गैरेज में पड़ी है पुरानी मेरी साइकिल, वो ले जा, मरम्मत होकर कर लेना। अब कभी कभी हड़ताल हो, आना मुश्किल हो तो वही साइकिल से आना। बड़े खुश होकर कृपा करके दे दिए। किसने? सेठ ने। उस ड्राइवर का तो कल्याण ही हो गया। समझे कि नहीं? ले गया, मरम्मत कर ली, अब किस दिन हड़ताल वगैरह हो गया तो साइकिल चला आ गए, उसका तो कल्याण हो गया महाराज। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं महाराज आप प्रसन्न होकर अपना भान दोगे, उससे मेरा क्या होगा भाई? और मुसीबत, उसको घास खिलाना पड़ेगा रोज प्रतिदिन, है उसके गोबर कौन उठाएगा, उसको घास कौन खिलाएगा, कहां से खिलाएंगे भाई? क्या सुंदर भाव है इस श्लोक में। असनम गरलम फणी कलापो वसनम चर्म च वाहनम मोक्ष। मोक्ष माने बैल, बूढ़ा बैल। मेमना स्तोत्र में भी आता है ना, मोक्ष कटवांगम परसुरजिनम भस्म फणिना कबालम चेती यत तव भरत तंत्रोपकरणम। पुष्पदंताचार्य जी ने तो वहां सात साधन गिनाए, शंकराचार्य जी ने तो केवल चार साधन गिना दिया है। हाँ। मम दास्य से किम किमस्ति शंभो, हे शंभो आपके पास मुझे देने के लिए क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। हाँ एक चीज है बस, यदि आप प्रसन्न होकर देना चाहो तो मुझे वही चाहिए। क्या बेटा? मम दास्यसि किम किमस्ति शंभो तव पादाम्बुज भक्तिमेव देहि। तव पाद अम्बुज, आपके चरण कमल की भक्ति दे देना बस, उससे मेरा कल्याण होगा, बाकी और वस्तु से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। और आपकी भक्ति में कर रहा हूं, आपके सान्निध्य में मैं आश्रय में रहकर आपकी सेवा कर रहा हूं, तो कोई बहुत वस्तु प्राप्त करूंगा इस आशा से भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ एक वस्तु है, आप कृपा करके आपके चरण कमल की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा महाराज। तो भगवान से यही एक वस्तु जीवात्मा को अभिष्ट है, इसके अलावा और कुछ भी अभिष्ट नहीं है, और सब अनिष्ट कारक हैं, अभिष्ट तो उनके चरण की भक्ति ही श्रेष्ठ है, इसका आशय यही है। 88वां श्लोक भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, यदा कृतांबो निदिशे तु बंध करस्थलाध कृत पर्वताधिप भवानिते लंघित पद्म संभवस् तदा शिवार्चास तब भावनक्षम हो। हे शिवा, तब अर्चा आपके पूजा करने की क्षमता मुझ में नहीं है, आपकी पूजा करने की क्षमता मुझ में नहीं है, क्योंकि आपके पूजा करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिसमें वो सामर्थ्यता है वही आपकी अर्चना कर सकता है, आपकी सेवा आपकी पूजा कर सकता है। जिसमें वो सामर्थ्यता नहीं है तो आपकी क्या पूजा करेगा? हमने सुना है महाराज, भगवान राम ने आपकी खूब अर्चना की है, पूजा की है, वह सामर्थ्यशाली थे इसलिए आपकी पूजा करने में समर्थ हुए। यदा कृतांबो निधि सेतु बंधन, उनमें वो सामर्थ्यता थी। अंबो निधि, अंबो अप जल, अप भवती थी अंबा, निधि माने समुद्र, अंबो निधि सागर सेतु समुद्र। भगवान ने जब राम ने सेतु बंधन कर सके वो पुरुषार्थ उन्होंने दिखाया, उनमें वो सेतु बंधन करने की सामर्थ्यता थी, तभी उन्होंने आपकी पूजा कर सके, रामेश्वर की पूजा किया है ना। यदा कृता कृता, यदा कृता अंबो निधि सेतु बंधन कृत। तब राम ने पूजा की, तब आपका नाम रामेश्वर हुआ। उनमें वो सामर्थ्यता थी। दूसरा उदाहरण दिया शंकराचार्य जी ने, करस्थलाध कृत पर्वताधिप, पर्वत अधिप पर्वतों का राजा हिमालय, दोनों अर्थ लग सकता है। और रावण में भी वह सामर्थ्यता थी। वो साधारण व्यक्ति नहीं था रावण। उसने पूरा का पूरा हिमालय को हाथ में उठा लिया था। वो सामर्थ्यता उसमें थी, तभी तो अपने दस दस मस्तक को काटकर आपके चरणों में अर्पण कर दिया। उसमें आपकी पूजा करने की क्षमता योग्यता है, क्योंकि उसमें पर्वत को उठाने की क्षमता है। दूसरा अर्थ है कर तल अध, तला अधकृत पर्वताधिप, अगस्त ऋषि ने पर्वत को झुका दिया था। पुराण का प्रसंग आप लोगों को पता है ना, देवी भागवत का प्रसंग है। विंध्याचल देवी, विंध्यवासिनी विंध्याचल, देवी भागवत में जब विंध्याचल विंध्यवासिनी का प्रसंग आता है तो उस समय विंध्य पर्वत का प्रसंग आता है। कहते हैं कि ये विंध्य पर्वत बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, ऊपर उठे जा रहा था, उठे जा रहा था, कि उसके चलते सूर्य को एक दिशा से दूसरे दिशा जाना व्यवधान हो गया था। जा ही नहीं पा रहे थे, रुक गए। इतना बढ़ गया कि सूर्य की गति रुक गई। सारे देवता हैरान हो गए कि अब करें क्या, और किसी का वो न माने पर्वत, क्योंकि झुकना जानता नहीं है वो, बढ़ना जानता है झुकना नहीं जानता। आजकल के हमारे बच्चे जैसे हैं, अकड़ने जानते हैं झुकना नहीं जानते। बात बात पर अकड़ते हैं, झुकना नहीं जानते वो, और झुकना न जानने के कारण ही पारिवारिक कला है, विनम्रता है ही नहीं, झुकना जानते नहीं। मां के सामने झुकना नहीं जानता, बाप के सामने झुकना नहीं जानता, भाई के सामने झुकना नहीं जानता। झुकने को तो सिखाया ही नहीं ने किसी ने, है? किसी ने भी नहीं सिखाया। बढ़ना जानता है, अकड़ना जानता है। कहता है मैं क्यों झुकूं, बाप से ज्यादा मैं पढ़ा हूं तो मैं क्यों झुकूं, कह देता है आज का बेटा। कहता है कि नहीं बोलो, और सचमुच बाप से ज्यादा पढ़ा हुआ ही है। बोलो, दादा के सामने क्यों झुकेगा? दादा अंगूठा छापे और हम मास्टर डिग्री है, मां के सामने क्यों झुकेगा? मां अंगूठा छाप है। दादी के सामने क्यों झुकेगा? दादी अंगूठा छाप है। ज्यादा से ज्यादा उसका बाप एसएल इंटर किया होगा, उसकी मां इंटरमीडिएट की होगी, बीए एमए की होगी, हम तो डॉक्टर पीएचडी है। एक महात्मा थे, यानी पीएचडी माने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन का कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी। क्या अकड़ दिखाता, फिर भी नगर पालिका कर्मचारी कम अकड़ दिखाता है तुम्हारे सामने। कचरा लेने के जब आता है तो क्या करता है दरवाजे में खड़े होकर, नगर पालिका कर्मचारी झुकना नहीं जानते। बढ़ रहे हैं, समृद्धि हो रही है। दादा के साथ पुरानी साइकिल थी, बाप के साथ एक गाड़ी थी, बेटे के पास आज तीन तीन गाड़ी है। लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं, महाराज आपका मोबाइल देखा ना, जब मैं अपना मोबाइल दिखाता हूं ना, ये क्या है महाराज? बोले मोबाइल है। कितनी की पता है? आज के जमाने में भी मेरे पास मोबाइल 1000 का सेट है, खाली 1000 की है। आज कहां कहां पहुंच गया दुनिया। एक वक्त ने मुझे अमेरिका में एप्पल का आईफोन दिया, आई फोर लेके आए, अब चलाने ही नहीं आता है उसका, फंक्शन ही पता नहीं क्या है वो है? दे दिया, मेरा चेला चला रहा है, अब मैं मुझे चलाना नहीं आता तो करे क्या। कहते हैं कि विंध्याचल बढ़ता ही गया, परिणाम हो गया सूर्य के रास्ते में आ गया, और सूर्य एक दिशा से दूसरी दिशा जा नहीं पाए थे, देवताओं को परेशान हुआ, अब क्या करें, किसी का नहीं मानता है। कहते हैं कि शायद हमारा न माने, गुरु का तो मानता होगा ना, वो अपने गुरु का तो मानेगा। सब लोग जाकर उस विंध्याचल विंध्या पर्वत के गुरु के पास पहुंचे। विंध्य पर्वत के गुरु थे अगस्त्य ऋषि। जाकर सब कहा कि आपका चेला ऐसा अकड़ हो गया है, इतना बढ़ गया, झुकता ही नहीं है, और सूर्य उधर नहीं जा पा रहे, तो आप कुछ करिए, उसको समझाइए। बोले और कुछ कहेंगे तो वो शायद मेरे सामने भी अकड़ दिखावे, इसीलिए कहने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ उपाय करना चाहिए। तो अगस्त ऋषि खड़ाऊं पहनकर चले गए, पैदल ही खड़ाऊं पहनकर गए तो सामने खड़ा था कौन, चेला विंध्याचल खड़ा था। गुरु को देखा तो बोले गुरुदेव क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या काम है? बोले बेटा हमको आज दक्षिण की तरफ जाना है, जरूरी काम है, वहां जाने के लिए आए हैं, और तू इस तरह खड़ा है कि हम कैसे जाए, मुझे रास्ता नहीं देगा। बोले आपको तो देना पड़ेगा महाराज, आपको देंगे। तब मैं बूढ़ा हो गया हूं, चढ़ाई करके तो जा नहीं सकता हूं, तो उसके लिए झुकना पड़ेगा। बोले ठीक है, प्रणाम भी हो जाएगा, रास्ता भी आपको मिल जाएगा, झुक जाते हैं। वो झुक गया, लेट गया, अलाप जाइए। बोले बेटा मुझे फिर आना है, जब तक मैं ना हूं इसी तरह लेटे रहियो। तो अगस्त ऋषि तो गए, गुरुओं में भी बदमाशी होती है बेचारा है, देखो अब विंध्य पर्वत को कैसे धोखा दिया उन्होंने। बोले जो आज्ञा गुरुदेव, जरा जल्दी आइयो। हां बेटा आएंगे। तो सो गया, लेट गया वो, और अगस्त ऋषि चले गए दक्षिण, आज तक लौट कर नहीं आए, और विंध्य पर्वत आज तक सोया का सोया ही है। उसी पर्वत के ऊपर विंध्यवासिनी निवास करती है। विंध्याचल निवासिनी, तो अष्टभुजा भी वहीं पर है, विंध्याचल भी वहीं पर है, विंध्यवासिनी भी वहीं है। विंध्य पर्वत में निवास करने वाली होने के कारण देवी का नाम विंध्यवासिनी पड़ा। तो अगस्त ऋषि ने शिव की पूजा की, क्योंकि पर्वत को हाथ से नीचे दबा सके वो अपने विंध्य पर्वत को, उसमें वो सामर्थ्यता थी, तो आपकी पूजा करने में भी वो समर्थ हुए। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र में आता है ना, वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनिन्द्र देवार्चित शेखराय। वशिष्ठ ऋषि ने, कुंभोद्भव ऋषि, वशिष्ठ कुंभोद्भव, कुंभोद्भव ऋषि का ही दूसरा नाम है अगस्त ऋषि। अंगद ऋषि कहो चाहे कुंभद ऋषि कहो, एक ही चीज है, कुंभोद्भव। गौतम ऋषि, इन सब ने भगवान शिव की कृतशेखर आया। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतम आर्य मुनिन्द्र देवार्चित शेखराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यदा कृतांबो निधिसेदुबंध करस्थलाध कृत पर्वताधिप भवानि ते लंघित पद्म संभव। पद्म संभव लंघिता, ब्रह्मा जी के मर्यादा को भी अतिक्रमण करके भगवान विष्णु पद्म संभव लंघिता यानी जीत लिया। किसको? भगवान विष्णु ने पद्म संभव ब्रह्मा को जीता। किसके आधार पर? कल व्याख्या हो गई है, सत्य के आधार पर। क्योंकि विष्णु ने सत्य बोला, ब्रह्मा ने झूठ का आश्रय लिया, झूठ का आश्रय लेने के कारण ब्रह्मा छोटे हो गए और श्राप के भागी हो गए, दंड के भागी हो गए, और सत्य का आश्रय लेने के कारण ही विष्णु ब्रह्मा से बड़े हो गए। तो ब्रह्मा के लेवल का लंघन किया भगवान विष्णु ने, किसके आधार पर? सत्य के आधार पर। इसीलिए भगवान विष्णु ने शिव की अर्चना कर सके। विष्णु कैसे? हरिष्ते साहस्रम कमल बलिमादाय पदयोर, तब अपने नेत्र रूपी कमल को अर्पण करके भी भगवान शिव की अर्चना कर सके। इसीलिए संसार में विष्णु की प्रतिष्ठा बढ़ गई और विष्णु ने शिव की पूजा की। ब्रह्मा ने शिव की पूजा की कहीं इतिहास नहीं है, क्योंकि वह सामर्थ्यता थी। तदा शिवार्चास्तव भावनक्षम हो, हे शिव आपकी अर्चना करने में तब क्षमता, और मैं न तो सेतु बंधन करने में समर्थ हूं, न पर्वत को झुकाने में समर्थ हूं, न तो ब्रह्मा को भी जीतने की सामर्थ्यता है मुझ में, फिर मैं आपकी अर्चना कैसे कर सकता हूं महाराज? बस इतना ही है कि मेरे पास जो एक मन है वो आपको अर्पण कर सकता हूं। चलो आगे फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः।

है, ऐसी इच्छा आपको है, आपके जगत कारण को जानना है, आपके मूल को जानना है, स्रोत को जानना है, ऐसी इच्छा है, तो एक बात आज दिमाग में बराबर रख के जाइए, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, ये वाक्य दिमाग में से निकाल दीजिए, यह अहंकार निकाल दीजिए। यह अहंकार मैंने कहा ना बहु रुपया है। इनफैक्ट आपके बिना जो चीज आप समझते हैं ना कि मेरे बिना ये हो ही नहीं सकेगा, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके बिना, आप समझ लीजिए। मैं और मैं आपसे ही कह रही हूं, और किसी ये बाहर कोई है तो भी मैं नहीं कहूंगी। इसीलिए हमने रूम बंद कर दिया है, एसी लगा दिया, इसीलिए ये मात्र अधिकार ही ये सुन सकता है, और ये व्यासपीठ से ही मैं कह सकती हूं ये। हाँ? बराबर दिमाग में ये लगा देना, प्रिंट इट इन योर माइंड। ये नहीं समझेंगे तो चलेगा, हम बार बार आके ये बता सकेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे बिना ये नहीं हो सकेगा, ये बात आप निश्चित रूपेण परमात्मा को जानने के लिए चले हैं घर से तो निकाल देना, नहीं तो नहीं, नहीं तो कीजिए, कौन ना बोल रहा है। तो बने हो सके उतनी आपकी जितनी जो व्यवहारिक जितना आपका जो कर्तव्य है, आपका निश्चित जो कर्तव्य है वो करके ऐसे लग के छूट जाइए। पर आप नहीं भी करेंगे, आप कर्तव्य भी नहीं करेंगे ना। देखिए ये वेदांत, ये शास्त्र इतनी हद तक जाता है, इतना भी एक्सक्यूज नहीं देता है। आप अपना कर्तव्य कर्म भी नहीं करेंगे ना, तो ही इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर। और ये प्राचीन भी नहीं, अर्वाचीन समय में, अभी इसी जमाने में हो गया है। हाँ, नरसिंह मेहता जी की बात आपको और हमको नहीं पता है क्या? और वो कुछ झूठ बोलेंगे? जो कृष्ण भगवान जिसको चाहते हैं वो क्या झूठ बोलेंगे? हाँ, उसकी लड़की की शादी कराने कौन आया था? हाँ, कौन से मेहता जी, क्या नाम बन के आए थे? वो सेठ आए थे ना? हाँ, श्यामल शाह। हाँ, तो हमारे लिए परमात्मा कोई श्यामल शाह को नहीं भेजेगा, वो खुद नहीं आएगा, कोई सृष्टि को भेज के देगा, आपका प्रसंग बन जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ बन जाएगा आपके लिए, जो ठीक है वो परमात्मा आपको कर देगा। आप इतना ही करो, आप इच्छा निकाल दो कि ये करना है, उस पूरे के पूरे अभी मिल ही गया है ना ये परमात्मा, तो पूरे उसके ऊपर चढ़ जाओ। पूरे ही बी 100% डिपेंडेंट अपॉन हिम, के अभी तेरा नाम लेता हूं, तुझे अभी जो करना है वो कर। हा? अब आपकी इच्छा भी क्यों रखते हो? क्योंकि सब हमारी इच्छा पूरी हुई है क्या? उसका मतलब क्या है? जो उसको इच्छा पूरी करनी थी वही उन्होंने की, और उसमें गलत भी नहीं किया, वही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा तब किया है, तब अच्छा नहीं लगता है, पर अब क्या लगता है कि जो हुआ वो ठीक किया? तो अरे इतने साल का अनुभव है, 40, 50, 60 साल निकल गए जीवन में से, और मुझे इतनी समझ में नहीं आई कि भाई सोचा तो मैंने इतना पर हुआ तो उसका ही, तो अभी उसको ही करना दो ना, वॉट एवर इज बेस्ट फॉर मी। हाँ, नरसिंह मेहता ने जब कृष्ण परमात्मा, जब शिवजी प्रसन्न हो गए, भगवान शिवजी जिसकी हम बातें कर रहे हैं, वो शिवजी नरसिंह मेहता के ऊपर प्रसन्न हो गए, तो उनके वाक्य क्या थे? परमात्मा ने जब मांगने को कहा तो वो बोले, तमने जे वल्लभ होय जे दुर्लभ, आपोरे प्रभु जी दया रे आणी। आपको ओ वल्लभ, आपको आपके लिए भी जो चीज दुर्लभ है, अभी परमात्मा कैसे है समझ में आ गया ना कैसे है? वो सचराचर जगत के कारण को भी कुछ दुर्लभ हो सकता है, उसके पास सब कुछ भी है, तो भी आपको जो दुर्लभ है ये परमात्मा की कैसी कसौटी है, वक्त ही ले सकते हैं। आपको जो प्रिय है, दुर्लभ है, आपके लिए जो प्रेशियस है, वो मुझे आप दया करके दीजिए। हाँ, बिना दया नहीं, याचना है, नम्रता है यहाँ। तो वो शंकर भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण से प्रिय मुझे कुछ नहीं है, और फिर भी उनकी रासलीला से प्रिय तो मुझे कुछ भी नहीं है। और ये रासलीला का पूरा अर्थघटन जो है पूरा सांकेतिक है, सुंदर है, परमात्मा के सत्य चित आनंद के जो लक्षण है वो पूरे एक साथ सब सच्चित आनंद होता है, तब ये रासलीला होती है। उसका हार्द रासलीला का इतना ही है कि हर एक गोपी के साथ कृष्ण से, यानी क्या, हर हम सब कुछ कितने सारे बैठे हैं उसके अंदर अहम प्रत्यय से, प्रत्येगात्मा कौन है? प्रत्येगात्मा एकमात्र है, ये संकेत देने के लिए ये रासलीला है। यानी हे नरसिंह मेहता, आपके जो स्वरूप, जो अहम स्वरूप जो है, जो बाह्य सचराचर प्रत्येगात्मा से, सूत्रात्मा से, सबके भीतर अहम अहम अहम है,
और

0: चराचर परमात्मा भी वही है, वो परमात्मा के दर्शन, वो परमात्मा का सत्य चित आनंद जो लक्षण है, हकीकत में जो आत्म साक्षात्कार जो है वही दान शिव परमात्मा वो नरसिंह मेहता जी को कर देते हैं। बहुत बड़ी व्याख्या है, व्याख्यान है, उनकी बातें करने के लिए भी बहुत समय का अभाव है, इसलिए वो भाव को अभी वहीं रहने देते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि ऐसे ऐसे प्रसंगों को याद कीजिए, और इतना मैंने क्या याद रखने को बोला था, वो याद रखना क्या, आप खुद ही बोलिए, हाँ, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, ये अहंकार आप अभी इसी क्षण निकाल दीजिए, मुझे देके जाइए, हम ये कलेक्ट कर लेते हैं और हाँ देके जाइए, कोई कोई चिंता नहीं है, हाँ ये देके जाइए तो क्या होगा, आप फ्री हो जाएंगे, उसके लिए फ्री होना है, हाँ बी फ्री फॉर हिम, तो ही परमात्मा थोड़ा खाली अपने लिए भी होगा, हाँ इतने अपने आप को बिजी मत रखिए कि उसको हम याद भी नहीं कर सके। हाँ तो यहाँ कहा है, परमात्मा आप मेरे खूब प्रिय हो, इसलिए मैं अभी बार बार अलग अलग प्रकार से आपको नमस्कार कर रहा हूं। तो यहाँ कहते हैं, हे निर्जन वन को ही प्रिय मानने वाले, परमात्मा आपके लिए प्रिय क्या है, तो बोले निर्जन वन जो है वो प्रिय है, अरण्य बृहद अरण्य है ना, अरण्य में जाके उपनिषद पढ़ना है, अरण्य यानी अरण्यम शरण्यम, अरण्य रण्य यानी के रण, युद्ध जहां होता है, जहां युद्ध नहीं होता, युद्ध कौन सा होता है भाई, मन की जो तामस वृत्तियां है उसका युद्ध मन की सत्व वृत्ति से होता रहता है, ये करूं या नहीं करूं, ये लोकलाज है, ये शर्म है, मेरी आदत है, मेरा व्यसन है, मेरा स्वभाव है, मेरे मित्र ने कहा, और मैं जो गुरु को मानती हूं वो गुरु भी यहां खींचते हैं, और वो मित्र का कहता है कि यहां जा, अब मैं क्या करूं, तो ये जो रण जो है वो अरण्य में नहीं होता, अरण्य याने कि निर्जन जगह, निर्जन जगह याने कि जहां जो जन दो जन होते हैं तो क्या होता है, वहां प्रपंच होता है, कोई कहने वाला कोई सुनने वाला, और बातें कैसी होती है, अन्य की बातें होती है, निर्जन याने मेरे लिए कोई दूसरा ना हो, भले मैं लाख लोगों के साथ बैठी हूं तो भी वो सब में प्रत्येगात्मा रूप से वही परमात्मा का अलग अलग दर्शन, अरे आज ये परमात्मा ने ये लाल साड़ी पहन के आए तो ये परमात्मा आज ब्लू शर्ट पहन के आया, दोनों एक ही लगने चाहिए, जब ऐसा होगा तब आपको कोई भी फिक्र नहीं होगी। हाँ टेक हिज दर्शन, ये सब उनके ही दर्शन है, खाली वृत्ति बदलनी है। तो फिर परमात्मा कैसे है, प्रिय दवद अविष्ठाय च नमः, सबके पास रहे हुए और सबसे दूर आपको हे नमस्कार है, तद्दूरे तदंतिके, सबसे सबके पास रहे हुए यानी यो वेद निहितम गुहायाम, अहम वृत्ति से तो आप सबके पास रहे हैं पर दूर है, क्यों दूर है, जब तक अज्ञान का आवरण नहीं जाता अहम वृत्ति से आप जाने नहीं जाते, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणुते तनुस्वाम, किसके लिए परमात्मा अपने आप को विवृणुते, अपने आप को वो करते हैं, प्रकट करते हैं, यम एव एष वृणुते, जो मात्र उनको और उनको ही चाहता है उसी के लिए परमात्मा अपने आप को उपस्थित करते हैं। इसलिए कहा कि दूर रहने वाले आपको नमस्कार, हे काम का हरण करने वाले आपको नमस्कार, सबसे छोटे और सबसे बड़े आपको नमस्कार, अणो ये देखिए एक उपनिषद वाक्य, ये उपनिषद का मानो की पुनस्मरण हो रहा है, मानव की रिवीजन हो रहा है ऐसा लगता है। हाँ अणोहो अणियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निहितम गुहायाम, ये कह दिया छांदोग्य बृहदारण्यक, ये सब उपनिषदों में ये बात आती है, ऐसे आप है और कैसे है, सबसे वृद्ध है, सबसे वृद्ध यानी अनादि कारण है, आपका कोई आदि नहीं है, आप ही सबसे है युद्ध और आप ही सबसे युवान है, युवान है यानी कि आप अमरण धर्मा है, आत्मा जो है वो कभी भी मृत प्राय नहीं होता, अमृत है, इसीलिए आप सबसे युवान है, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, याने कोई युवान की मुझे तलाश है, युवान देखना है तो भी मैं आपको ही देखता हूँ, वृद्ध देखना है मुझे पिता की जरूर है तो भी मैं आपको ही देखता हूँ, ये सब आप ही है, ऐसा समझ के सर्वस्वरूप कल्याण स्वरूप आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रहे हुए आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। आगे कहते हैं शिव के जो मुख्य चार स्वरूप है, बहल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः, भवाय, हराय, मृडाय और शिवाय, ये चार स्वरूप दिए हैं। ये क्या है? फंक्शनल डिफरेंसेस है। एक बहन है, स्कूल में जाती है, पढ़ाती है, तो वो क्या है तब? मैडम, शिक्षक है। वो अपने भाई के घर जाते हैं तब बहन बन जाती है, अपने पिता के पास वो पुत्री। बस ऐसे ही ये जो ब्रह्म है, जगत के कारण की उत्पत्ति स्थिति लय के जो कार्य करते हैं, तब वो क्या कैसे जाने जाते हैं? तो ईश्वर तरीके, ईश्वर कह के, ईश्वर नाम से वो जाने जाते हैं। तो यहाँ कहा है जगत की उत्पत्ति के लिए, उत्पत्ति के लिए कार्य करना पड़ता है। कार्य यानी रजोगुण से ही कार्य होता है, सत्वगुण में कार्य नहीं होता है। तो जगत की उत्पत्ति के लिए दया करके आपने अपने आप में रजोगुण का प्रादुर्भाव किया। तो रजोगुण वाले वो जो भव है, ब्रह्म स्वरूप है, उसे बारंबार मैं नमस्कार कर रहा हूँ। देखिए, हमारे भीतर जो रजोगुण का जो लेश आ गया है, जो स्वभाव आ गया है काम करने का, वो लेश, वो संस्कार कहाँ से आए? हमारे कारण में से ही खींच के आए ना। तो रजोगुण कहाँ से आया? रजोगुण परमात्मा में से ही आया। अब रजोगुण परमात्मा में से आया तो ये रजोगुण से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो कुछ भी आप कर्म करें, जो कुछ भी आप दौड़ धूप करें, वो ध्येय गंतव्य क्या होना चाहिए? गंतव्य तो वही परमात्मा। ऐसी ही एक्टिविटी करो, ऐसी ही जगह पे जाओ। ऐसे तो क्या पूरा दिन हम मंदिर में दौड़ते रहे तो खाएंगे पिएंगे क्या? ऑफिस में क्या जाएंगे? ऑफिस में भी दौड़ो, दौड़ने की ना नहीं है, पर ये ऑफिस में जाके जो भी मैं वित्त, जो भी मैं धन, जो भी मैं सुखाकारी कमाऊंगा, वो सुख से, चैन से खा पी के, आराम करके, जो कुछ समय मेरा बाद में बचेगा, उसको मैं परमात्मा के प्रीत्यर्थ, परमात्मा को जानने के लिए, पुरुषार्थ में लगाऊंगा। ये सब कुछ करके एक 10 मिनट भी दी है कभी? और ये रजोगुण किसने दिया है? रजोगुण चाहिए वो परमात्मा की शक्ति, चाहिए उसकी स्फूर्ति। उसकी शक्ति और स्फूर्ति के बिना, उसके रजोगुण के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब सुखाकारी का अनुभव किया, सब कुछ किया, पर जो समय बच गया इन योर फ्री टाइम, हैव यू रिमेम्बर्ड हिम, आपके स्रोत को? और अगर आपके स्रोत को आपने नहीं जाना तो कहते हैं व्यर्थ नर अवतरी मातृ यौवन हरी रत्न चिंतामणि जन्म खोयो। हाँ, व्यर्थ नर रूप आपने अवतार लिया है ऐसा मान लेना। तो हे परमात्मा, आपके रजोगुण का उपयोग मैं आप ही के लिए करूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए। जगत के संहार करने वाले आप, आपको संहार के लिए तमस गुण चाहिए, तो हमने अपने तमस गुण का उपयोग कहाँ का किया? भाई, किसी ने मेरा बुरा सोचा तो उसका बुरा सोचने के लिए तमस गुण हमने उपयोग किया। किसी ने मेरा बुरा किया, बुरा करने के लिए ये तमस का दुरुपयोग। देखिए, परमात्मा में से जो चीज निकलती है ना, वो सबका सदुपयोग है, सबका उपयोग है। तमस का भी उपयोग है। तमस का उपयोग आपको अपने अज्ञान को मानने के लिए ही मात्र करना है और किसी के लिए नहीं। तमस याने कायिक, वाचिक और मानसिक किसी की भी आप हत्या करते हैं। हत्या याने किसी का बुरा सोचना भी हत्या है। तो भी क्या हो गया? ये तमस का ग्रॉसली मिसयूज हुआ है। प्रकर्षेण अत्यंत ही उसका दुरुपयोग हुआ है और ये अलाउड नहीं है। तमस का उपयोग कहाँ करना है? मारने की जो वृत्ति आपको भीतर दी है ना, उसका उपयोग सिर्फ आपके अज्ञान को मानने के लिए किया है। आपकी जो तृष्णा है, जो खिंचाव है, जो लगाव है, वो लगाव को तोड़ने के लिए ये दिया है। इसको तोड़ के, एक बार तोड़ दिया, इसीलिए कहा है। इसी को दूसरे शब्द में भगवत गीता में क्या कहा है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये असंग शस्त्र है, छेदन करने के लिए तमस गुण चाहिए। हाँ, कोई सत्वगुणी आदमी को छेदन करने, करेला भी काटने को दोगे वो काट नहीं सकेगा, बोले कि मैं कैसे इसको काटूं, उसमें भी उसे ब्रह्म दिखने लगेगा, बहुत बुरी हालत होगी। इसीलिए भगवान ने तमस दिया है कि काटना तो पड़ेगा एक बार। तो क्या? तो बोले ये असंग रूपी शस्त्र से संसार वृक्ष को आप काट लीजिए। ऐसे आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ। मनुष्य के सुख के लिए अधिक सत्व गुण का आश्रय करके, देखिए तमस और रजस तो सब प्राणियों में और हम में एक ही है। आदमी जिसका प्राणी जो शेर है, वो दूसरे को जिस तरह मार सकता है, आदमी भी मारता है, देखते हैं ना हम। तो तमस और रजस में तो कोई फर्क नहीं किया, पर हे परमात्मा ये मनुष्य शरीर की जब बात आई तब आप अति कृपालु होके सत्वगुण से भी मेरे अंदर भर गए। सत्वगुण प्राणियों में और पक्षियों में इतना नहीं है भरा हुआ जितना मुझ में है, तो ये हमारे ऊपर ऊपर की ज्यादा से ज्यादा कृपा की है, और ये ज्यादा कृपा जो है उसको मैं समझ पाऊं ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। ऐसे आपके सत्वगुण को मैं नमस्कार कर रहा हूं, और ये तीन गुण से आप अतीत है, तीन गुण के साक्षी आप है, वो साक्षी को भी मैं नमस्कार कर रहा हूं। कृश परिणति चेतः क्लेशवच्यम क्वचेदम, कहते हैं हे वरदान देने वाले ईश्वर, मेरे अल्प विषय वाले और क्लेश को वश हुए चित्त जो है वो कहां, और गुणों की जो संख्या है, गुणों की जो सीमा है, क्वचतव गुण सीमो लंगिनी शश्व दद्दी, गुणों की सीमा को अतिशय पार कर जाने वाले आप की नित्य समृद्धि कहां। अब क्या कहते हैं कि हे परमात्मा, पहले तो एक बात समझ में आ जाए कि अगर उत्पत्ति स्थिति और लय ही ये परमात्मा में से हुआ है तो वॉट एवर आई एम एंडोर्ड विथ, मेरे पास जो भी कुछ है वो किसका है, वो परमात्मा का है, तो अहंकार किस बात का, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। इतना समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे जब मेरी मनमानी मेरी मर्जी से सामने वाला नहीं चलता है तो भी धीरे धीरे समझ में आता है कि कोई एक तत्व है जिसका चलता है, वो कौन है, वो जानने के लिए भी हम उद्रुत होंगे तो परमात्मा के पास चले जाएंगे। अब यहाँ कहा है कि इतने से भी पता नहीं लगा तो जब आपके पास जो भी कुछ कला है, धन है, धन याने सिर्फ पैसा नहीं, धन याने आपके पास जो कुछ भी जो भी कला आपके पास है जिससे आप धन उपार्जित करते हैं वो कला की जाती है, बोली जाती है। कोई नृत्य कला में एकदम ही निपुण है तो वो उसके लिए धन का कारण, तो कोई रूपवान है, कोई धनवान है, कोई कलावान है, कोई नृत्यकार है, कोई गान करता है, ये सब जो भी कुछ हमारे भीतर कोई विशिष्ट कलाएं आई है उस वो धन ही है। और यहाँ पुष्पदंत जी कहते हैं कि हे परमात्मा, ये स्तोत्र की रचना जो मैंने की और निश्चित बड़ी ही विशिष्ट रचना है, निश्चित सुंदर है, निश्चित भाषा उत्कृष्ट है, तो ये उत्कृष्ट भाषा से जो मैंने आपकी स्तुति की वो स्तुति का अहंकार मुझ में न आ जाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये शब्द जो है वो भी आपके ही है। ये रचना करने की जो विद्या जो है, रचना करने का जो गुण मेरे भीतर है, ये जो धन मेरे भीतर है वो भी आपका ही है, क्योंकि मेरे धन के आगे, मेरे ये विशिष्ट कला के आगे, आपकी समृद्धि के आगे मेरी ये विशिष्ट कला कोई भी मायना नहीं रखती। मैं ही अब समझ गया हूँ कि आप मेरे सत्ता और स्फूर्ति है, आप मेरे स्रोत है। तो ये क्या, ये अहंकार का पूरा विसर्जन यहाँ बताया है। देखिए एकदम जीरो लेवल पे अहंकार जाता है कि आपके पास मैं कहाँ, बस इतना। ये जो भाव है, ये जो बहुत ही छोटा भाव हम बोलते हैं ना, शुद्र भाव जो है, शुद्र भाव यानी कोई गिरा हुआ भाव नहीं, शुद्र भाव यानी एटलीस्ट परमात्मा के पास तो बहुत ही छोटे हो जाना आपके कल्याण के लिए। तो कहते हैं इस प्रकार भयान्वित हुए मुझे बलात्कारे, यानी मुझे ये स्तुति करने की भी हिम्मत देने वाले आप ही है। देखिए परमात्मा जब हमारा अच्छा करने की सोचता है ना, तब जबरदस्ती हमें इस साधना में घसीटते हैं परमात्मा। जब भी हमारे ऊपर कृपा उन्हें करनी है तो कोई भी प्रकार से वो कृपा करते हैं। आपको अच्छा लगे या न लगे प्रवचन में आना पड़ता है, अच्छा लगे या न लगे ये पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है। कई बार आपको होता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई अर्थ इसका नहीं है, पर इसका अर्थ है, ये परमात्मा की ही अपने प्रति जबरदस्ती है। क्यों, क्योंकि उन्हें अपने हमारे कर्म को शुद्ध करना है। नाम उनका लिया नाम लेके वाणी पवित्र हो गई और हमारे कर्म जो है, हमारे विचार जो है, हमारे संस्कार जो है, वो अपने आप पवित्र हो जाते हैं। तो श्री पुष्पदंत जी कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती से आपने ये स्तुति में प्रवर्तमान करके अतिशय भक्ति से आपके चरणों में बहुत ही जबरदस्ती से यानी फोर्सफुली ये जो पुष्प की माला जो है, पुष्प की माला यानी स्तोत्र रूपी पुष्प की माला जो है, वो आपने अपनी मर्जी से अर्पित की गई है, किया गई है। आप ट्रेन में जाते हैं, कभी सफर में जाते हैं, कार में जाते हैं, आपके साथ छोटे बच्चे भी होते हैं, कोई नदी आती है, नदी के ऊपर से जब आप जाते हैं तो आप बच्चे को क्या करते हैं? वो बच्चा अपने खेल में लगा है, अपनी वीडियो गेम्स खेलता है, अपनी डॉल के साथ खेलती है बेटी। तो जब कुछ ऐसा आ जाता है, मंदिर आ जाता है, नदी आ जाती है, समुद्र आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? कहीं आपका खिलौना ले लो, अभी ये जो ले, ये लो पैसा, गाड़ी खड़ी रखते हैं या ट्रेन में से क्या करते हैं, जल्दी विंडो के पास जाके वो बच्चे के हाथ से क्या करते हैं, हम वो पैसा वहां अर्पण करते हैं। मंदिर में जाते हैं तो बच्चों के पास हम फूल देते हैं, चढ़ाते हैं, टोकरी छोटे बच्चों के पास देते हैं। क्यों? जबरदस्ती उसके पास ये कर्म करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो संस्कार इसमें हम डाल रहे हैं वही उसको काम आने वाले हैं, और कोई संस्कार का मतलब नहीं है इसके जीवन में। तो जबरदस्ती हमारे बुजुर्ग हमारे पास ये काम कराते हैं। ऐसे ही मुझे आपने ये आपका ही पुत्र, आपका ही छोटा बच्चा समझ के ये जो, यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि मैं ये जो स्तोत्र की रचना कर सका वो आप ही की कृपा है, और आपने ही क्या किया कि मेरा ये जो कर्म जो है, निंदनीय कर्म है, वो निंदित न हो जाए और स्तुति के रूप में। देखिए कर्म कैसा था, ये परमात्मा ने घुमा फिरा कैसे दिया पूरा कर्म, और ये कब घुमा फिरा देते हैं वो पता नहीं लगता। वो कोई मुहूर्त नहीं देते कि इस टाइम में तुझे मैं घुमाऊंगा, नहीं, ये निंदनीय कर्म करने दिया। करने के बाद जैसे ही अप्रशंसा की बारी आई तो परमात्मा ने क्या किया, वही निंदनीय कर्म कौन सा था, तो भाई शिव के निर्माल्य का उल्लंघन किया। शिव के निर्माल्य का उल्लंघन यानी समझ लेना कि जिसने शिव को प्राप्त कर लिया है वो गुरुजनों के शब्दों का उल्लंघन, उनकी आज्ञा का उल्लंघन, उनके ज्ञान का उल्लंघन, उनके बोध का उल्लंघन, उनके बार बार कहने से भी न सुधरने का उल्लंघन, ये कर लिया। और जैसे कर लिया, उल्लंघन तो गुरु का ही किया है ना, तो वो गुरु उद्धरण कर देंगे। कैसे? तो बोले कि मेरा जो निंदनीय कर्म था उसे प्रशंसा में आपने ही घुमा फिरा लिया है। ये स्तुति की वो मैंने की, ऐसा नहीं है, ये स्तुति कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे ही आपकी स्तुति हुई है और आपने ये कर्म मुझसे करवाया है। जैसे वो बालक जो है वो अभी इतना वो उसने कमाया ही नहीं है कि किसी को दान दे, फिर माता पिता क्या करते हैं कि उसके हाथ में पैसा रखते हैं, फूल रखते हैं और बोलते हैं कि अब आप मंदिर में जाइए, आप पूजा कीजिए, उसके पास जबरदस्ती करवाते हैं। बालक ने तो ये उपार्जित नहीं किया है, तो भी जैसे माता पिता उससे अच्छा कर्म करवाते हैं ऐसे आपने आपकी शक्ति मुझे इस प्रकार दी है, वो मैं भूल नहीं रहा हूं। क्योंकि कहते हैं कि असित गिरी समम से आते महासागर रूप पात्र में नीलगिरी जितनी शाही अगर मैं डाल दू, और कल्प वृक्ष की जो डाल है, कल्प वृक्ष की डाल यानी कभी भी खत्म नहीं होने वाली, तो कल्प वृक्ष की जो डाल है उसे मैं, उसकी मैं कलम बना लू, पेन बना लू, और फिर कागज कौन सा लू, तो बोले पृथ्वी रूपी कागज लेकर अगर मेरी बात नहीं, माँ सरस्वती भी, विद्या देवी भी, हाँ, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम मृगमदाम, ये जो है सरस्वती देवी भी आद्य देवी है, शब्दों की देवी है, ज्ञान की देवी है, वो भी अगर पृथ्वी रूपी कागज से आपकी जो प्रशंसा है, आपकी स्तुति है, आपके रूप का वर्णन करने में सक्षम नहीं है, वो कभी भी खत्म न होने वाली स्तुति है, तो ऐसे आपकी स्तुति मैं कैसे कर सकूंगा? मैं तो करने के लायक ही नहीं हूं, फिर भी आपने ये स्तुति मुझसे करवाई तो मैं आपकी, आपको इसलिए मैं नमस्कार कर रहा हूं। असुर सुर मुनिंद्र ही, अब उपसंहार जो श्लोक है अर्चिते हे सेन्दु मौले हे ग्रथित गुण महिमनो निर्गुणस्येश्वरस्य समस्त गंधर्वों के समुदाय में जो श्रेष्ठ गंधर्व है वो कौन है, तो बोले पुष्पदंत नामक श्रेष्ठ गंधर्व है। असुर सुर और मुनिंद्र से पूजे हुए और जिसकी गुण महिमा का वर्णन वेद शास्त्रों में किया है, ऐसे निर्गुण परमेश्वर श्री चंद्रशेखर शंकर भगवान के इस स्तोत्र को बहुत विशिष्ट शिखरिणी छंद की जो बात की और उसके साथ दूसरे भी बड़े बड़े छंद लेके बहुत ही अच्छी तरह गंधर्व जी ने, ये कैसा है प्रवचन होता है, कुछ भी अच्छा कार्य होता है तो हम क्या कहते हैं, हम जो आभार विधि करते हैं, तो यहाँ ये जो देव है, असुर है, मुनिंद्र है, ये सब क्या है और दूसरे गंधर्व है वो भी क्या है, वो आभार कहते हैं कि बड़े छंदों में उन्होंने इसकी रचना की। यानी क्या करते हैं कि ये जो रचना है ये पुष्पदंत जी तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसका फैलाव होना चाहिए और इसका फैलाव होने के लिए हम ये प्रसंग में आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि कोई औरों को भी सुनने की ये प्रेरणा मिले, क्योंकि उसके कान उनकी वाणी भी पवित्र होगी, उतने समय तक तो वो कुछ बुरा भला नहीं सोच सकेंगे। तो बोले ऐसे रचा है, ये स्तोत्र कैसा है, स्तोत्र पाठ और उसकी फलश्रुति देते हैं अहर हरन वद्यम करके। जो पुरुष शुद्ध चित्त से परम भक्ति से महादेव जी के इस पवित्र स्तोत्र का हमेशा पाठ करते हैं वो शिवलोक में शिव जी के जैसे ये लोक में अतिशय धन और आयुष्य और पुत्रमान और कीर्तिमान होते हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि ये नरसिंह मेहता की बात आ गई पूरी कि धन पुत्रमान कीर्तिमान आयुष्यमान ये तो परछाई है। हाँ, ये जो है वो तो कहीं से भी आपको कैसे भी वो देने की जवाबदारी किसकी हो जाएगी, वो परमात्मा की हो जाएगी। और टेस्ट तो करो और कुछ नहीं तो, हाँ देखो तो सरा होता है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो आपके लिए वो बराबर वो समय नहीं होगा। मैं कई बार कहती हूँ कि देखिए प्रारब्ध में जो होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म और मोक्ष जो है उसके लिए पुरुषार्थ करना है, काम और अर्थ के तो प्रारब्ध वशात है ना, आपके नसीब में भोजन होगा तो रात को मिलेगा, आप जंगल में जाके बैठ जाइए। बोले चलो आपको टेस्ट करने के लिए भी बैठ गए, आप बैठ जाते हैं और कौन देने को आएगा अभी जंगल में खाना, नहीं आया खाना और दूसरे दिन तो आप राह देख रहे थे कि ये प्रवचन में आकर बैठे तो बात कहूं के आपके ऊपर विश्वास रख के ये प्रारब्ध की बात भाई गलत है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द फॉलोइंग इज अथर्वण वेदा सौनक शाखा कांडम 1 सूक्त 30।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: तो क्या कहोगे? उसका जैसा नाम रखा गया स्व उत्पन्न, स्व के अलावा वह कुछ भी, स्वपन का मतलब जैसे अपनापन कहते हो तो अपनापन का मतलब क्या, वैसे ही स्वपन माने अपनापन, अपने से भिन्न कुछ भी प्रतीत न होना, सब आत्मरूप प्रतीत होना, सब अपना ही प्रतीत होना, अपने से पृथक कोई पदार्थ हो ही न, तो उसे क्या कहते हो, स्वपन है, स्वप्न। तो अब जो है स्वप्न के अंतर्गत बाहर का आपसे भिन्न कौन सा पदार्थ है, आज दिन तक किसी भी व्यक्ति ने या वैज्ञानिक ने खोज करके दिया कि वहां स्वप्न के अंतर्गत स्व से भिन्न अमुक पदार्थ था? कल्पना तो करते हैं लेकिन वो कल्पना मात्र है, लेकिन उसकी सत्ता तो स्वसत्ताक कोई पदार्थ नहीं होता है, पदार्थ होता है लेकिन वो कल्पना रूप पदार्थ होता है ना, लेकिन स्वसत्ताक पदार्थ या स्वतंत्र सत्ता वाला कोई पदार्थ नहीं होता। तो अब स्वप्न के अंतर्गत स्व से भिन्न कुछ भी नहीं। अब वो स्वप्न आप देखते हो, वहां रथ भी है, घोड़े भी हैं, मार्ग भी है, गाड़ी आदि सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ है तो वो है कौन, ये तो विचार करना होगा, किससे उत्पन्न हुआ, यस्मान जातम, यहां कह रहे जिससे उत्पन्न हुआ, तो वो किससे उत्पन्न हुआ, वही गाड़ी यदि होगी तो गाड़ी के लिए क्या चाहिए, स्क्रू चाहिए, बोल्ट चाहिए, पहिए चाहिए, है ना, रबड़ भी चाहिए और क्या नाम स्टील भी चाहिए, ये सारे साधन चाहिए, तभी गाड़ी गाड़ी हो सकती है क्योंकि ये उसके उपादान कारण। अब ये उपादान के बगैर गाड़ी वहां कैसे हो सकती, लेकिन ये एक भी उपादान वहां नहीं है, लेकिन गाड़ी है और गाड़ी की प्रतीति भी हो रही, और प्रतीति नहीं हो रही, आप उस पर सवार भी हो और सवार ही नहीं हो, उस पर सवार होकर के हरिद्वार पहुंच गए, और हरिद्वार पहुंच करके हर की पेड़ी में जाके डुबकी भी लगा रहे हो, और कह रहे पानी बड़ा ठंडा है, ये सब कह रहे, और सारे साथी वहां पर इस प्रकार से विद्यमान हो। तो अब वहां विचार करो, ये सब आप जो देख रहे हो, ये जो अनुभव कर रहे हो, कहां पर हो रहा, तो कहा बंबई के एक फ्लैट के एक कमरे में, उस कमरे में भी एक बेड पर है, और बेड पर भी क्या, कहा हमारा शरीर पड़ा हुआ, और शरीर में भी नहीं, शरीर के उस अंगुष्ठ मात्र हृदय में, और कहा अंगुष्ठ मात्र हृदय में नहीं, उस हृदय से संबंध रखने वाली वो अत्यंत है मासूम नाड़ी, जिसे सुषुम्ना आदि कहते हो, उस नाड़ी में हम जिसे कहते मन, लेकिन मन किसी ने आज दिन तक प्रत्यक्ष किया, मन को कोई पकड़ पाया, अनुमान से तो कहते हो मन, अनुमान के द्वारा ही मन को जानते, लेकिन वास्तव में मन को भी कोई जानता, कहते तो हमारा मन, हमने मन से ऐसा सोचा, लेकिन ये कार्य से ही आप उस मन का पता लगा पाते हो, कार्य को छोड़ दो तो स्वतंत्र मन का कोई पता लगा पाता, तो अनुमान से कार्य को, अनुमान को लेकर के आप मन को, तो इतना सूक्ष्म मन जिसका प्रत्यक्ष करने में आप समर्थ नहीं, और उस मन में तो उसकी कितनी सूक्ष्मता, लेकिन वहां पर कितनी स्थूलता देख ली, गाड़ी है 10-12 डिब्बे की तो होगी, इतनी बड़ी गाड़ी, और फिर जिस गाड़ी जिस मार्ग पर चलेगी वो मार्ग कितना लंबा है, 13-14 से जो भी किलोमीटर हो, अब जो है इतने किलोमीटर लंबा मार्ग, उस पर भी जो है पटरियां बिछी, और ये सब स्वप्न में देख रहे। और बड़ी विलक्षण बात यह है कि कि ये आंख भी जो देख रही है वहां सो ये आंख नहीं देख रही, यात्रा कर रहा तो ये शरीर नहीं कर रहा, ये भी विलक्षणता वहां दिखती, लेकिन ये सब हो रहा है। तो ये कहां से हो रहा? तो कहने लगे स्व में ही हो रहा, स्वप्न के अलावा। तो गाड़ी भी स्व किसी दृष्टि, सत्ता की दृष्टि, स्व की सत्ता है, लेकिन गाड़ी की वहां कोई सत्ता, लेकिन फिर भी गाड़ी की सत्ता न होते हुए भी और गाड़ी सत्ताएं मान दिखलाई दे रही, ये सब हो रहा। तो अब समझ लो इसको, सारे शास्त्रों में इस बात की चर्चा की गई, चाहे आप भागवत को उठा के देख लें, वहां भागवत में भी क्या कहा, सबसे पहले इसी बात को उठाया, जन्माद्यस्यतः, ब्रह्मसूत्र में भी जन्माद्यस्यतः, और श्रुति में भी यही संकेत किया, एन जातान भूतान, उसी से और उसी में स्थिति, और यहां भी वही बात कह रहे, अस्मात् जातम, जिससे उत्पन्न हुए। तो ये उत्पत्ति भी कैसी समझने की लायक है। भगवान शंकर के भी मंगलाचरण जहां नैयायिकों ने किया तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया, आगे भले स्वीकार न कर पाए हों, आगे भले ही फिसल गए हों, लेकिन मार्ग पर चले। ऐसा नहीं है कि मार्ग ही नहीं वो बने, मार्ग ही बने, मार्ग पर चले, लेकिन मार्ग पर से फिसल गए, वो चीज अलग। फिर उन्होंने परमाणुओं को कह दिया कि परमाणुओं से सृष्टि, और आज वैज्ञानिक क्या कहते, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इनसे सृष्टि हुई, लेकिन वो भी परिवर्तित हो गए, कहने लगे नहीं इसमें एक को हटा दो, दो से हुई, फिर कहने लगे दो से भी नहीं, शक्ति में कारण कौन है, तो उन्होंने कहा इसमें भी इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कोई स्पंदनात्मिका शक्ति है, उसके द्वारा सृष्टि हुई, और वो स्पंदनात्मिका शक्ति क्या है, तो जिसकी चर्चा कर चुके, वायु के बगैर कहीं स्पंदन संभव नहीं, इसलिए हमारे यहां वेदों के अंदर उसको नाम क्या दिया, यजूह, यत धन जू, उसका नाम क्या है, प्राणवायु यजू, उस यजू को लेकर के ही सारी सृष्टि, वहां भी दो धर्म मान लिए, यत धन जू है, और दूसरी तरफ कहते हो ये प्रकाश कब होता है, कहा पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिल गए, धन और ऋण की बात कह देते। तो अब इनका मतलब क्या, एक की सत्ता तो है, एक की सत्ता है ही नहीं, लेकिन जिसकी सत्ता है और जिसकी सत्ता नहीं है, दोनों का अभेद हो गया, तादात्म्य हो गया, तो वहां कार्य हो गया, ये मानते हो, और वही यहां क्या है, वही यहां कह रहे हैं स्वप्न भी कब होता है, तो जागृत अवस्था में किसी को स्वप्न नहीं होता, स्वप्न कब होता है, जब वहां पर जो वस्तु की सत्ता नहीं है वो तंद्रा जब आ जाती है और तंद्रा आपसे युक्त हो जाती है तो वहीं पर स्वप्न होने लगता है। ऐसे ही जिसे माया का, जिसे अविद्या का, उसकी भी अपनी निजी सत्ता नहीं, सत्ता वाला तो दूसरा है, लेकिन जैसे ही वहां अविद्या का तादात्म्य होता है तो वहीं क्या हो जाती है, का सृष्टि हो जाती है। तो इसका कारण कौन हो गया, तो अविद्या उपहित जो आत्मा, अविद्या से या माया से कहें या ज्ञान से कहें, प्रकृति से कहें, भ्रांति से कहें, भूल से कहें, कल्पना से कहें, इससे उपहित आत्मा से ही क्या होता है, का ये सारी सृष्टि हो जाती है, और कैसे होती है, का स्वप्न की तरह से, और वास्तविकता क्या, जागृत के जो आप हो और कहते हो मैं अमुक हूं, क्या स्वप्न देखने वाला यही मैं होता है कि कोई दूसरा होता, यदि ये मैं होता, ध्यान देना, तो फिर इसको स्वप्न होता ही नहीं, तो स्वप्न का भी साक्षात्कार कर लेता, स्वप्न काल में भी कह देता कि झूठा है, लेकिन स्वप्न काल में कह पाता, तो स्वप्नाभिमानी पुरुष भी वहां इस जागृत अभिमानी पुरुष से पृथक ही। इसी प्रकार से यहां पर भी संकेत करते हैं कि यहां पर जिसे हमने ईश्वर नाम दिया वो ईश्वर भी क्या है, स्वप्नाभिमानी पुरुष की तरह से है। वो ईश्वर भी कैसे है, स्वप्नाभिमानी पुरुष की तरह। और जिसे हम ब्रह्म नाम देते हैं, ये भी नाम हमारे दिए।